मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 28 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा। मैं हूं इस सभा में आप श्रोताओं के साथ, आपका रेडियो मित्र जितेंद्र कुमार। सभी श्रोताओं को नमस्कार, शुभ प्रभात।

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव

0: मिस्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और दो अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक तीन चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोता साथियों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ग्वालियर। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं समूह स्वर में ये देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरिओम शरण का गाया ये भजन। कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति के रूप में हम आपको सुनवा रहे हैं मुकेश का गाया ये भजन।

0: श्रोताओं, इस भजन के साथ ही आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है चिंतन, आलेख रमेश गुप्ता का है, वाचन सुनील केशव देवथर का।
1: कुछ भारतीय नरेश महारानी विक्टोरिया से मिलने गए। थोड़ी देर में चाय पेश की गई। उनमें से एक नरेश को चाय पीने का अभ्यास नहीं था, अतः वे चाय को प्लेट में डालकर पीने लगे। उनके इस प्रकार चाय पीने से माहौल एकदम बदल गया और सभी उनकी ओर देखने लगे। महारानी विक्टोरिया ने जब यह सब देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, ओ इट इज वेरी हॉट, यानी बहुत गर्म है, और वे स्वयं चाय को प्लेट में डालकर पीने लगी। फिर तो सभी महारानी का अनुकरण करते हुए चाय को प्लेट में डालकर पीने लगे। निस्संदेह महारानी विक्टोरिया ने अपनी कुलीनता और श्रेष्ठता का परिचय दिया था, साथ ही उन भारतीय नरेश की अनजाने में हुई उस अभद्रता को छुपाते हुए उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा भी की थी। पर बात केवल चाय पीने के ढंग या टेबल मैनर की नहीं है। अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में हमको शिष्टाचार अपनाने की आवश्यकता है। हमारा रहन सहन, चाल ढाल, वेशभूषा, उठना बैठना, खान पान, आदर सत्कार, सड़क पर चलते हुए, सफर करते हुए, किसी मित्र के भेंट होने पर, किसी अपरिचित या किसी अधिकारी से मिलने पर, किसी सभा सोसाइटी में जाने पर, या अपने समाज में, सभी जगह हमारा व्यवहार सभ्य, शिष्ट और सदाचरण से भरा होना जरूरी है। हम कोई भी कार्य करते हुए इस प्रकार का प्रदर्शन न करें जो लोगों को अरुचिकर और अप्रिय मालूम दे तथा वे लोग हमें असभ्य, मूर्ख और गंवार समझें। शिष्टाचार के लिए एक आवश्यक बात यह है कि शिष्टाचार दिखावे के लिए न हो। यदि हमारा शिष्टाचार बनावटी हुआ तो वो हमारे चरित्र की बुराई का प्रतीक होगा, क्योंकि हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उससे हमारा चरित्र व्यक्त होता है। जिन छोटी छोटी बातों की हम अवहेलना कर देते हैं वे ही हमारी सुरुचि और शालीनता प्रकट कर देती हैं। इसलिए कार्य कोई भी हो, चाहे सभ्य समाज में बैठकर वार्तालाप करना हो, अथवा भोजन करना, रेल में सफर करना हो, या कुर्सी पर बैठना, यहाँ तक कि पढ़ने लिखने के विषय में भी शिष्टाचार का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कोई व्यक्ति कुछ पढ़ रहा हो तो चुपचाप उसके पीछे खड़े होकर उस चीज को पढ़ना या किसी का पत्र पढ़ना एक बड़ी अशिष्टता समझी जाती है। होंठ में बार बार उंगली लगाकर पुस्तक के पृष्ठों

0: को पलटने से न केवल आपकी कुरुचि प्रकट होती है, वरन आप पुस्तकों को भी गंदा कर देते हैं। यदि हम किसी को सर्वोत्तम अक्षरों में पत्र लिखते हैं तो उसके प्रति आदर का भाव तो प्रकट करते ही हैं, साथ ही हम अपने शिष्ट और सुसंस्कृत होने का भी परिचय देते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शिष्टाचार के विषय में बहुत सतर्क रहा करते थे। लिफाफे पर टिकट लगाने जैसी छोटी छोटी बातों का भी वे बहुत ध्यान रखते थे और इसीलिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों को लिखे गए पत्रों पर कभी कभी वे स्वयं टिकट लगाया करते थे, क्योंकि लोग बहुधा टिकटों को तिरछे, उल्टे अथवा अनुचित स्थान पर लगा देते हैं, जो देखने में भद्दे प्रतीत तो होते ही हैं, साथ ही वे आपकी लापरवाही भी प्रकट कर देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि आपका प्रत्येक कार्य ऐसा हो जिससे लोग आनंद का अनुभव करें, आपकी प्रशंसा करें, आपसे प्रभावित हों और आपको शिष्ट तथा सुसंस्कृत समझें। वास्तव में हम अपने अच्छे आचरण से लोगों पर इतना सुंदर प्रभाव छोड़ते हैं कि उन्हें आपसे मिलकर कहना पड़ता है कि आपसे मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई। हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री सत्यकाम विद्यालंकार शिष्टाचार के विषय में कहते हैं, शिष्टाचार का प्रदर्शन केवल हाथ मिलाने अथवा डिनर टेबल पर बैठकर खाने के ढंग में या पोशाक के चुनाव में ही नहीं होता। शिष्टाचार का आधार दूसरों को सुख सुविधा देना है। अपनी सुविधा का ख्याल छोड़कर दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना ही शिष्टता है। सभ्य वही है जो दूसरों की भावना का आदर करता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख रमेश गुप्ता का था और वाचन सुनील केशव देवधर का। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:35 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है मानस गान।

भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा सुनाते हुए याज्ञवल्क ऋषि बोले, विधाता जब जिसके विपरीत होता है तो धूल भी उसके लिए पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता काल स्वरूप और मामूली रस्सी सांप के समान काटने वाली बन जाती है। राजा प्रताप भानु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणों द्वारा अभिशप्त होकर राजा प्रताप भानु कालांतर में रावण नामक राक्षस हुआ। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्मा और मंत्री धर्मरुचि ने अपने ज्ञान विवेक तथा आस्था के कारण विभीषण का शरीर पाया। रावण कुंभकर्ण तथा विभीषण ने कठिन तपस्या की। अपने उग्र तप के कारण रावण ने ब्रह्मा और शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर कोई उसका वध न कर सके। कुंभकर्ण का आहार देख ब्रह्मा भी आतंकित हो गए, अतः सरस्वती को प्रेरित कर उन्होंने उसकी मति फेर दी और उसने 6 महीने की नींद और मात्र 1 दिन का जागरण मांगा।

0: श्रोताओं, ये थी आज की श्री रामचरितमानस से संगीतमय प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज कार्यक्रम में जानकारी का विषय है कद्दूवर्गीय सब्जियों की खेती से अधिक लाभ कैसे, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राजेश लेखी।
1: किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए जो है किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान रखना होगा कि मृदा का जो पीएच मान है वो 6 से लेकर जो है 7.5 जो है पीएच के करीब जो है होना चाहिए जो है। और किसान भाई जो है अपनी मृदा को देखते हुए, और अगर किसान भाई मृदा की जांच पूर्व में करा चुके हैं तो वो बहुत ही अच्छा होगा जी। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जो है खीरा, लौकी, करेला, टिंडा, कद्दू, सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां जो किसान भाई इस समय पे जो है आसानी से अपना रोपण कर सकते हैं। खीरा बोना चाहते हैं तो प्रति हेक्टेयर जो है वो 4 से 5 किलोग्राम जो है बीज जो है वो उपयुक्त होगा जो है, क्योंकि बाजार में जो है इस समय जो है बहुत सी हाइब्रिड और उन्नत किस्में आ चुकी हैं, और हाइब्रिड किस्मों का बीज है सामान्य किस्मों से जो है लगभग आधे से भी कम लगता है जी। इसलिए अगर किसान भाई जो है चुनाव करते समय भी ध्यान दें कि भाई हमको जो है परंपरागत किस्में जो हैं जो कि जिनमें बीज अधिक लगता है 4 से 5 किलो जो है, उसकी अपेक्षा जो है वो हाइब्रिड जो है या विकसित किस्मों का जो है अगर बीज लेंगे तो वो लगभग 1.25 किलो से लेकर जो है 1.5 किलो के करीब लगता है। तो किस्में जो हैं वो जापानी लौंग, ग्रीन जो है पूसा संयोग, पूना खीरा जो है, पॉइंसेट, साक्षी, शीतल, मोहिनी और हिमांगी जो है, ये किस्में जो है आसानी से जो किसान भाई लगा सकते हैं। ये लगभग जो है 130 से लेकर जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है लगभग 1.25 से 1.5 मीटर के जो है करीब जो है वो उनको आपस में दूरी रखनी होगी। लौकी बोना चाहें तो बीज की मात्रा जो है वो 3 से 4 किलोग्राम रहेगी, और वही जो है हाइब्रिड में जो है वो 1 किलो 200 ग्राम से लेकर जो है 1 किलो 300 ग्राम, और बाजार में जो है इस समय जो है बहुत अच्छी जो है किस्में जो है जैसे कि पूसा संदेश जो है लौकी में, पूसा मेघदूत, पूसा समर प्रोफिट लॉन्ग और पूसा राउंड, मंजरी, पूसा मेघदूत आदि किस्में आसानी से उपलब्ध हैं। पूसा नवीन बीज है बहुत अच्छी जो है, और देवी किस्म भी जो है वो बाजार में उपलब्ध है जी। और भी जो है संकर किस्में जो है बाजार में अच्छी जो है किस्में उपलब्ध हैं जी। करेला जो है किसान भाई जो है 5 से 6 किलोग्राम बीज है वो सामान्य किस्मों के लिए, और 1 किलो से 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 300 ग्राम जो है हाइब्रिड किस्मों का बीज जो है वो लगा सकते हैं जो है। रोपाई जो है वो 150 से 160 सेंटीमीटर जो है और गुणित 60 सेंटीमीटर जो है दूरी पर। किस्में जो है पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी, अर्का हरित और नरेंद्र किस्में जो है। खाद की संतुलित मात्रा जो है खीरा, लौकी और करेला में तीनों में जो है 130 से लेकर 150 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर जो है यूरिया जो है लगभग किसान भाई ये मान के चलें कि 3 बैग प्रति हेक्टेयर।

और सिंगल सुपर फास्फेट जो है 250 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर जो है, ये लगभग 5 बैग जो है वो प्रति हेक्टेयर जो किसान को लगाने पड़ेंगे। ऐसे ही म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है।

0: में जो है एक से डेढ़ माह के अंतराल पे जो है वो इनको दो बार जो है वो खाद की विशेष मात्रा जो है यूरिया को सुपर फास्फेट और पोटाश की पूरी मात्रा प्रथम बार में ही डालनी है, और यूरिया को वो जो है वो दो बार में जो है या तीन बार में बांट के डाल सकता है। और किसान भाई जो है अच्छा ये होगा कि वो अपनी भूमि की जो जाँच करा ले तो इनकी मात्राओं में जो है कम या ज्यादा किया जा सकता है जो उसके अनुसार। तुरई भी जो है वो 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी जो, और इसमें जो है पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी, पूसा नसदार, अर्का सुमित और अर्का सुजात जो है किस्में आसानी से मिल सकती हैं जो। दूरी जो है वही 150 से 160 सेंटीमीटर जो है गुणित जो है 60 सेंटीमीटर। खाद जो है वो 130 से 150 किलोग्राम जो तीन सभी के लिए कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए यही मात्रा जो है आवश्यकता पड़ती है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत जानकारी कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती से अधिक लाभ कैसे, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर राजेश लेखी। हम आकाशवाणी ग्वालियर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम। 26 जनवरी से 2400 घंटे उपलब्ध है डीटीएच पर, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
2: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
2: धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: याद रखो हमारी बात,
7: पेड़ पौधे धरती की सौगात,
6: जंगल है धरती का गहना,
7: सदा इसकी रक्षा करना,
6: होगी जो धरती पर हरियाली,
7: चहुं ओर फैलेगी खुशहाली।

0: नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायाम् एकं स्वर्णपदकं त्रीणि रजतपदकानि एकं कांस्यपदकं च एवम् आहत्य पञ्च पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वह 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। उधर असम के गृह और राजनीतिक विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य की किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इस बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विभाग ने केरलम के उत्तरी जिलों में तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। केरलम के 6 जिलों एर्नाकुलम, त्रिशूर, मल्लपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं

0: के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी भोपाल से बोल रहे हैं।

अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा सुबह 7:20 पर, समाचार प्रभात 8:00 और मॉर्निंग न्यूज़ 8:15 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे। लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 8:23 पर आज कलाकार होंगे हुकुम सिंह, और आप सुनेंगे इनके गाए विभिन्न लोक गीत। सारंगी पर संगत करेंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। इस घंटे की खास खबरें सुनिएगा सुबह 8:58 पर आकाशवाणी भोपाल से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर लेकर आएंगे सुबह 9:00। कार्यक्रम के अंतर्गत आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आप सुनेंगे भेंट वार्ता, लीवर यकृत रोग कारण लक्षण और निदान, डॉक्टर अमित थावरानी से सोहन सिंह की बातचीत आप सुनेंगे।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे आप सुनेंगे पारुल दीक्षित का गाया राग अलहिया बिलावल। तबला संगति विकास वेपट की होगी और सारंगी पर संगत करेंगे उस्ताद अब्दुल मजीद खान। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे सुबह 10:00 बजे। 10:05 पर व्हाट्सएप पर माई फिल्म संगीत का कार्यक्रम प्रसारित होगा। दिन में 11:00 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। दिन में 12:00 बजे फिल्म संगीत का प्रसारण होगा। 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से। 1:00 बजे महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम और 1:45 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होगा। ये तीनों ही कार्यक्रम इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगी। फिल्म संगीत 2:00 बजे भी हमारे श्रोता सुन पाएंगे। 2:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 2:15 पर दोपहर समाचार अनुप्रसारित होंगे दिल्ली केंद्र से। चित्रपट संगीत सुनेगा 2:30 पर। और अपराह्न 3:00 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण।

और श्रोताओं, एक संक्षिप्त नज़र डाल लेते हैं हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा के मुख्य कार्यक्रमों पर। शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। 5 बजे इस घंटे की खास खबरें, 5:02 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग ले करेंगे शाम 6 बजे। ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम होगा चौपाल शाम 7:20 पर।

रात्रि 10 बजे संसद के मानसून सत्र 2026 के अंतर्गत संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही का प्रसारण आप सुन पाएंगे और रात्रि 10:30 पर कार्यक्रम होगा राग रजनी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे।

0: तिथाई को पूरा हो रहा है और निषादपुरा का हमारा बहु प्रतीक्षित रेलवे स्टेशन अब ऑपरेशनल स्थिति में आएगा 28 तारीख को 28 जुलाई को शाम को 5:30 बजे मालवा एक्सप्रेस यहां पर ऑफिशियली रुकना शुरू होगी और 2 महीने तो वो भोपाल से चलेगी और आगे जो इंदौर की तरफ जाने वाली ट्रेन है वो निषादपुरा से ही शुरू होंगी। ये हमारे संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में 29 जुलाई को उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में 90% या इससे अधिक परिणाम देने वाले शासकीय विद्यालयों के प्राचार्यों को सम्मानित करेंगे। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ भी करेंगे और स्कूल शिक्षा विभाग के नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो 2026 में प्रदेश को एग्री हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि 25 से 27 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित इस एक्सपो में देश विदेश के कृषि और उद्यानिकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। उन्होंने जानकारी दी कि कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के बीच मध्य प्रदेश की प्रदर्शनी को नवाचार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रथम स्थान मिला है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल कल उमरिया जिले के गांव मरदरी स्थित उमरार नदी के उद्गम स्थल पर आयोजित पूजन अर्चन एवं वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री श्री पटेल ने कहा कि नदियों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी चिंता है। इसे एक व्यापक जन आंदोलन बनाना होगा। जल स्रोतों को सहेजने और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए हम सभी को मिलकर कदम उठाने होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने 3 अभियान चलाए कि हर बूंद का आप संरक्षण करें, वर्षा जल को जमीन के भीतर डालें और जलगंगा अभियान की शुरुआत भी इसलिए की थी कि हमारे नदी को जल स्रोत वो स्वच्छ भी होने चाहिए और वो जीवंत भी होने चाहिए। एक बड़ी गलती हमने की है कि नदियों को अपने प्रदूषित किया, इसलिए उन्हें स्वच्छता की बात की। दूसरा, हमने वृक्षों की कटाई की या नदियों के स्रोतों को की चिंता नहीं की तो उनकी क्षमता में कमी आई है। उसके क्षमता वर्धन का एक ही रास्ता है कि हम वहाँ पौधे लगाएं और एक पौधा माँ के नाम अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया।
1: भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा जिसमें ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इस अवसर पर दी जाएंगी। ये जानकारी भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कल कमिश्नर कार्यालय में तैयारियों की समीक्षा बैठक में दी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 5 और 6 अगस्त को मिंटो हॉल में तकनीकी समितियों की बैठकें होंगी। वहीं 6 अगस्त की शाम रविन्द्र भवन में सांस्कृतिक उत्सव आयोजित होगा। इसके बाद 7 और 8 अगस्त को भी कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के उन्नयन और विस्तार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री शुक्ल ने कहा कि ये विस्तार पर्यटन के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता और जनजागरूकता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में AI और फिनटेक विद AI के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं जिनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 सुशासी महाविद्यालय शामिल हैं। ये कोर्स IIT दिल्ली के सहयोग से संचालित होगा और विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इस कोर्स के जरिए 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को कल संबोधित किया। उन्होंने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ा पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। भोपाल के राष्ट्रीय उद्यान वन विहार में चल रहे बाघ सप्ताह के तहत कल विद्यार्थियों के लिए बाघ विषय पर पाम पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बाघों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 22 से 28 जुलाई तक बाघ सप्ताह मनाया जा रहा है जिसके तहत भोपाल के स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। अब रुख करते हैं खेलों की खबर का। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में महिला शॉटपुट 57 फाइनल जीतकर देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। पांचवें दिन तक भारत के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई है। शमला ने 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ पैरा एथलेटिक्स में भारत की पहली राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण विजेता बनने का इतिहास रचा। वहीं इसी स्पर्धा में शिल्पा के शायला ने कांस्य पदक जीता और भारोत्तोलन में वल्लूरी अजय बाबू ने 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं ज्ञानेश्वरी यादव और विंध्या रानी ने भी क्रमशः रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून टर्फ समेत दो सिस्टम सक्रिय होने से कल कई जिलों में तेज बारिश का दौर देखने को मिला। मौसम विभाग ने आज के लिए सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। यहाँ 4 इंच या इससे अधिक पानी गिर सकता है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर के शासकीय जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित MRI केंद्र का लोकार्पण किया। झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने समीक्षा बैठक लेकर लंबित कार्यों और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित थानला प्रवास की तैयारियों का जायजा लिया। मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कटनी में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर आशीष तिवारी ने ओवरलोडेड वाहनों, स्कूल बसों और बिना नंबर वाले वाहनों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। डिंडौरी जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों और हाट बाजारों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और मंडला के नगरपालिका टाउन हॉल में आज युवाओं के लिए युवा संगम, रोजगार, स्वरोजगार तथा अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापकों से मुलाकात, विक्रम 1 मिशन की सफलता पर दी बधाई। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा का आज शुभारंभ, मुख्यमंत्री दिखाएंगे

मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 29 जुलाई को उज्जैन में करेंगे गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अगुवाई, प्राचार्यों का करेंगे सम्मान। और भोपाल में 5 से 8 अगस्त तक होगी अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग, कई देशों के संस्कृति मंत्री होंगे शामिल। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में फिल्म आशा का ये गीत, राजेंद्र कृष्ण का लिखा ही गीत था। इसे संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और आशम भोसले का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है आए दिन बहार की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: कभी कभी।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म आँखें में। गीत रचना साहिर की थी और इसे संगीत से सवारा इस गीत को रवि ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आंसू बन गए फूल फिल्म का ये गीत। आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की हैं। गीत रचना गोविंद मुनिस की और इसके लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सो योर प्लेस और माइन।
5: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डोम है?
4: कॉन्डोम? लेकिन हम तो
5: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
4: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
6: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
7: हंसो मत।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। इस गीत में फिल्म का नाम था अभिनेत्री। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत था, इसे संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथी का ये गीत। स्वर लता मंगेशकर का है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत है और इसे संगीत दिया है नौशाद ने।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल एक मंदिर का ये गीत। स्वर एक बार पुनः लता मंगेशकर का है, गीतकार है शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को इस गीत में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही

0: वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
4: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब के स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
3: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
3: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल।

0: हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी, सरकार ने कहा समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद, हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की, विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी, विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपने साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग

आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 8:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं हुकुम सिंह। आप सुनेंगे इनके गाए विविध गीत। सारंगी पर संगत की है उस्ताद अब्दुल मजीद खान ने। आइए, आपका गाया पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जो है देवी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर से। आज कार्यक्रम में कलाकार हैं हुकुम सिंह। अभी आपने सुना आपका गाया देवी गीत। लीजिए, अब प्रस्तुत है ये चौकड़िया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू

0: इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं हुकुम सिंह की गाई हुई ये गारी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हुकुम सिंह का गाया ये बुंदेली गीत। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं आपकी आवाज़ में ये सावन गीत।

0: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम की ये अंतिम प्रस्तुति आपको सुनवा रहे हैं, जो है चेतावनी गीत।
1: रतन अनमोल। हाँ जी सर।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हुकुम सिंह का गाया ये चेतावनी गीत। इस गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त हुआ। अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की अग्रणी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के सह संस्थापकों पवन चंदाना और नागा भारत डाका से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए स्काईरूट के विक्रम वन मिशन की सफलता की पूरी टीम को बधाई दी। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा की शुरुआत आज से होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। यहां मालवा एक्सप्रेस के अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज होगा। इंदौर जाने वाली ट्रेनें अब निषादपुरा से शुरू होंगी। प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में एआई और फिनटेक विद एआई के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालय शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इस निःशुल्क कोर्स के जरिए 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं उद्यानिकी एक्सपो 2026 में प्रदेश को एग्री हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के उन्नयन और विस्तार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मास्टर प्लान के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून टर्फ समेत दो सिस्टम सक्रिय होने से आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: और हम अपने श्रोताओं
0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हो चला है हमारे आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का।

और हमारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, जहां आप सुनते हैं लेटेस्ट खबरें, रोचक जानकारियां और सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ खास बातें। साथ ही साथ ढेर सारा गीत संगीत तो होता ही है, तो चलिए देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की मेरे साथ। दोस्तों, हम एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहते हैं, वो है सेटिस्फैक्शन यानी संतोष। संतोष का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति मेहनत करना छोड़ दे, इसका अर्थ ये है कि काम करते समय बेचैनी और लालच से व्यक्ति मुक्त रहे। एक लोक कथा के ज़रिए हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। पुराने समय में एक छोटे से आश्रम में एक गुरु अपने शिष्य के साथ में रहते थे। आश्रम में सादगी अनुशासन का वातावरण था, वे सीमित साधनों में भी प्रसन्न रहते थे, क्योंकि गुरु हमेशा अपने शिष्य को संतोष और समभाव का महत्व समझाते थे। एक दिन एक भक्त आश्रम में आया, उसने गुरु को श्रद्धापूर्वक एक गाय दान में दी। शिष्य को ये देखकर बहुत खुशी हुई और उसने गुरु को बताया कि अब आश्रम में अपनी गाय है। गुरु मुस्कुराए और बोले, ये बहुत अच्छी बात है, अब हमें रोज़ ताज़ा दूध भी मिलेगा जिससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य भी प्रसन्न हो गया, अब आश्रम में रोज़ ताज़ा दूध भी आने लगा। गुरु शिष्य की सेहत अच्छी रहने लगी। शिष्य को लगने लगा कि गाय आने से आश्रम की सुविधाएं बढ़ गईं। उस समय तक गुरु शिष्य सुख का आनंद लेते रहे, लेकिन एक दिन अचानक गाय कहीं चली गई। आश्रम में हलचल मच गई, शिष्य दुखी हो गया, उसे लगने लगा अब पहली जैसी सुविधाएं नहीं रहेंगी। वो उदास मन से गुरु के पास गया और बोला, गुरु जी हमारी गाय चली गई, अब हमें ताज़ा दूध भी नहीं मिलेगा, सब कुछ फिर पहले जैसा हो गया। गुरु शांत भाव से बोले, बेटा ये भी अच्छी बात है, अब हमें गाय की देखभाल नहीं करनी पड़ेगी और गोबर की सफाई में समय भी नहीं लगेगा, ये समय अब हम साधना और ज्ञान प्राप्त करने में लगा सकते हैं। शिष्य को गुरु की बात सुनकर आश्चर्य हुआ, उसने कहा, लेकिन गुरु जी जो सुविधाएं हमें मिली थी वो तो चली गई, इसका दुख कैसे ना करें। गुरु ने समझाया, जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं, यदि सुख मिलने पर हम बहुत अधिक उत्साहित हो जाएंगे और दुख आने पर टूट जाएंगे तो हमारा मन कभी शांत नहीं रह पाएगा, हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, कथा की सीख बस यही है कि हमें अपने इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इच्छाएँ ज़रूरी है, लेकिन अनंत इच्छाएँ मन को परेशान कर सकती हैं। हर इच्छा पूरी हो ये संभव नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में अंतर समझें।

दोस्तों आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पानी, हवा, मिट्टी और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और उनके सही उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसके उद्देश्य और महत्व भी हम आपको बता देते हैं। जागरूकता बढ़ाना, जैसे लोगों को ये समझाना कि पेड़ पौधे और जीव जंतु हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, पृथ्वी पर बढ़ते तापमान और जलवायु बदलाव के खतरों को कम करना और संसाधनों की सुरक्षा, यानी जैसे पानी की बचत करना और जंगलों को कटने से रोकना। और हम कर क्या सकते हैं, जैसे पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर के आसपास नए पौधे लगाएं और उनकी देखभाल कर सकते हैं। पानी बचाने की भी ज़रूरत है, प्लास्टिक भी छोड़ना। हम जैसे शपथ ले लें कि हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे, कम से कम प्लास्टिक का उपयोग

करने से प्लास्टिक का जो कचरा है कम होगा और इस कचरे को सही जगह पर हमें डालना चाहिए। और इस हेतु समाज में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, समाज में सभी लोगों को अवेयर भी करना चाहिए। दोस्तों, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर शहर का विस्तार तो तेजी से हो रहा है, नई सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर तैयार हो रहे हैं और बहुमंजिला इमारतें शहर की नई पहचान भी बन रही हैं। लेकिन इस विकास की दौड़ में सबसे बड़ी कीमत हरियाली चुका रही है। हजारों पुराने पेड़ों की कटाई से न केवल शहर का, हमारे ग्वालियर शहर का प्राकृतिक स्वरूप बदल रहा है, बल्कि तापमान बढ़ने, स्वच्छ हवा की कमी और पक्षियों के प्राकृतिक आवास खत्म होने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए बिना शहरों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। कभी ग्वालियर की पहचान छायादार सड़कें, ठंडी हवाएं और पेड़ों पर चहचहाते पक्षी हुआ करते थे, आज वही स्थान कंक्रीट के ढांचों में तब्दील होते जा रहे हैं। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में आज भी घने पेड़ों के कारण प्राकृतिक ठंडक का एहसास होता है, जो ये बताते हैं कि हरियाली केवल सुंदरता नहीं बल्कि शहर के लिए जीवनदायिनी है। और चलिए दोस्तों, चर्चा तो आगे जारी रहेगी, फिलहाल हम आपको सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सुनो, गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर मेरे साथ। दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लीवर यकृत की सूजन यानी वायरल हेपेटाइटिस के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम और जांच को बढ़ावा देना है। मुख्य बातें इसकी और इतिहास हम आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे। तारीख का कारण है ये दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारुक सैमुअल ब्लमबर्ग के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसका टीका विकसित किया था। हेपेटाइटिस है क्या? ये लीवर में होने वाली सूजन है जो मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए बी सी डी और ई नामक पाँच प्रकार के वायरस के कारण होती है। दोस्तों विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर विशेष एक भेंटवार्ता भी हम कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं। लीवर यकृत रोग कारण लक्षण और निदान, डॉक्टर अमित थावरानी से सोहन सिंह की बातचीत लीजिए सुनिए।
1: श्रोताओं कभी कभी हमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं और स्वास्थ्य खराब होने से हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है, कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है, स्वास्थ्य से भी हम प्रभावित होते हैं और आर्थिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। इन्हीं बीमारियों में एक है लीवर संबंधी समस्याएं। लीवर में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इनको किस तरह दूर कर सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे एक कार्यक्रम में आमंत्रित हैं लीवर विशेषज्ञ डॉक्टर अमित थावरानी। डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो श्रोताओं को यही जानकारी दें कि लीवर है क्या।
2: नमस्कार, धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। लीवर एक ऑर्गन है या लीवर एक पार्ट है हमारी बॉडी का। जब से बच्चा पेट में आता है माँ के, तब से लीवर का कार्य अपने शरीर के लिए शुरू हो जाता है। जन्म से पहले ही बच्चे के लिए काम करना शुरू कर देता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो खून बनाने का काम करता है और जब बच्चा दुनिया में आता है तब लीवर का कार्य होता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी दवाइयाँ हम खाते हैं, जो भी हमारे पेट में जाता है वो लीवर के थ्रू होके डिटॉक्सीफाई होता है, या उसको पचाना हम बोल सकते हैं कि लीवर उसको क्लीन करता है, पचाता है। प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, इसका एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, लीवर के थ्रू होता है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन जो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं वो लीवर होता है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है वो लीवर से पास होकर ही बॉडी में जाता है, लीवर उसको क्लीन कर देता है, उसके बाद बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स उसको हैंडल करते हैं। लीवर की समस्याएं, इसके बारे में अगर मुख्यतः बात किया जाए तो एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस और लीवर सिरोसिस, तीन चीज़ें हैं। एक्यूट हेपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन, इसमें चार तरह के वायरस बोल सकते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक्यूट हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और ई है, इस सीज़न में जो चल रहे हैं अभी, दूषित पानी, दूषित खाना, जिस मरीज़ को है उसने हाथ साफ़ नहीं किए शौच जाने के बाद, या पानी दूषित हो गया उससे दूसरे मरीज़ को लगेगा, जिसे शुरुआत में पेट में दर्द, बुखार और उसके बाद आँखों में पीलापन आना शुरू हो जाता है, जिसको पीलिया बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। मरीज़ को जब पीलिया लगे, आँखों में पीलापन दिखे, बुखार आए, पेट में दर्द हो, भूख कम हो जाए, तो ये हेपेटाइटिस यानी लीवर में सूजन के लक्षण हैं और ये जनरली अभी इस मौसम में दूषित खाने पीने से होता है। बड़ी भ्रांतियाँ हैं पीलिया को लेके कि पीलिया हो गया, इसको झड़वाना चाहिए, इस पत्ते खिलाना है, या कोई कोई लोग बकरी का दूध पिलाना शुरू करते हैं। अरे एक एक इन्फेक्शन है जो कि लीवर में लगा है और 95% पेशेंट्स में बहुत साधारण सी दवाइयों और रेस्ट के साथ ही ये ठीक हो जाता है। 5% मरीज में जरूर ये समस्या खड़ी कर सकता है जब आप विशेषज्ञ से मिलने की जरूरत पड़ती है। भ्रांतियों में ना पड़े और एक विशेषज्ञ को दिखा के, आसपास के जो भी डॉक्टर को दिखा के इसकी जाँच करा के जल्दी ठीक किया जा सकता है इसको।
1: डॉक्टर साहब कुछ हमारे श्रोता हैं ये कहते हैं कि जो पीलिया है वो झाड़ने से दूर हो जाता है, क्या डॉक्टर साहब ये सही है?
2: किंवदंतियाँ हैं जो हमारे जो समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कही जाती हैं और लोग उसको मानना शुरू कर देते हैं। पीलिया कोई रोग नहीं है, पीलिया एक लक्षण है, ये लीवर की बीमारी का लक्षण है, लीवर में सूजन का लक्षण है और इसके कारण एक बार पता किए जाएं तो उसका निवारण उसके हिसाब से किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब कभी कभी जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं कि इसको पीलिया आया है, तो डॉक्टर साहब ये पीलिया शुरुआत में ही बच्चे को किस तरह हो जाता है?
2: जो बच्चा पेट में होता है तो उसका जो खून का जो बनता है, और चूंकि उसको ऑक्सीजन माँ से मिलती है तो खून का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा इस दुनिया में आता है उसको फेफड़े के सहारे से ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाती है, तो इतने खून की ज़रूरत नहीं होती, तो खून टूटता है उसका, और खून टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वो पीलिया बनता है, और उसका चूँकि लीवर उस समय इतना सक्षम नहीं होता उस खून के टूटने को पूरी तरह से मेटाबोलाइज करने में, तो वो न्यूनेटल जॉन्डिस बोलते हैं उसको, पीलिया देख के डर जाते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन किसी किसी बच्चे में जब ये ज़्यादा होता है, 14 से ऊपर हो जाता है, तो दिमाग पे थोड़ा असर कर सकता है, तो ऐसे में बच्चों को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और उसके लिए ब्लू लाइट थेरेपी है, जो फोटोथेरेपी होती है वो दी जाती है, उससे ठीक हो जाता है।
1: डॉक्टर, अभी आपने ये बच्चों के बारे में बताया, कभी कभी हमारे जो अडल्ट होते हैं उनको भी डॉक्टर साहब पीलिया हो जाता
2: है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी मुख्यतः दो तरह से फैलता है, ये गंदे खून या इन्फेक्टेड नीडल्स या मास से बच्चे को फैल सकता है, या इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट्स जो ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होगा, स्टरलाइज नहीं हो तो एक मरीज का इन्फेक्टेड वो उससे दूसरे से फैल सकता है, ब्लड जो कंपोनेंट्स कंटामिनेटेड होते हैं उससे फैल सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये वायरस लीवर में जाके बैठ जाता है और धीरे धीरे लीवर को ख़राब करना शुरू कर देता है, तो समय पर पता लगाया जाए इसके बारे में तो इसका रोकथाम की जा सकती है, और इसका ट्रीटमेंट भी है। हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, 95% तक ये ठीक हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के लिए ज़रूर इतनी अच्छी दवाइयाँ नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए जो दवाइयाँ हैं उसे काफ़ी हद तक लीवर को रोकथाम होने में मदद मिलती है, और यही इस साल के वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम भी है कि जो ज़रूरत है मरीजों की और जो गैप है नॉलेज में उसको ये पूरा किया जाए ताकि लीवर को ख़राब होने से बचाया जा सके। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर ख़राब होने से बचाया जा सकता है अगर समय से हम इसको जांचें। इसी तारतम्य में जो गर्भवती महिलाएं उनकी हेपेटाइटिस बी और सी की जांच होने लगी है, मरीज अब ऑपरेशन के लिए अस्पताल में जाते हैं, सब जगह सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जाँच हो रही है, तो ऐसे में नए केसेस पता लगने शुरू हो गए हैं, उन लोगों का इलाज मिल रहा है और उनका लीवर ख़राब होने से बच रहा है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दे रहे थे कि लीवर है ये कोई रोग नहीं है, इसके ये लक्षण होते हैं, तो डॉक्टर साहब अगर हमारे किसी को हो जाता है तो उसके किस तरह से ये लक्षण हैं वो प्रतीत होने लगते हैं?
2: जॉन्डिस एक सिम्टम है और ये लीवर में सूजन या हेपेटाइटिस का एकमात्र लक्षण नहीं है। इसमें शुरुआत में मरीज को भूख लगना कम हो जाती है, किसी को मतली या उल्टी आ जाती है, किसी को बुखार होता है साथ में, इसको बोलते हैं प्रोडोमल फेज। इसमें शुरुआत में ऐसे ही होता है, भूख लगना कम हो जाती है, मतली आती है, थकान सी लगने लगती है, और उसके बाद पीलिया शुरू होता है आँखों में और पेशाब का रंग भी गहरा पीला या कई लोग बोलते हैं कि सरसों जैसा हो गया, कि वो इसलिए होता है क्योंकि बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो यूरिन के थ्रू निकलता है बिलीरुबिन। इन चीज़ों को जोड़ के अगर मरीज को देखा जाए तो उसकी हिस्ट्री से ही पता लग जाता है कि उसको वायरल हेपेटाइटिस है, और वो जाँच में हम पता कर सकते हैं। तो एक ही लक्षण को नहीं, हमें पूरी जो मरीज की सारी जो हिस्ट्री है, जो सारे लक्षण है उसको देख के और उसके बारे में फिर मरीज को बताना होता है।
1: डॉक्टर साहब, वैसे भी कहते हैं कि जो लीवर होता है वो व्यक्ति का पावर हाउस होता है, ऊर्जा देता है, या जैसे आप बता रहे थे कि प्रतिरोधक क्षमता है इससे विकसित होती है, तो धीरे धीरे अगर प्रभावित होता है तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम होने लगती है।
2: जी बिल्कुल, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी के मरीज हैं जो डायग्नोसिस नहीं हो पाती उनकी, उनका धीरे धीरे लीवर खराब होना शुरू हो जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है जब वो लीवर खराब हो जाता है तब वो पता चलता है जब पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस मतलब लीवर जब 70% से ज़्यादा खराब हो जाए, पेट में पानी आना शुरू हो जाए, तब हम उसको सिरोसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद इसमें कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं, मरीज को इन्फेक्शन लगने शुरू हो जाते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, खून की उल्टी भी हो सकती है, और किसी किसी केस में लीवर में कैंसर भी बनता है आगे चल के।
1: डॉक्टर साहब, इसके जो प्रमुख कारण हैं वो केवल दूषित खान पान या एक और भी इसके कारण होते हैं?
2: अगर हम हेपेटाइटिस ए और ई की बात करें तो दूषित गंदे खान पान से फैलता है। इसका जो प्रिवेंशन है वो यही है कि पानी साफ सुथरा पिएं, पानी उबाल के पिएं। आजकल फास्ट फूड कल्चर बढ़ता जा रहा है तो वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखें, सफाई प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं है, जो सब्जियाँ हैं और फल हैं जो बाज़ार में मिलते हैं उसको अच्छे से धो के खाएं, तो ये काफ़ी हद तक इसी से कंट्रोल हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी ये जो फैलता है इन्फेक्टेड जो नीडल होते हैं, जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं उससे फैलता है, या आप जिस पार्टनर के कॉन्टैक्ट में आए अगर उसको है तो उससे फैल सकता है। इसका प्रिवेंशन तो ये है कि सुरक्षित कॉन्टैक्ट रखें, अगर आपको हेपेटाइटिस बी का डाउट है तो जाके चेक कराएं, इसका ट्रीटमेंट कराएं, कहीं पे भी जहाँ पे भी ब्लड प्रोडक्ट या ऑपरेशन होता है हमेशा ध्यान रखें कि वहाँ पे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे, ब्लड प्रोडक्ट आपको जो चढ़ा रहे हैं वो पूरी तरह से चेक्ड हैं कि नहीं है। इसीलिए आजकल जो ब्लड बैंक्स हैं, जो ब्लड प्रोसेस करते हैं, जो खून चढ़ाने के लिए जहाँ प्रक्रिया खून इकट्ठा करते हैं, सब जगह आजकल एलिसा मेथड से वायरल पीसीआर होने लगा है, जिससे इसके ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत कम हो गए।
1: डॉक्टर साहब, आजकल तो हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए टीके भी लगवाए जाते हैं?
2: ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में मिलता है, सरकारी अस्पताल में अवेलेबल है, बच्चे को पैदा होते ही पहला डोज दिया जाता है, फिर 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद। इससे हेपेटाइटिस बी का पूरी तरह से प्रिवेंशन हो जाता है, एंटीबॉडी बन जाती है और आगे चल के हेपेटाइटिस बी होने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन कराना चाहिए, अगर बचपन में नहीं लगा तो युवावस्था के दौरान या बड़े लोग भी लगवा सकते हैं इसको।
1: डॉक्टर साहब, लीवर जो खराब हो जाता है उसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं?

0: और इनसे किस तरह बचाव कर सकते हैं।
1: वायरल हेपेटाइटिस के अलावा जो आज की तारीख में बहुत मुख्य कारण है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज जिसको हम बोलते हैं, हमारे समाज में अल्कोहल का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि अल्कोहल किस तरह से उनका लिवर को ख़राब कर सकता है। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अल्कोहल दूसरी चीज़ें होती हैं, ये भी लिवर के द्वारा ही मेटाबोलाइज किया जाता है, और जब अत्यधिक मात्रा में जब सेवन करना शुरू करते हैं लोग इसका, तो लिवर इसमें डैमेज होना शुरू होता है। और इसकी मुख्य बात यह है कि इससे भी के जो लक्षण होते हैं बहुत माइल्ड से होते हैं, साइलेंट डैमेज होता है, और जब तक पता चलता है कई बार तब तक काफ़ी लिवर ख़राब हो चुका होता है। शराब का सेवन है वो ठीक नहीं है, लिमिट ऑफ जो अल्कोहल इंटेक है वो आप फॉलो करें उसको, और कोशिश हो सके तो शराब से दूरी बनाएं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को मोटापा है, ये लोग तो शराब से बिल्कुल दूरी बनाएं, क्योंकि इन लोगों में ऑलरेडी फैटी लिवर होता है जिससे शराब और दूसरी तरह से लिवर ख़राब करता है। एक इम्पॉर्टेंट कारण आज की तारीख में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, या मैफेल्ड जिसका नाम अब चेंज हो गया है, ये मेटाबॉलिक एक्टिव फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। इसमें फैट जो होता है, चर्बी होती है, लिवर पर जमा होना शुरू हो जाती है, लिवर के स्ट्रक्चर को ख़राब करना शुरू करती है, और धीरे धीरे लिवर ख़राब होता जाता है। इसमें जिन लोगों को शुगर है, जो लोग मोटे हैं, ओबीज हैं, जिन लोगों को थायराइड है, या जिन लोगों का लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, इनमें ये देखा जाता है ये प्रोसेस फास्ट हो जाती है। वो पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे लिवर ख़राब होना शुरू हो गया, और जब पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसका रोकथाम ये है कि बॉडी वेट, अपना वजन कम रखें, डाइट जो खाना हम खा रहे हैं उसमें चिकनाई की मात्रा, मीठे की मात्रा बहुत कम रखें, क्योंकि लोगों का जो खान पान अब बदलता जा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो इन चीज़ों से वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, और लिवर ख़राब होता है। खान पान अपना सात्विक रखें, कम चिकनाई खाएं, एक्सरसाइज रेगुलर करें, नियमित जांच कराएं, शुगर चेक कराएं, और अगर आपको फैटी लिवर है तो आप जांच करा के इसकी दवाई भी ले सकते हैं कुछ। तो ये चार इंपॉर्टेंट कारण लिवर के खराब होने के।
0: तो डॉक्टर साहब, इससे बच कैसे सकते?
1: बचाव तो हमारी जीवन शैली, बड़े बूढ़े कह रहे थे कि जल्दी उठना, सुबह एक्सरसाइज करना, खान पान में साफ सफाई मेंटेन करना, चिकनाई कम खाना, अल्कोहल नहीं लेना, सात्विक जीवन जीना, और इसी से हम लिवर की हम रोकथाम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं को लीवर संबंधी कौन कौन सी समस्याएं हो जाती हैं और इनसे किस तरह बचाव कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे श्रोता भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद।
2: विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर विशेष भेंटवार्ता अभी आप श्रोताओं ने सुनी, डॉक्टर अमित थावरानी से सोहन सिंह की बातचीत।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरार में सोमवार को स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में विद्यालय के 350 से 350 एनसीसी कैडेट्स और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में 29 जुलाई को सुबह 11 बजे से गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रख्यात सितार वादक लोकेश बहाने को गुरु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, समय की कमी के कारण हम कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में कुछ नए खबरों, सूचनाओं और ढेर सारे गीत संगीत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पारुल दीक्षित का गाया राग अल्हैया बिलावल। तबला संगति विकास विपट की है और सारंगी पर संगत की है उस्ताद अब्दुल मजीद खान ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पारुल दीक्षित का गाया राग अलहिया बिलावल। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से।

वाचन इस अवसर पर किया। इस महोत्सव में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और रावतपुरा सरकार भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पन्ना पहुंचकर भगवान जुगल किशोर के दर्शन किए और संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस महोत्सव को हर साल आयोजित किया जाएगा ताकि पन्ना को देश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में शामिल किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने पन्ना दौरे के दौरान 184 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने घोषणा की कि अगले साल से पन्ना में शासकीय मेडिकल कॉलेज शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्री जुगल किशोर मंदिर परिसर के विकास के लिए पर्याप्त बजट देने का भी भरोसा

0: दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और धार्मिक पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पन्ना जिले में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए चलाए गए गौ सम्मान आह्वान अभियान को लोगों का बड़ा समर्थन मिला है। इस अभियान के तहत 2,71,000 से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया। इन हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इसमें गौवंश की सुरक्षा और गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। पन्ना शहर में अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उषा परमार ने यह आदेश यातायात व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जारी किया है। अस्पताल, स्कूल और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भारी वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। हालांकि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। पन्ना जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में मुख्य डाकघर तिराहे पर बीते दिनों बाहर से आने वाले दुग्ध विक्रेताओं के दूध के नमूने लिए गए। इन नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। पन्ना जिला न्यायालय में पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बीते दिनों आयोजित किया गया, जिसमें साइबर सुरक्षा, ई कोर्ट सेवाओं और डिजिटल न्याय प्रणाली की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने वॉलंटियर्स से गांव-गांव जाकर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील की। पन्ना जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीते दिनों सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, आयुष विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगासन किए। दक्षिण पन्ना वनमंडल ने 100 साल से ज्यादा पुराने 1,353 पेड़ों का रिकॉर्ड तैयार किया है। इनक्रेडिबल ट्रीज ऑफ साउथ पन्ना नाम की एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है। सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने इसका विमोचन बीते दिनों किया। सभी पुराने पेड़ों की जियो टैगिंग और फोटोग्राफी भी की गई है। इसका उद्देश्य जिले की प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखना और आने वाली पीढ़ियों तक उसकी जानकारी को पहुंचाना है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पन्ना की शाहनगर ग्राम पंचायत ने कचरे से कंचन मॉडल अपनाकर नई मिसाल कायम की है। इस पंचायत में घर घर से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जा रहा है। जैविक खाद बनाकर पंचायत ने सबसे ज्यादा आय अर्जित की है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरपंच मनोज जैन को सम्मानित किया। पंचायत का ये मॉडल अब दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। पन्ना जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों में रैली, शपथ और प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। पोस्टर, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को नशे के नुकसान बताए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व में पिछले महीने 3 बाघों की मौत के बाद वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों की टीम मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। लगातार हुई इन घटनाओं ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व देश में बाघ संरक्षण के लिए खास पहचान रखता है। पन्ना जिले के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। जिला प्रशासन और खेल विभाग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। अलग अलग खेलों के लिए नियमित अभ्यास कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: पन्ना जिले की चिट्ठी का प्रसारण अभी आपने सुना। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का और वाचन किया था अभिषेक कटियार ने।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:05 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है वर्ड्स ऑफ फरमाइश फिल्म संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ही पसंदीदा कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में, जहां आप अपनी पसंद के फिल्मी गीत आपके खुद की फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं व्हाट्सएप के जरिए और हम उन्हें पूरा करते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में पहला गीत हम लेते हैं फिल्म सड़क से। इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास ने। समीर का लिखा यह गीत है, संगीत नदीम श्रवण का है। और फरमाइश करते हैं हमारे ये श्रोता, मुरार संतर मुरार ग्वालियर से, गुड्डू मिश्रा, गिरीश मिश्रा, निशा मिश्रा, चौरसिया कॉलोनी से, कालू चौरसिया, पालू चौरसिया, रेखा चौरसिया, मुरार से ही हमें

रिश्ते की है दिनेश पाथम और रानी पाथम ने साथ ही इस गीत को पसंद किया है। ग्राम संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, उर्मिला देवी यादव, दीपक यादव और चांदनी यादव ने। आइए सुनते हैं फिल्म सड़क का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

हम साथ साथ हैं। इस फिल्म का गीत अभी आप श्रोताओं ने सुना। हरिहरन और घनश्याम की आवाज़ें थीं, फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बट्टा, नीलम बट्टा, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता। साथ ही इस गीत को पसंद किया मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादक खत्री। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से हमें फरमाइश भेजी इन्होंने। जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इस्ताक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत, फिल्म रंगीला से। हरिहरन और स्वर्ण लता की आवाज़ें हैं और हमारे ये श्रोता हैं जो फरमाइश करते हैं, मुक्काम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से श्री सुधाकर राजीव यादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजीव यादव देशमुख, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, हर्षद देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरपत देशमुख, पोती कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षता देशमुख। नई बस्ती गंज डोंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी, मोहम्मद कलीम अंसारी। बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंजूरी मंसूरी। अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली, श्लोक कुमार ये फरमाइश हमें भेजते हैं बुल्ढाना वडशिंगी महाराष्ट्र से। बुल्ढाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदीप दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजते हैं। आइए सुनते हैं फिल्म रंगीला से ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: श्रोताओं, इस गीत को गाया बप्पी लहरी और श्रेया घोषाल ने। रजत अरोरा का लिखा ये गीत था और इसे संगीतबद्ध किया विशाल एंड शेखर ने। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफसल मलिक, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, बैसुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी। साथ ही इस गीत को पसंद किया कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जादव, अनीता जादव, आरती पूजा, प्रसाद जादव, सोनल जादव, बीबी सिया जादव। श्रोताओं, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको अगला फरमाइशी गीत सुनवाएंगे।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है। ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे।
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। अलका याज्ञिक, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ें हैं। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। अड़ाड़ नानघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राकेश ऋषिता। साथ ही इस गीत को पसंद किया है ग्राम टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका। एंड वाणी थानी।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया फिल्म कभी हाँ कभी ना से। इस गीत को गाया अमित कुमार और उदित नारायण ने। फरमाइश हमारी इन श्रोताओं की थी। बिहार रेडियो लिसनर्स क्लब से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, सोनाली शर्मा और अनामिका शर्मा, शिव मंदिर दालमंडी से राजू बनारसी और राजेश कुमार यादव, बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। साथ ही इस गीत को पसंद किया पुराना तालाब डुमराव से बलीउल्लाह अंसारी, बेगम शबनम नाज, अस्मा नाज अंसारी और बेगम प्रमिला जाटव, जिल रूट बक्सर से राज अंसारी, शिल्पी राज और उमा राज, इंदिरा बिहार दिल्ली से वसीम अंसारी, बेबी अंसारी और यामिनी राज, जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र।

यादव, महेंद्र और जाह्नवी यादव। करणवीर हाउस भुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से। प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिज्योत। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। अगले कार्यक्रम में कुछ नए फरमाइशी गीतों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप फरमाइश फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए कुछ ही पलों में।

0: आई और फिनटेक विद एआई के ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। इनमें 55 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और 13 स्वशासी महाविद्यालय शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में इस निःशुल्क कोर्स के जरिए 2000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून टर्फ समेत दो सिस्टम सक्रिय होने से आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के बाकी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। और हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में शुभारंभ हुआ। इस टूर्नामेंट में देश की जूनियर पुरुष हॉकी टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो 8 अगस्त तक विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगी और राष्ट्रीय चैंपियन का फैसला करेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दिन के 11 बजे हैं। आप सुनिए फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम, बात आपकी गीत हमारे। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। दोस्तों, आप सूरज को ढलने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप रात को अंधेरे में एक दिया जरूर जला सकते हैं। जीवन का एक सीधा सा नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यदि आप अपने दिमाग में संशय, डर और निराशा के बीज बोएंगे तो सफलता का पौधा कभी नहीं पनपेगा। अपने विचारों को बदलने की शुरुआत आज से नहीं, अभी से कीजिए। अपनी सोच को बदलिए, आपका नज़रिया बदलेगा, और जब नज़रिया बदलेगा तो आपकी दुनिया आप अपने आप बदल सकते हैं, और बदलाव की शुरुआत खुद से ही होती है। तो याद रखिए, कहते हैं ना कि चैरिटी बिगेंस एट होम। ऐसी ही एक बदलाव, ऐसी ही एक शुरुआत आज हम कर रहे हैं। कि आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है कि वाहन चलाते वक्त आप कौन कौन सी सावधानियां रखते हैं। चलिए शुरुआत कर रहे हैं हमारे पहले श्रोता से। जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि वो आज के इस विषय को लेकर कितने जागरूक हैं। हाँ जी, नमस्कार।
2: हाँ जी
1: जी, अपना परिचय दीजिए।
2: जी, करेली से मोहन गहार बोल रहा हूँ।
1: करेली से
2: मोहन गहार।
1: मोहन गहार जी।
2: हाँ जी। हाँ जी, मोहन गहार बोल रहा हूँ करेली से।
1: जी, क्या करते हैं, काम क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप?
2: जी, टीचर हो।
1: अच्छा जी जी, तो आज हम बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज हमारी बात का विषय जो हमने रखा हुआ है वो ये है कि जब आप वाहन चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं?
2: नहीं, अभी तो हम रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं, उसमें तो ये सब कुछ नहीं है।
1: नहीं, आप गाड़ी चलाते वक्त कौन कौन सी सावधानियाँ बरतते हैं या किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आप इस विषय पर कुछ बोलना चाहेंगे?
2: गाड़ी चलाते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए, हमेशा बाएं तरफ गाड़ी चलाना चाहिए, और गाड़ी धीमी चलाना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए।
1: वाहन धीरे चलाना चाहिए, वाहन की गति नियंत्रित होनी चाहिए, और हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आप चौपहिया वाहन चला रहे हैं, फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो सीट बेल्ट का उपयोग करना ज़रूरी है, इस बात का ध्यान आप रखते हैं, ऐसा आप बता रहे हैं।
2: जी
1: जी, तो आप चाहते हैं कि अपने परिवार के सभी सदस्य जो वाहन चलाते हैं वो इन बातों का ध्यान रखें, इन बातों का पालन करें।
2: जी,
1: ये बातें न केवल स्वयं की सुरक्षा के लिए बल्कि हमारे आस पड़ोस में चलने वालों की जिंदगी का भी बचाव कर सकती हैं। आपने फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: हेलो, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है, अपना परिचय
1: आपको आ रही
0: दीजिए।
1: है? खाते
0: जी हाँ, परिचय दीजिए।
1: गांव से बोल रहा था गोविंद जलोजिया,
0: गोविंद जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: खाते गांव से। ये
0: अच्छा जी, खाते गांव से। ये कहाँ पड़ता है जी?
1: खाते गांव पड़ता है मतलब हर नेमावर से 15 किलोमीटर।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं गोविंद जी?
1: मैं अभी तो कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं वैसे ही हूँ,
0: अच्छा
1: रिटायरमेंट टाइप है। गाड़ी?
0: अच्छा अच्छा अच्छा गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल?
1: नहीं, वो तो मैं अपने मतलब चला सकता हूँ वैसे तो।
0: आपके परिवार में कोई और कोई सदस्य अगर गाड़ी चलाता हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बता सकते हैं?
1: हाँ, तो गाड़ी चलाते समय क्या मोटरसाइकिल का मेरे पास लाइसेंस भी है, 4 व्हीलर भी है। हाँ, और जो है मैंने अभी रिन्यू भी करवा लिया है। सबसे पहले तो एक नंबर में ये रहेगा कि गाड़ी की जो जगह रहेगी वहीं खड़ी कर दो, और दूसरा नंबर ये है कि दो से डबल मतलब यानी तीन मत बिठाओ।
0: अच्छा जी।
1: ये उसका नेम भी है। और हमेशा चलते रहे, साइड साइड देखे चलो, हाथ बताओ,
0: अच्छा
1: और
0: जी।
1: हमेशा पीछे कांच में देखते रहो, ध्यान
0: गाड़ी चलाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि
1: देना चाहिए। हाँ,
0: जब भी आप गाड़ी को लेकर सड़क पर चलें तो केवल सामने की ओर ही ध्यान न रखें, पीछे से आने
1: इधर
0: वाले
1: उधर नहीं
0: वाहन
1: देखो।
0: की अगर आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, पीछे वाला व्यक्ति अगर हॉर्न बजा रहा है ना, तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। वाहन चलाते समय आपको चारों दिशाओं में अपना ध्यान बना के रखना है, सड़क पर पूरा ध्यान केंद्रित करके चलना है।
1: हाँ, दाएं बाएं और सामने भी देखो।
0: जी, आपने अच्छी बातों की ओर इशारा किया कि केवल सामने ही ना देखें, पीछे से आने वाले वाहनों पर भी आपकी नज़र बनी रहे, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, आपने हमसे बात की, हमें अच्छा लगा। आपको एक गीत सुनवाते हैं। नमस्कार।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: हाँ जी नमस्कार
1: नमस्कार,
0: जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं ज्योति बात कर रही हूँ भोपाल से।
0: कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। बताइए, इन दिनों क्या चल रहा है?
1: अभी तो नाश्ता चल रहा है,
0: चलिए
1: बाकी गर्मी और बारिश के मजे लिए जाते हैं। और क्या,
0: चलिए, इस मौसम में वाहन चलाते वक्त आप कौन कौन सी सावधानियां बरतते हैं, यही हमने आज की बात का विषय रखा है।
1: अच्छा, सावधानियां तो सर ये कि हेलमेट लगा के जाते हैं, बारिश अगर हो रही है तो हेलमेट अगर रहेगा तो मतलब सावधानी, मुझे लगता है कि हेलमेट से हम बहुत सेफ रहते हैं। इसके अलावा रेनकोट हम लोग गाड़ी में रखते ही हैं, बस यही सब सावधानियां रखते हैं। और क्या,
0: बारिश के दिनों में फिसलने का अंदेशा ज़्यादा रहता है, तो गाड़ी को थोड़ा अतिरिक्त
1: हाँ,
0: सावधानी के
1: और
0: साथ में चल।
1: अभी दरअसल भोपाल में क्या कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है तो पूरे लगभग रोड तो थोड़े खराब ही हो रहे हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: बारिश में तो ये सब जगह ही रहता है, कहीं
0: जी हाँ जी हाँ
1: पानी
0: जी
1: भरा जाता है, कहीं मिट्टी विट्टी रहती है तो फिसलने का भी डर रहता है ऐसा।
0: तो इस मौसम में गाड़ी चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं अगर पानी भरा हुआ है तो हम धीमी गति से अगर गाड़ी चलाएंगे तो हो सकता है कि हमारे वाहन का संतुलन ना बिगड़े, लेकिन अगर अगर हम
1: हाँ
0: तेज़ गति से या बहुत स्पीड से अगर गाड़ी चलाते हैं तो उस गड्ढे से पानी तो उछलता है, पानी उछल के आसपास में चलने वाले राहगीरों पानी पड़ता है, तो वो एक अच्छी
1: जी,
0: बात नहीं है। और एक सावधानी तो ये हो ही जाती है कि अगर वाहन धीमी गति में है तो वो उस पर नियंत्रण पाना बड़ा आसान रहता है।
1: सर मुझे ऐसा लगता है कि धीमी गति में तो गाड़ी हमको वैसे भी मतलब इतनी स्पीड तो रखनी चाहिए जिसमें बस हमारी गाड़ी कंट्रोल हो सके। किसी
0: जी जी
1: भी सीजन में हमको इतनी स्पीड में गाड़ी चलानी ही नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है,
0: बिल्कुल। और
1: क्योंकि थोड़ी देर से हम पहुंचे हैं लेकिन सुरक्षित पहुंचे, मुझे ऐसा लगता है।
0: जी जी हमने एक विश्लेषण पढ़ा था कहीं कि लोग बहुत तीव्र गति से अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय हम नहीं बचा पाते हैं, मुश्किल से बमुश्किल 10 या 15 मिनट का ही अंतर आ पाता है। तो 10 या 15 मिनट बचाने के खातिर आप अपनी जान को दांव पर तो नहीं लगा सकते हैं ना।
1: बिल्कुल सही बात
0: और
1: है।
0: सड़क पर अगर आप तीव्र गति से गाड़ी चला रहे हैं, अनियंत्रित गति से गाड़ी चला रहे हैं, लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं, तो केवल ये आपका ही नुकसान होने का अंदेशा नहीं होता है,
1: आपका
0: आशंका
1: परिवार भी सफर
0: जी
1: करता है। जी
0: इस आशंका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि आपकी इस लापरवाही की सज़ा आपके साथ चलने वाले, आपकी सड़क पर चलने वाले लोगों को भी इसका
1: बिल्कुल,
0: खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ज्योति जी, आपने फ़ोन किया, हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। एक गीत हम आपको सुनवाना
1: मुझे
0: चाहेंगे।
1: भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करकर। आकाशवाणी का धन्यवाद, आकाशवाणी के पूरे परिवार का धन्यवाद। हम बहुत प्रोग्राम वगैरह सुनते हैं, आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं सालों से ही।
0: चलिए, इसी तरह जुड़े रहिए। फिलहाल एक गीत,
1: जी
0: आपकी नज़र।

0: हेलो। हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार सर जी। मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूँ, ग्राम खकल, तहसील कौंच, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। जी
0: दीपक जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से।
1: सर।
0: अच्छा जी, कैसे हैं दीपक सिंह जी?
1: सर मैं बहुत अच्छा हूँ और पूर्ण विश्वास और उम्मीद के साथ आप भी बहुत अच्छे होंगे।
0: हम तो बहुत बढ़िया हैं। बताइए, आज हम बात कर रहे हैं, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम के लिए,
1: जी
0: और हमारी आज की बात का विषय है कि सड़क पर जब आप वाहन चलाते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं?
1: देखिए सर, सड़क पर जब हम वाहन चलाते हैं, अगर हम टू व्हीलर से चल रहे हैं तो हमें पूरे तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए और हेलमेट लगाना चाहिए और दो लोगों को ही सफ़र करना चाहिए। और रास्ते पर हमें कहीं अगर दाएं बाएं मुड़ना है तो हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए कि हमारे पीछे कोई दूसरा वाहन तो नहीं आ रहा है। और अगर फोर व्हीलर से चल रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए
0: बिल्कुल सही बात। और
1: और हमें
0: इसमें
1: बड़ी
0: कोई इस जी
1: और ड्रिंक ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
0: मतलब नशा कर किसी भी प्रकार का नशा करने के बाद वाहन नहीं चलाना चाहिए।
1: जी जी सर।
0: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमसे साझा की है।
1: जी सर।
0: चलिए, इसी बात पर हम एक गीत आपको सुनवा रहे हैं।
1: जी धन्यवाद सर। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो,
0: आपकी आवाज़ हम तक आ रही है
1: आप कौन बोल रहे हो साहब?
0: जी? आकाशवाणी मध्य प्रदेश से शिवम बोल रहा
1: साहब,
0: हूँ।
1: मैं इतनी बार फोन लगाती हूँ, मेरा कभी भी फोन नहीं लगता एमएच हॉटलाइन में। ऐसा ऐसा ऐसा क्या हो जाता साहब?
0: आज तो लग गया है जी, हमारी तरफ से हम

0: फोन लाइन तो खोल के रखते हैं लेकिन फोन नहीं लग पाता, ये शायद किसी और वजह से होता होगा।
1: जी हम रतलाम डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं। मतलब मैंने कितनी बार ट्राई करी, कितनी बार ट्राई करी भाई साहब, पर मेरा क्यों नहीं लगता है।
0: जी, बताइए, अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम है सरला चौहान और मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट ताल आलोट आलोट जी।
0: सरला जी,
1: हाँ
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी हाँ, मैं आलोट आलोट तहसील रतलाम डिस्ट्रिक्ट।
0: आलोट से बोल रही हैं। परिवार के सदस्य गाड़ी चलाते हैं तो किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, आप अगर इस विषय पर कुछ बताना चाहें तो बताएं।
1: जी हाँ बताऊंगी ना, कि आप गाड़ी हमेशा नियम से बाएं हाथ पे चलाना चाहिए और धीमी गति में चलाना चाहिए और सभी का ध्यान रखना चाहिए। जी
0: और
1: हाँ, और सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जो ट्रैफिक है उसको देख के चलना चाहिए और किसी भी सिग्नल को तोड़ना नहीं चाहिए।
0: तो सरला जी, आपने बहुत बढ़िया बात की हमसे, लेकिन एक बात हम इसमें जोड़ना चाहेंगे कि
1: जी हाँ
0: जब भी हम वाहन चलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो सड़क है, वो
1: जी
0: रेस
1: हाँ
0: का मैदान नहीं है।
1: जी हाँ
0: अगर आप सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, किसी से होड़ करते हैं, किसी से रेस लगाने लगते हैं, तो ना
1: हाँ
0: केवल ये आपकी जान के साथ खिलवाड़ है,
1: जी
0: बल्कि
1: हाँ
0: उस सड़क पर चलने वाले अन्य राहगीरों के लिए या
1: जी
0: दूसरे
1: हाँ
0: वाहन चालकों की जान भी आपकी इस आदत की वजह से खतरे में पड़ सकती है।
1: जी हाँ दूसरों को भी खतरा रहता है। वो स्वयं गाड़ी वाहन चलाते समय कृपया मोबाइल से बात न करें, कहीं भी रुककर बात करें, और आपस में दो दो बैठे हो तो भी बात न करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस बात को ध्यान में रखकर गाड़ी चलाएं कि आप जब गाड़ी चलाएं तो केवल अपना पूरा ध्यान, केवल और केवल आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो।
1: जी हाँ जी हाँ
0: धन्यवाद आपको।
1: जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।

0: हाँ जी नमस्कार।
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी जी जी सुन पा रहा हूँ सर, जितेंद्र पंडोले बात कर रहा हूँ सर, मैं छिंदवाड़ा से। सर
0: अच्छा जी बताइए कैसे हैं।
1: मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज आपने फ़ोन किया है बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, और आज
1: जी
0: की
1: जी
0: बात का विषय है कि वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां आप रखते हैं और कौन कौन सी रखी जानी चाहिए जिनकी जानकारी आपको हो लेकिन आप अपने हमारे और किसी श्रोता को वो जानकारियां बताना चाहेंगे।
1: जी जी जी जी सर, वाहन चलाते हैं सर आजकल तो सभी लोग वाहन का यूज कर रहे हैं सर, और ज्यादातर ई व्हीकल यूज करना भी चाहिए। वाहन चलाते समय सर सबसे पहले हम घर से निकले तो एक तो फोर व्हीलर से निकले तो सीट बेल्ट लगाए, और बाइक या मोपेड से निकले तो हेलमेट लेकर कैरी कर साथ में निकले। और सर साथ में निकले तो प्रॉपर जो सिग्नल्स होते हैं उसको फॉलो करें, ना कि बिना सिग्नल को देखे और उसको इग्नोर करके तोड़ के चले जाए, ये दुर्घटना का बड़ा कारण हो सकता है सर। तो इन चीजों की सावधानी रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
0: बिल्कुल, आपने एक बड़ी अच्छी बात की ओर इशारा किया है कि वाहन चलाते समय हम सिग्नल्स की अनदेखी ना करें। आपाधापी में या जल्दबाजी के दौरान इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए कि कोई भी सिग्नल अगर आप जंप करते हैं तो ये ना केवल आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है बल्कि सड़क पर चलने वाले किसी दूसरे
1: जी
0: व्यक्ति की
1: बिल्कुल
0: भी
1: बिल्कुल सर,
0: जान आपकी इस हरकत की वजह से, आपके इस दुर्घटना को आमंत्रित करने वाले तौर तरीके की वजह से खतरे में पड़ सकती है।
1: जी सर,
0: आपने हमारे इस कार्यक्रम में फ़ोन किया, इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपको देते हैं धन्यवाद। एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे।
1: जी
0: नमस्कार।
1: जी जी नमस्कार सर, नमस्कार।

0: हाँ जी नमस्कार
1: जी सर, नमस्कार।
0: जी।
1: सर, आकाशवाणी से बात कर रहे हैं।
0: हाँ जी आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। अपना परिचय दीजिए।
1: सर, मैं पिंकी असाटी छतरपुर से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी कैसी हैं जी?
1: मैं ठीक हूँ सर, बढ़िया हूँ मैं।
0: अच्छा जी क्या करते हैं आप?
1: सर, मैं बेसिकली एक टीचर हूँ।
0: अच्छा जी तो वाहन चलाते हैं कि नहीं आप? गाड़ी
1: जी सर,
0: चलाते हैं
1: चलाती हूँ। जी
0: जी।
1: सर,
0: गाड़ी चलाते वक्त किन किन बातों का आप ध्यान रखती हैं, किन किन बातों को चाहती हैं कि दूसरे भी इन बातों पर ध्यान दें?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा सर।
0: जी
1: एक्चुअली मैं तो अभी मैंने गाड़ी भी नई नई ही सीखी है, तो मैं जो मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात सर कि ट्रैफिक सिग्नल को हमें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, जो कि ज्यादातर लोगों को जब गाड़ी बहुत अच्छे से आ जाती है तो वो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। और बहुत सारी चीजें सर, बरसात के समय में तो विशेष रूप से हमें सड़क का भी ध्यान रख के, ओवर स्पीड ना करके, ऐसी कई चीजें सर जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए।
0: आपने एक बहुत अच्छे विषय की ओर इशारा किया है कि बरसात के दिनों में चूंकि सड़कें गीली रहती है, उस पे मिट्टी कीचड़ वगैरह रहता है, तो
1: जी सर,
0: वाहनों को फिसलने की जो अंदेशा रहता है, आशंका जो रहती है, वो बढ़ जाती है। तो ऐसे मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए गाड़ी चलानी चाहिए
1: बिल्कुल सर।
0: जी। और कोई ऐसी बात जो लगता है कि जिसकी ओर सामान्यतः व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़ पाती है, वो सामान्य तौर पर उस बात को नज़रअंदाज कर जाता है, वो अगर आप बताना चाहें तो?
1: हाँ सर, मेरे हिसाब से तो मैंने जो अपने यहाँ देखा है, तो ट्रैफिक सिग्नल ही सबसे बड़ा इशू है। आजकल की इस भारतीय दुनिया में लोग इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नल की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल ये एक आपने अच्छा मुद्दा उठाया कि सड़कों पर चलते समय, गाड़ी चलाते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स जो बनाए गए हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हमारी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। तो किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर जब रुकने का अगर निशान है, रुकने का इशारा किया गया है, तो रुकें, और जब चलने की बारी आए तभी चलें। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें, और गाड़ी मोड़ते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गाड़ी मोड़ रहे हों या आप लेन बदल रहे हों, तो जब तक आप प्रॉपर तरीके से, जब तक इस बात को पुरजोर तरीके से दूसरों को ना बता दें, तब तक आप अपनी वाहन को दूसरी लेन में ना पहुंचाएं या दूसरे लेन में ना चलाएं।
1: जी सर, बिल्कुल, इसका भी ध्यान रखना चाहिए।
0: जी गाड़ी मोड़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि अपना हाथ जो है, जिस ओर मुड़ रहे हैं आप, उस ओर का हाथ आपको इतना इस तरीके से इशारा करना है कि पीछे चलने वाला या सामने से आने वाला वाहन चालक उस बात को समझ जाए। कुछ लोग केवल हाथ हल्का सा थोड़ा सा ऐसा हिलाते हैं या केवल हल्का सा हाथ थोड़ा सा उठाते हैं, जिससे यही नहीं

0: नहीं पता चल पाता है कि वो मुड़ना चाह रहे हैं या उन्होंने केवल सामान्य तौर पर अपना हाथ ऊपर उठाया है।
1: बिल्कुल
0: चलिए, आपने हमसे अच्छी बातें की, आपने बहुत

अभी आप सुन रहे थे फ़ोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। अब ये कार्यक्रम ख़त्म होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: ग्यारह बजकर 58 मिनट होने जा रहे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल उज्जैन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा की शुरुआत आज से होने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। यहां मालवा एक्सप्रेस के अलावा सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज रहेगा। इंदौर जाने वाली ट्रेनें अब निषादपुरा से शुरू होंगी। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग 5 से 8 अगस्त तक भोपाल में आयोजित होगी, जिसमें ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय, वन विहार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा भी करेंगे। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। यह दिन जलवायु परिवर्तन, प्रकृति की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के कल्याण के लिए प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के महत्व पर जोर देना है। वहीं आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इस वायरस के लिए एक टीका विकसित किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल और इंदौर सहित सभी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। बारह बजने जा रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला नगमा ये रहा।

आशा भोसले और साथियों को आप सुन रहे हैं अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आर डी वर्मन ने इस गीत को संगीत से सजाया है, बोल है आनंद बख्शी के और सुनने वाले हमारे ये सभी श्रोता। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बेडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। भाटापारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के लिए अपनी चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा ने। अब कार्यक्रम में हम जिस गीत को लेकर आ रहे हैं उस गीत के लिए अपनी चिट्ठी लिख भेजी है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, अस्मा, सालिया, शोएब खान और साथ में हैं शाहिद भाई। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश करते हैं और

ये है अभिजीत गावणकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गावणकर, इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से अगला खत लिख भेजा है हमें शैलेश गावणकर, वैशाली, श्वेता, सुमित और ध्वनि गावणकर ने। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। ये गीत है बधाई दो फिल्म से, नक्श अजय अमित त्रिवेदी और साथियों ने इसे गाया है, वरुण ग्रोवर ने शब्द दिए हैं और धुन है अमित त्रिवेदी की।

और अब हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं हमारे इन दोस्तों की फरमाइश। ये है गोलमाल फिल्म का वो गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और अमित कुमार ने। गुलजार के बोल हैं राहुल देव बर्मन का संगीत। सुनना चाहते हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु, राशि, रक्षित एवं इनका पूरा परिवार, अनिल कवचाले, नेहा फणसे, सीमा, सबीहा, पूजा, सुषमा, स्मिता और इनके साथियों ने ये गीत सुनना चाहा है। चिट्ठी लिख भेजी है स्कीम नंबर 71 इंदौर से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातमा खातून, पुराना तालाब डुमगांव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज, चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और इनका परिवार, सारिमपुर बक्सर से इस ख़त को लिख भेजा है राज एसडी अंसारी और गुलफराज भागलपुरी ने। इन सभी दोस्तों ने सुनना चाहा है गोलमाल फिल्म का ये गीत।

सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ ताल कहाँ सम कहाँ तुम कहाँ हम कहाँ तेरे कर तुम नान कर तुम तेरे कर तुम नान कर तुम हम तुम नाता साथ हिपाता

ये गीत आप सुन रहे हैं काला पत्थर फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने इसे गाया है, साहिर ने लिखा, धुन राजेश रोशन की। इस गीत को और इस गीत के बाद आने वाले गीत को सुनवाने के लिए हमारे जिन दोस्तों ने अपनी चिट्ठियां लिख भेजी हैं उनके नाम ये रहे: जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनका पूरा परिवार हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से ये चिट्ठी लिख भेजते हैं। राजपुर से ये अगला खत आया है: घीसू, दिलवारे, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, स्मिता, सौरभ और कुणाल दिलवारे का, गांव भड़भूंजी, ज़िला आगर, मध्य प्रदेश से ये चिट्ठी लिख भेजे हैं। रघुनाथ मालवीय, भंवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला और ओम प्रकाश ने। और एक दो खत और हैं, ये हैं राम सखी परमानंद, सौरभ, गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और इनका पूरा परिवार, श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य और साथ में हैं परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। इन्होंने गोल बाजार बक्सा।

सर से ये खत लिख भेजा है। ये गीत है कविता कृष्णमूर्ति और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में, अनजान के बोल। फिल्म का नाम शोला और शबनम, धुन बप्पी लहरी की।

0: शोल और शबनम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म होता है। आप सभी को हमारा नमस्कार। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:25 होने जा रहे हैं, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 12:30 हुए हैं, ये समय है संग्रहालय से कार्यक्रम का। इसमें इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कामिनी का एकांतारे, आज इसकी 13वीं कड़ी का प्रसारण किया जा रहा है।
4: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी का एकांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी का एकांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 13वां भाग। अब तक आपने सुना कि भेषज्ञ त्रिलोचन उज्जैनी जाते हैं और अपने मित्र वैद्यराज मृगांक दत्त से मिलते हैं। त्रिलोचन का उद्देश्य वैसिका से मिलना है और इसी के लिए वे मृगांक दत्त की सहायता लेते हैं, परंतु उनका कार्य सिद्ध नहीं होता क्योंकि रानी पिंगला और वैसिका अज्ञातवास में कठोर तांत्रिक अनुष्ठान कर रही होती हैं।

0: सुझाव चंपा का ही था कि रानी को अनुष्ठान करना चाहिए। चंपा नरेश की उपपत्नी है, दहेज में रानी के साथ मायके से आई हुई दासी। परंपरागत सेवा समर्पण से संपन्न है वो। वो जानती है कि वो ब्याहता नहीं है। चंपा ने कभी रानी होने का सोचा भी नहीं, किंतु वो सदैव राजा को अपना स्वामी ही नहीं, मन ही मन अपना पति भी मानती आई है। और अब तो उसके गर्भ में राजा का अंश, राजा का गर्भ भी पल रहा है।
1: राजा के चले जाने पर मेरा मन चिंतित है और उद्विग्न भी। मैं जानती हूँ कि संतान की कामना में रानी पिंगला बहुत अशांत

0: और व्यग्र रहती है। इसलिए गत 15 महीनों से प्रति माह पूर्णिमा को गढ़ कालिका की महाअर्चना हेतु जाती रही है। नितांत गोपनीय रूप से गुप्त द्वार से अकेली, किसी को सूचना नहीं। वो नहीं चाहती कि राजा को अनुष्ठान का ज्ञान हो। वह संतान के रूप में फलवती होकर महाराज को आकस्मिक प्रसन्नता देना चाहती है।
1: महाअर्चना के दुर्ग से बाहर के यात्राओं में सुरक्षा के लिए महारानी के साथ केवल एक अत्यंत विश्वसनीय, बलिष्ठ, सुंदर और युवा सेना नायक उनके साथ होता था, जो महालय के भीतर कभी नहीं आया। कौन था ये भी किसी ने नहीं जाना। महादेवी अंतिम बार होलिका पूर्णिमा को गई थी और तभी से गुमसुम है। चंपा ने अनेक बार उनके उन्मन क्षोभ का कारण जानने का प्रयास किया, किंतु वो तो गहरी सांस भर कर रह जाती या आंसू टपकाने लगती। इसी बीच राजा भर्तृहरि किसी दिन अचानक और अज्ञात रूप से महालय और उज्जैनी छोड़कर चले गए। कहां किसी को ज्ञात नहीं।

40 दिन का अत्यंत कठोर तांत्रिक अनुष्ठान, जिसका सुझाव और परामर्श चंपा ने रानी पिंगला को दिया था। निर्जन बियाबान स्मशान भूमि में इसे साधा जाना था। इस अवधि में कठोर संयम और नियमों का निर्वाह। अनुष्ठान की अवधि में रानी को नंगे पांव रहना होगा, सिर में तेल नहीं लगेगा, केश खुले और सूखे रहेंगे। एक समय स्वपाकी भोजन, निरामिष और शुष्क सभी कार्य स्वयं, और रात में जलती चिताओं के बीच मंत्र पाठ, हवन और साधना। वैसिका सोच रही थी कि ऐसा कठोर अनुष्ठान क्यों स्वीकार कर लिया रानी ने। उसका ये अनुमान दृढ़ होता जा रहा था कि नरेश ने महारानी के कारण ही घर छोड़ा है, किंतु कारण वो नहीं जानती थी। वो जानती थी कि पुत्र कामना के लिए महादेवी प्रति पूर्णिमा की रात गढ़कालिका की ओर जाती थी, किंतु उनके साथ कौन होता था ये उसे ज्ञात नहीं था। वो महामात्य के साथ अपने संशय को साझा करना चाहती थी, पर न उसे इसका अवसर मिला और न उसने इसके लिए अवसर को निकाला ही।

0: अब तू लौट जा चंपा।
1: जी।
0: यहाँ वैसिका रहेगी हमारे साथ। 40 दिन का कठोर जीवन तेरे लिए ठीक नहीं है। तेरी कोख में जो संतान है वो केवल राजा की ही नहीं हमारी भी है। उसे संभाल कर रखना तुझ पर बहुत बड़ा दायित्व है। यूं समझ ले कि हमारा ही अंश तेरे गर्भ में पल रहा है। संभव है कि यही हमारे माथे का दुर्भाग्य पहुंचे।
1: किंतु रानी जी, आप कैसे साथ पाएंगी 40 दिनों का ये कठोर अनुष्ठान? कठोर भूमि पर शयन तो दूर, आप कभी नंगी भूमि पर भी नहीं बैठी। अल्पाहार, निराहार, उपवास, नितांत शुष्क एकांत साधन।
0: चंपा मेरी बहन, स्त्री सब साथ लेती है, सह लेती है। सहते जाने का अभिशाप ऐसे कठिन समय में हमारा अभ्यास हो जाता है। चंपा, किसी को पता ना चले कि तुम गर्भवती हो।
1: जी रानी।

0: हमारे वापस आने तक तुम्हें महालय का गुमान बनाए रखना है।
1: जी बिल्कुल।
0: और महामात्य सब जानते हैं, वो तुम्हारे अभिभावक हैं, रक्षा करेंगे तुम्हारी, महाकाल सब मंगल करेंगे। चंपा अब हम चलते हैं।
1: जी रानी।
2: चंपा बहन, महादेवी की चिंता ना करना, वैसिका उनके लिए अपने प्राण तक समर्पित कर देगी। ये अनुष्ठान उनके अकेले का नहीं है, मैं भी उनके साथ हूँ। वो अपने पति को वापस लाना चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि अवंती नरेश अपनी राजधानी में वापस आ जाएं।
1: जी।
2: महामाती ने इस अत्यंत गोपनीय अभिचर के लिए मुझे सहयोगी के रूप में चुना है, मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी।
0: क्या हुआ वैसिका?
2: कुछ नहीं देवी, देव के विधान पर सोच रही थी। काल की गति और परिणाम जानने के गर्वोक्ति चाहे विज्ञानी करें या कोई देवज्ञ, कोई समझ नहीं सकता। आप किंचित विश्राम करें, मैं इन 40 दिनों वाली पूजा की व्यवस्था लगाती हूँ। और क्षमा करें महादेवी, इन 40 दिनों में अपने उपयोग का जल आपको स्वयं ही नदी से भरकर लाना होगा। आज शनिवार है और आपके अनुष्ठान का प्रारंभ आज ही से हो रहा है।
0: हम तो भूल ही गए थे कि अब 40 दिन तक हम राजमहिषी नहीं हैं।

रानी पिंगला ने तंत्र उपचार प्रारंभ कर दिया। कुटिया से 10 धनुष उत्तर में अधसूखे वृक्ष पीपल के नीचे क्रियाएं होनी है। वैसिका ने अनुष्ठान की सामग्री वहां क्रमानुसार लगा दी। मूंज, कुश, खप्पर, दीपक, जौ, तिल, अक्षत, गंध आदि, कच्चा सूत, इंद्रजौ, गुग्गल, रक्तचंदन, कर्पूर, संपूर्ण सामग्री का संयोजन अत्यंत सावधानी से, तनिक भी त्रुटि अथवा न्यूनता अधिकता अनुष्ठान की असफलता का कारण बन सकती है। अत्यधिक सतर्क थी वैसिका सामग्री सहेजने में।

अर्धरात्रि से दो घड़ी पूर्व रानी पिंगला तांत्रिक क्रिया संपन्न करके कुटिया में लौटी। पहला दिन व्यतीत हुआ। 39 दिन अभी और यही क्रम, यही साधना होनी है।

0: वैसे का दीप जला लेती, भीतर अंधेरा भरा है।
1: मुझे रात्रि में चित लेट कर आकाश की ओर ताकना अच्छा लगता है महादेवी। दीपक की लौ से ये भान होता है कि कोई और भी है, और इससे आकाश के शून्य से मेरे संबंध में बाधा उत्पन्न होती है।
0: ओहो, तो इन दिनों आकाश से

0: सहायता भी कर सके हम तुम्हारी।
1: इस प्रसंग को छोड़िए महारानी, आप अपना भोजन बना लें, मैंने अपना बना लिया है।

0: दिन प्रतिदिन यही उपक्रम, रानी पिंगला और वैसिका की ऐसी ही नित्यचर्या, जिसमें 40 दिवस और 40 रात्रियां व्यतीत हो गई। उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए महामात्य ने विशेष व्यवस्था कर रखी थी। धनुष बाण, खड़क से प्रतिपल सन्नत जीवा सदा उनके आसपास रहता, किंतु अदृश्य, उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित, केवल वैसिका ही जानती थी। रानी यही समझती रही कि वो दोनों ही केवल उस निर्जन एकांत में हैं, उनके सामने जीवक कभी प्रकट नहीं हुआ। 40 दिन पूरे होने के बाद जीवक महादेवी के सामने आया।
1: सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महादेवी।
2: जीवक नाम है ना तुम्हारा?
1: हाँ महादेवी।
2: किस ग्राम से हो? हम व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी कृतज्ञ हैं। तुम्हें महामाते ने नियुक्त किया है ना?
1: महादेवी का अनुमान सत्य है।
2: कृषक हो?
1: मृत्यु हूँ महादेवी का।
2: अवंती पहुंचकर हम महामात्य से कहेंगी कि तुम्हें 5 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएं।
1: आपका अनुग्रह दास का सौभाग्य है।
3: बंधु जीवक, ये महारानी है अवंती नरेश की अर्धांगिनी, जानते हो?
1: जानता हूँ देवी, क्यों नहीं जानूंगा।
3: तुम कृषक नहीं हो जीवक, यही सच है। तुम महादेवी के सामने असत्य भाषण कर रहे हो, और ये कि तुम महामात्य के परम विश्वस्त हो।
1: मेरा परम सौभाग्य है कि मैं महामात्य का क्रीत दास हूँ।
3: मैं भी क्रीत दासी हूँ, मुझे भी महामात्य ने क्रय किया था। अब अपने अपराध का दंड सुनो। तुम्हें हमारे साथ मेरे और महादेवी के साथ बैठकर भोजन करना पड़ेगा। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा महारानी?
2: नहीं वैसे का जीवक, इसे महादेवी की ओर से उनकी सेवा का पुरस्कार मानो।
3: अब स्वपाक स्व अवलंब की बाध्यता नहीं रही महादेवी, आप विराजें, मैं भोजन प्रस्तुत करती हूँ।
1: मैं एक सूचना लेकर प्रस्तुत हुआ था स्वामिनी।
3: मुझे स्वामिनी ना कहो जीवा। हाँ तो क्या सूचना है?
1: प्रातः ही यहाँ से प्रस्थान करना है, महामात्य व्यग्रता से आपकी प्रतीक्षा में है।
3: अन्य कोई सूचना?
1: कल सायं तक आप कनक श्रृंगा पहुंच जाएंगी, मुझे बस इतना ही ज्ञात है। प्रातः आप दोनों के लिए सवारी आ जाएगी। 4 कोस तक रथ का मार्ग नहीं है, वहां तक अश्व पर चलना होगा।
3: और कुछ
1: नहीं।
3: अच्छा ये बताओ, मेरे विषय में महामाती ने तुमसे कुछ कहा था?
0: जीवक चुप रहता है।
3: मैंने कुछ पूछा है जीवक?
1: जी यही कहा था कि महादेवी तो हैं ही, आपको भी मैं स्वामिनी समझकर ही व्यवहार करूं।
0: राजवर्ग से श्रेष्ठी वर्ग तक समाचार फैल गया कि रानी पिंगला गर्भवती हैं। महादेवी अपने कोख में भावी नरेश का बीज सहेज कर आ रही हैं। प्रजा की दसियों वर्ष की प्रतीक्षा फलवती होगी। महादेवी कल सायंकाल पुत्र श्रेष्ठी अनुष्ठान संपन्न करके महालय लौट आई हैं। नरेश अभी नहीं लौटे हैं, उनके लौटने का मुहूर्त राज ज्योतिषी निश्चित करेंगे। ग्रह दशा पूर्ण अनुकूल होने पर ही राजा भर्तृहरि महादेवी का दर्शन करेंगे।

उत्सव प्रिय उत्सव धर्मी कनक श्रृंगा अवंती में नूतन चेतना का समीकरण बहने लगा। तोरण पताका यत्र तत्र सर्वत्र लहराने लगी। मार्गों वीथियों पर सुगंधित पुष्पों का ढेर जमा होने लगा। क्षिप्रा तट पर मंगल गान हेतु सुंदरियां एकत्रित होने लगी। आज उत्सव श्रृंखला की

महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात हरसिद्धि मंदिर पहुंचेगी, मंगलनाथ की अर्चना करेंगी, काल भैरव का समराधन कर गढ़ कालिका पर कुल सत्र में सम्मिलित होंगी और सायंकाल क्षिप्रा में दीप

0: महामात्य पधारे हैं, शीघ्र भेंट के लिए आग्रह किया गया है।
1: उन्हें सादर निवेदन करो कि महादेवी अभी पहुंचती हैं।
0: जी।
1: स्वामिनी, महामात्य पधारे हैं।
0: क्या?
1: महामात्य भेंट चाहते हैं, आ चुके हैं, वासंती कक्ष में प्रतीक्षारत हैं।
0: अच्छा वैसिका, तुम चलो, हम आते हैं।
1: देव दासी प्रणति निवेदन करती है।
2: ओह वैसिका, बैठो बैठो।
1: लोकापवाद होगा महामना, एक दासी महामाती की उपस्थिति में आसन ग्रहण करेगी तो महालय हिल उठेगा। मैं तो अकिंचन हूँ, अस्तित्वहीन, किंतु लोक विश्वस्त अवंती राज्य के देवमान्य महामाते का गौरव नहीं। देव, इस समय आप भी स्वतंत्र नहीं हैं।
2: वैसिका, तुम नहीं जानती कि मैं कितना अकेला हूँ। कुल परिवार के सभी जन अपने अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं, लेकिन मैं अपने एकांत में भटकता रहता हूँ। तुमने कदाचित ना सोचा हो कि तुम्हारा साथ पाकर मैं अपना दायित्व और सुचारू रूप से निर्वाह कर पाऊंगा। मैं भीतर से थक रहा हूं वैसिका, दृढ़ता का अभिनय अब मुझसे नहीं सध पा रहा।
1: शांत हो देव, आसन ग्रहण करें।
2: महीनों से राजा के दर्शन नहीं हुए, राज्य आरक्षित हो रहा है, बाह्य शत्रु तो घात लगाए ही रहते हैं। कौन जाने राज परिवार के ही किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कब जाग उठे। राजा की उपस्थिति के अभाव में महामाते की शक्ति वंध्या हो जाती है। चौमासा चला गया और महाराज के विषय में कोई सूचना नहीं है। प्रजा और राजन्यों को भरमाने के लिए मैंने महादेवी के गर्भवती होने का भ्रम फैलाया है, एक अर्ध सत्य का सहारा लिया है। मुझे तुम्हारे अवलंब की आवश्यकता है वैसिका। क्या मैं केवल महामाते ही बना रहूं? मुझे मनुष्य नहीं रहना चाहिए?
1: अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य का महामाते भी आदमी अवलंब के अभाव में कितना शीहीन है। प्रवंचना और असत्य के महाव्यापार में विश्वास की इच्छाओं के बिना क्यों नहीं जी पाता। महाकाल, तेरी रचना विचित्र है।
0: महादेवी पधार रही हैं।
3: आसन ग्रहण करें आर्य।
2: महादेवी स्वस्थ तो है ना?
3: अनुग्रह है महाकाल का, आप पधारने का हेतु कहें।
2: वो क्या गोपनीय चर्चा कर सकता हूँ?
3: ओ वैसिका, तुम यहीं ठहरो और सुनो कि आर्य महामात्य क्या क्या कहते हैं। हमारा चित्त भी उद्विग्न।

और सुनो कि आर्य महामात्य क्या क्या कहते हैं। हमारा चित्त अभी उद्विग्न है, द्वंद बना रहता है। ऐसे में महामात्य

0: आदेश माना जाए।
1: क्षमा करें महादेवी, ये उचित नहीं होगा।
0: क्यों, क्या बाधा है आर्य?
1: इसलिए कि राजन्य वर्ग का अहंकार किसी परिचारिका अथवा दासी को अचानक अपने समकक्ष स्वीकार नहीं करेगा। महाराज यहां होते तो कुछ संभव था। इस समय तो इसे षड्यंत्र ही समझा जाएगा, विरोधियों को अपवाद का अवसर मिलेगा। आपके देवर कुमार विक्रम पहले से ही असंतुष्ट हैं। महाराज की अनुपस्थिति में उनका स्वेच्छाचार सीमाएं लांघ रहा है।
0: फिर
1: हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी, सतर्कता और संतुलन बनाए रखना होगा।
0: आर्य
1: जी,
0: इस उत्सव के दीर्घ आयोजन का प्रयोजन बताएंगे आप?
1: निश्चय ही देवी। प्रथमता तो ये कि इतने दिनों तक प्रजा उत्सुक और व्यस्त रहेगी, उसका ध्यान बटा रहेगा। कुछ दिन उत्सव में बीतेंगे, फिर कुछ दिन उसकी चर्चा, स्मृति और आलोचना में। तब तक संभव है कि महाराज की कोई सूचना हमें मिले, अथवा सौभाग्य से वो स्वयं आ जाएं। उसके अतिरिक्त ये समाचार भी फैलेगा कि इस उत्सव का आयोजन राज्य के उत्तराधिकारी के गर्भ में आने के कारण हो रहा है। समाचार महाराज तक भी पहुंचेगा और वो स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। मैंने तो यही सोचा है, आगे महाकाल की इच्छा। आप कुछ और जानना चाहेंगी महादेवी?
0: हमें क्या जानना है आर्य?
2: अनुचित ना हो तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आर्य। निवेदन करूं स्वामिनी?
0: वैसिका, हमने तो पहले ही अपना दायित्व तुझे सौंप दिया है, अतः कोई संशय या जिज्ञासा हो तो आर्य के सम्मुख रखो।
2: देव
1: जी,
2: आपकी योजना सर्वांग संपुष्ट है। महाराज के गमन को 3 माह और 27 दिवस व्यतीत हुए हैं, इसलिए ध्यान रखना होगा कि गर्भ 4 माह से अधिक का है। इस उत्सव में महादेवी जहाँ भी पहुँचें, उनके उठने बैठने वार्ता व्यवहार से ये परिलक्षित होना चाहिए कि वे गर्भवती हैं और उन्हें इन दिनों प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी युक्ति से सामान्य प्रजा के बीच जाना होगा, ताकि राजन्य वर्ग में जनसाधारण में नरेश की अनुरक्ति की चर्चा चले। प्रजा की अनुरक्ति नरेश के प्रति षड्यंत्रों को हतोत्साहित करती है।
0: हाँ, ये उचित है।
1: हाँ, ये ठीक है।
3: सभी ने वैसिका के सुझाव पर सहमति व्यक्त की।

अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 13वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कामिनी काय कांतारे की 13वीं कड़ी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल उज्जैन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मिशन बुनियाद परियोजना का शुभारंभ और नवनियुक्त प्राथमिक शाला शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। भोपाल के चौथे रेलवे स्टेशन निषादपुरा का आज से शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां मालवा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यहां सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का स्टॉपेज भी रहेगा। वहीं इंदौर जाने वाली ट्रेनें अब निषादपुरा से शुरू होंगी। 5 से 8 अगस्त तक भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक मीटिंग में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्री और प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतिनिधि मंडल जनजाति संग्रहालय, राज्य संग्रहालय और वन विहार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का दौरा भी करेंगे। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के कल्याण के लिए प्रकृति संरक्षण और सतत विकास के महत्व पर जोर देना है। वहीं आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी है। यह दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ. बारुक ब्लमबर्ग के जन्म

0: दिन पर मनाया जाता है जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की और इस वायरस के लिए एक टीका विकसित किया। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब, उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। इससे वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होंगे। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित सभी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने का अनुमान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

सुखियों बारिश की इस रिम झिम फुहारों के साथ महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी प्यारी प्यारी सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए सुषमा व्यास का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कहते हैं स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जागरूकता उसकी सबसे मजबूत सुरक्षा। सखियों, हम अपने परिवार के हर सदस्य की सेहत का ख्याल रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो बिना शोर मचाए धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। ऐसी ही एक बीमारी है हेपेटाइटिस, जो हमारे लीवर यानी यकृत को प्रभावित करती है। सखियों, इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। सखियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये हेपेटाइटिस होता क्या है। सखियों, हेपेटाइटिस यानी लीवर में सूजन, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे सामान्य सा कारण है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई वायरस। सखियों, इनमें से कुछ प्रकार के दूषित भोजन और पानी से फैलते हैं, जबकि कुछ संक्रमित खून और असुरक्षित इंजेक्शन या असुरक्षित शारीरिक संपर्क से भी फैल सकते हैं। सखियों, चिंता की बात यह है कि कई बार शुरुआत में इसके कोई खास लक्षण दिखाई ही नहीं देते, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक लीवर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। सखियों, अगर लगातार थकान महसूस हो, भूख कम लगे, आंखें या त्वचा पीली पड़ जाए या फिर पेट में दर्द हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। समय पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। सखियों, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए जरूरी है कि हमेशा हम साफ और उबला हुआ पानी ही पिए, बाहर का कटा हुआ फल या अस्वच्छ भोजन खाने से बचे, इंजेक्शन हमेशा नई और डिस्पोजेबल सुई से ही लगवाइए, किसी का रेजर, नेल कटर या फिर टूथब्रश साझा ना करिए, बच्चों और नवजात शिशुओं का हेपेटाइटिस बी टीकाकरण समय पर जरूर करवाइए और यदि डॉक्टर सलाह दे तो समय समय पर अपनी जांच भी करवाते रहिए। सखियों, अक्सर हम महिलाएं पूरे परिवार की सेहत का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी जांच और स्वास्थ्य को टाल देती है। याद रखिए सखियों, यदि आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो बीमारी से लड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उससे पहले ही बचाव कर लेना चाहिए। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ये तो बात हुई स्वास्थ्य की, और कार्यक्रम में आज सखियों आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुनवाती हूँ ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

सखियों, आज के दौर में हर महिला की यही इच्छा होती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, अपने परिवार की आर्थिक मजबूती में हाथ बटाए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। इसी सोच को साकार करने के लिए सरकार चला रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सखियों, अगर आप गांव में रहती हैं और अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहती हैं तो ये योजना आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। इस मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं नियमित बचत करती हैं, कम ब्याज पर ऋण प्राप्त कर सकती हैं और अपना छोटा व्यवसाय जैसे सिलाई, डेयरी, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, अगरबत्ती या पापड़ बनाना, मसाला पैकिंग, हस्तशिल्प और कई अन्य स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं। इतना ही नहीं सखियों, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, व्यवसाय शुरू करने की जानकारी, बैंक से जुड़ने में सहायता और अपने उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में भी मदद दी जाती है। यानी सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि उसे सफल बनाने का मार्ग भी दिखाया जाता है। सखियों, अगर आपके गांव में स्वयं सहायता समूह पहले से बना हुआ है तो उससे जरूर जुड़िए और अगर नहीं बना है तो अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, विकास खंड कार्यालय या ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय से संपर्क करके इसकी जानकारी लीजिए। सखियों, जब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है ना तो सिर्फ एक परिवार नहीं पूरा गांव आगे बढ़ता है। तो अवसर का लाभ उठाइए, अपने हुनर को पहचानिए और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ आत्मनिर्भर भारत की मजबूत कड़ी बनिए। और जैसा कि हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं सखियों, तो हमारा ऐसा ही क्रम है मेरी उड़ान, जिसमें हम अलग अलग सखियों से उनकी उड़ान की कहानी सुनते हैं। तो चलिए रुख करते हैं हमारे क्रम मेरी उड़ान में। सखियों, कहा जाता है कि शब्द दिल तक पहुंचते हैं लेकिन संगीत सीधे आत्मा को छूता है। खुशियों के रंग हो, यादों की महक हो या फिर भावनाओं की गहराई, हर एहसास का एक सुर होता है। तो कार्यक्रम मेरी उड़ान में बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक उभरती हुई गायिका का।

0: पर।
1: क्या बात है, ये खूबसूरत सी आवाज है हेमा मछिया जी की, जिनसे होगी आज हमारी मुलाकात हमारे क्रम मेरी उड़ान में। बहुत बहुत स्वागत है हेमा जी आपका।
0: थैंक यू सो मच।
1: हेमा जी, हमारा जो क्रम है मेरी उड़ान, उसमें हम बात करते हैं महिलाओं के उस सफर की जिसमें वो अपनी पहचान अपने स्तर पर बनाती है। तो सबसे पहले तो हम आपसे आपकी कहानी, आपके सफर की शुरुआत जानना चाहेंगे।
0: मेरा संगीत का जो सफर है वो बचपन से ही शुरू हो गया था। मेरे नानी गाते थे भजन, मैं उनके साथ में गाती थी। तब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, तब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हुआ करती थी और मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में ही हुआ करता था। और फिर इसके बाद में मैं जब 10th क्लास में गई तो मैं एक म्यूज़िक टीचर हमारे स्कूल में आए, और फिर उसके बाद में जब टीचर से मिले तो टीचर को कुछ दिखा होगा, शायद उनको प्रतिभा दिखी छुपी हुई। देन उन्होंने मुझे फोर्स किया कि चलो अब ये कंपटीशन के लिए तैयारी करो, ऐसे करो वैसे करो। उन्होंने तैयारी करा करा के और देन मुझे रियलाइज़ करवा दिया कि हाँ मेरे अंदर म्यूज़िक है। देन उसके बाद में मैंने 11th क्लास के बाद में म्यूज़िक सीखना स्टार्ट किया, और मुझे 12th तक आते आते ये तय हो गया था कि अब मैं इंजीनियरिंग तो नहीं करने वाली हूँ म्यूज़िक।

0: में ही मुझे पढ़ाई करना है, तो फिर मैंने उसके बाद में बैचलर ऑफ आर्ट्स देन मास्टर ऑफ म्यूज़िक, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक वो कंप्लीट किया. और उसी के साथ में मेरे फादर अचानक से ही एक्सपायर हुए. देन उसके बाद में मैंने म्यूज़िक में काम करना स्टार्ट किया एज स्टेज परफॉर्मर. मैंने स्टार्ट किया गाना और फिर वहीं से मेरा अर्निंग स्टार्ट हुआ. वहीं से फिर मेरा बैचलर डिग्री और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, फिर मैंने बीएड भी किया क्योंकि मैं गवर्नमेंट में जॉब भी करना चाहती थी. मुझे ऐसा लगता था मैं म्यूज़िक लेक्चरर बन जाऊंगी. और फिर समय के साथ चीज़ें चीज़ें चलते गई चलते गई. देन उसके बाद में ऐसा फील हुआ कि नहीं, ये जो असली प्यार है वो स्टेज से ही है. फिर स्टेज पर परफॉर्म करते हुए कभी फ्री लांसिंग किया, फिर धीरे धीरे आज मैं अपना खुद का ग्रुप चला रही हूँ. मेरे कम से कम 5 to 8 म्यूजिशंस मेरे साथ में रहते हैं.
1: आपने स्कूल से शुरू किया अपना सफर और आज आप अपना खुद का एक म्यूजिक ग्रुप चला रही हैं, बहुत अच्छी बात है ये। तो पहली बार जब आप मंच पर आई, यानी आपने स्टेज शेयर किया, तो उस समय क्या दिमाग में आया था, किस तरह की अनुभूति थी आपके मन में?
0: बहुत सारा डर. जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पर इतने लोगों से कांटेक्ट करते हो, स्पेशली आई कांटेक्ट जब आप करते हो, तो बहुत सारा डर होता है. हाँ, बट उसके साथ में एक एक्साइटमेंट भी होती है कि हाँ, आपको परफॉर्म करना है, आपको परफॉर्म करने का मौका मिला है. और मुझे लगता है एक परफॉर्मर की भूख ही होती है स्टेज और उस परफॉर्म करना.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो जैसे आपको पता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं गायकी छुपी थी, ऐसी हमारी बहुत सारी सखियां हैं जो अंदर ही अंदर गुनगुनाना पसंद करती है, लेकिन वो जानती है कि वो बहुत अच्छी सिंगर है, बनना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती है। तो उनसे आप क्या कहेंगी अगर उनके अंदर भी एक छोटी सी गायिका छुपी हुई है तो?
0: मैं कहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम इजीली बहुत अपने आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकते हैं. तो बहुत इजी है आज के समय में. और अगर आपका कोई फीमेल ग्रुप है, आप लोग सारे बहुत सारे लोग गाते हो, या तो आप एक टीचर को हायर कर सकते हो और अच्छा सीखने के लिए, या फिर आपकी किटीज़ में ही आप क्यों नहीं म्यूज़िक इवेंट्स करते हो.
1: छोटे छोटे म्यूजिक इवेंट्स का आप हिस्सा बनिए और दूसरों को सुनिए और अपनी भी सुनाइए उन्हें, है ना? आगे आपके प्लान्स क्या है, आगे आप क्या करने वाली हो?
0: अभी तो मैं मोस्टली वेडिंग्स में ज़्यादा इवेंट्स करती हूँ जो कि ट्रेडिशनल इवेंट्स हैं. मारवाड़ी सॉन्ग्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा गाती हूँ अभी. और इसी से रिलेटेड मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं आगे एग्जीक्यूट करना चाहूँगी. उन पर मैं बहुत सारा भी काम भी कर रही हूँ.
1: तो क्या सचमुच कोई महिला आकर इसमें अपना करियर बना सकती है?
0: बिल्कुल बना सकते हैं. बहुत पैसा है. जो एंटरटेनमेंट फील्ड जो है हमारा, बहुत ज़्यादा पैसा है. बस ये है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो और कितनी जगह परफॉर्म कर सकते हो, या कितना अपने आप को स्टेब्लिश कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो हमें अर्निंग में काम कर सकते हैं. अगर आप परफॉर्म नहीं करना चाहते हो, तो आप म्यूज़िक सिखा सकते हो. आप घर पर म्यूज़िक सिखा सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो, देन ऑनलाइन भी क्लासेस ले सकते हो. बहुत सारे यूएसए में, अलग अलग कंट्रीज़ में पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अपनी इंडियन संस्कृति के साथ में, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ना चाहते हैं. और उन्हें सबसे बेस्ट तरीका वही लगता है कि बच्चों को म्यूज़िक सिखाया जाए, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक के साथ में उन्हें जोड़ा जाए. तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे आपको अगर आप म्यूज़िक सिखाना भी चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, आप परफॉर्म करना चाहते हैं. आप रिकॉर्डिंग में कर सकते हैं, जैसे कि आप अभी बोल रहे हैं, रेडियो जॉकी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं.
1: यानी रास्ते बहुत सारे हैं, बस अगर आपने कहीं से संगीत सीखा हुआ है और भले वक्त हो गया है, लेकिन संगीत कहीं छूटता नहीं
0: छूटता
1: है
0: नहीं.
1: तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए, उसे लोगों तक लेकर आइए ताकि आप भी खुश रहिए और लोगों को भी खुशी दीजिए। तो हमारी सखियां जो इस क्षेत्र से जुड़ना चाहती है, उनके लिए आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है।
0: थैंक यू सो
1: लेकिन
0: मच.
1: जाने से पहले कोई एक छोटा सा गीत हमारी सखियों के लिए हो जाए।
0: बिल्कुल.

0: बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।
1: क्या बात है, बहुत मधुर आवाज़ हेमा जी की। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जिस तरह से हमारी सखियों को कहा है कि वो इस क्षेत्र में अपना एक मुकाम बना सकती है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। हमारी सखियों से हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो मच, थैंक यू, थैंक यू।
1: तो सखियो, ये था हमारा क्रम मेरी उड़ान। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

सखियों, बारिश के मौसम में सिर्फ कपड़ों और बालों की ही नहीं, हमारी त्वचा को भी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। नमी और उमस की वजह से चेहरा चिपचिपा और बेजान सा लगता है। तो आज के रूपलावण्य में जानते हैं कुछ आसान और असरदार फेस पैक जिन्हें आप घर पर ही बना सकती हैं और अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकती हैं। सखियों, सबसे पहले आपको लेना है 1 चम्मच चावल का आटा, 1 चम्मच दही और 1/2 चम्मच शहद। इन तीनों को मिलाकर 15 मिनट चेहरे पर लगाइए। ये त्वचा की हल्की एक्सफोलिएशन करता है और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाने में मदद करता है। और सखियों, आजकल ये फेस पैक काफी पसंद किया जा रहा है। अगर बारिश में चेहरा बार बार ऑयली हो जाता है तो सखियों, उसके लिए एलोवेरा जेल में थोड़ा सा खीरे का रस और 4 से 5 पुदीने की पत्तियों का पेस्ट मिलाकर 10 से 15 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाकर रखिए। इससे त्वचा को ठंडक तो मिलेगी ही सखियों, ताजगी भी महसूस होती है। और सखियों, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसके लिए 1 चम्मच ओट्स का पाउडर, 1 चम्मच दही और थोड़ा सा गुलाब जल, इसे मिलाकर अपने चेहरे पर 15 मिनट तक लगा के रखिए और हल्के हाथों से मसाज करते हुए धो लीजिए। इससे त्वचा साफ और मुलायम होती है सखियों। अब एक छोटी सी बात, कोई भी फेस पैक लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और पहली बार अगर इस्तेमाल कर रही है ना तो पैच टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। तो सखियों, इन फेस पैक के जरिए आप अपनी त्वचा में अपने आप निखार महसूस करेंगी। और हम आपको सुनाते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

सखियों, बारिश की बूंदे, ठंडी ठंडी हवा और रसोई से आती गर्मा गर्म खाने की खुशबू, बस मौसम का मजा दुगना हो जाता है। लेकिन हर बार पकौड़े ही क्यों? आज बनाते हैं कुछ नया, स्वादिष्ट और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आने वाला कुरकुरा पालक कॉर्न रोल। जी हाँ सखियों, इसके लिए सामग्री नोट कर लीजिए। 1 कप उबला हुआ स्वीट कॉर्न, 1 कप बारीक कटा पालक, 2 उबले हुए आलू, 1 छोटा चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, 2 ब्रेड स्लाइस का चूरा या फिर ब्रेड क्रम्स, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, रोल शीट या फिर ब्रेड के स्लाइस। साथ ही हमें चाहिए शैलो फ्राई करने के लिए तेल। सखियों, आप इसे बनाने की विधि भी नोट कर लीजिए। 1 बोल में उबला हुआ कॉर्न, पालक, आलू, मसाले और ब्रेड क्रम्स मिलाकर मिश्रण तैयार कर लीजिए। अब रोल शीट या ब्रेड में ये मिश्रण भरकर रोल बना लीजिए। हल्का सा कॉर्नफ्लोर का घोल लगाकर बंद कर दीजिए और तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर सुनहरा होने तक सेक लीजिए। गर्मा गर्म रोल्स को पुदीने की चटनी या फिर दही की डिप के साथ परोस दीजिए। सखियो, ये रेसिपी स्वाद के साथ साथ पौष्टिक भी है और बारिश की शाम के लिए तो एकदम परफेक्ट है। अगर बच्चे हरी सब्जी खाने से कतराते हैं ना, तो इस रोल में कद्दूकस किया हुआ पनीर और गाजर भी मिला सकती हैं आप। इससे स्वाद भी बढ़ेगा और इसका पोषण भी बढ़ जाएगा। तो सखियो, इस बारिश में पकौड़ों से हटकर कुछ नया बनाइए, क्योंकि मौसम नया है तो स्वाद भी तो नया होना चाहिए।

0: शिक्षक, जब भी मौसम बदलता है ना, उसका सीधा असर हमारी स्वास्थ्य पर पड़ता है। हम सभी अपने घर में छोटी मोटी बीमारियों के लिए कुछ दवाइयाँ जरूर रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी उनकी एक्सपायरी डेट देखी है? अक्सर दवा काम आने के बाद अलमारी या फिर फर्स्ट एड बॉक्स में रखी रह जाती है और महीनों तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। ऐसे में अनजाने में एक्सपायर्ड दवा का सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है। सखियों, ऐसी दवाएं असर कम कर सकती हैं और कुछ मामलों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए हर महीने सिर्फ 5 मिनट निकालिए और अपने घर के फर्स्ट एड बॉक्स की जांच जरूर कीजिए। जिन दवाइयों की एक्सपायरी डेट निकल चुकी हो उन्हें अलग कर दीजिए और दोबारा इस्तेमाल ना करें। सखियों, एक और बात, दवाइयों को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखिए, क्योंकि गर्मी और नमी भी उनकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। और बिना डॉक्टर की सलाह के पुरानी दवा किसी और को कभी न दे। याद रखिए सखियों, सही समय पर सही दवा ही इलाज बनती है, लेकिन एक्सपायर्ड दवा लापरवाही का कारण बन सकती है। इसलिए आज ही अपने घर की दवाइयों की एक छोटी सी जांच जरूर कीजिए। ये 5 मिनट की आदत आपके परिवार की सेहत की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। तो सखियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और महिला सभा कार्यक्रम सुनते रहिए। आज के कार्यक्रम में सखियों बस इतना ही। इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने और अब अनुमति दीजिए सुषमा व्यास को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रीति देवलो और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्रभाती मालवी लोकगीत से। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रीति देवले और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है उषा टंडन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। लीजिए प्रस्तुत है एक भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उषा टंडन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म गीत का कार्यक्रम, जिसमें आपको सुनवाएंगे पहला गीत अरिजीत सिंह और रूपाली मुगे की आवाज में फिल्म बधाई दो से।

अमित त्रिवेदी का संगीत, वरुण ग्रोवर के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और रूपाली मोगे की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बधाई दो से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा।

प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म लाल सिंह चड्ढा से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने सभी की सुरक्षा की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शर्मिला को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पदक ने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक के लिए 2 दशक लंबे इंतजार को समाप्त किया। उन्होंने पुरुषों के 79 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में रजत पदक जीतने पर वल्लूरी अजय बाबू को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारोत्तोलक ने स्नेच स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। श्री मोदी ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए सर्वेश अनिल कुशारे को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में कल गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में परीक्षा और युवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। और साथ में ये भी सुनिश्चित होगा कि जो युवा है उनके सपने साकार होने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए साथ में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी तैयार किया जाएगा।
0: मंत्री ने यह भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से स्वच्छता अपनाने और शुद्ध पेयजल, भोजन और पानी का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए दूषित भोजन और पानी से बचना तथा समय पर उपचार कराना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने और दूसरों को भी आवश्यक सावधानियां अपनाने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रकृति का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की मजबूत नींव है। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने आज सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 28 से 30 जुलाई के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। नागरिकों से मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से जिले के किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान देने के लिए 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। नीमच में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 28वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी

में वर्षा ऋतु के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिलेवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, PCR लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
1: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
3: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
4: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
5: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को अब देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
6: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
7: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
8: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष इसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रुपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
9: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा

अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जहां हम आपके भेजे गए पत्रों को शामिल करते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइशी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उदित नारायण के द्वारा गाए हुए गीत से, जो है फिल्म पापा कहते हैं से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है राजा बाजार बिटिया से, सुरेश केशरी, पूनम केशरी, प्रतीक केशरी। नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी ने हमें पत्र लिखा है। इसके अलावा एक पत्र हमें मिला है महसौल सीतामढ़ी बिहार से, नाज मंजिल से कुछ श्रोताओं ने हमें लिखा है। ये हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वसीम, बहू बाबू आरिज वसीम, नवासा अरहान बाबू, नवासा हमजा बाबू, नवासा मुजम्मिल बाबू, नवासी हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, कोकिलवारा और जिला मुजफ्फरपुर से फैसल शेख, नुजहत जहां नाज, शेख टुली समस्तीपुर से मोहम्मद शहनवाज परवेज और मुसर्रत जहां नाज। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर लीजिए ये प्रस्तुत है ये वाला गीत।

राजेश रोशन का संगीत, जावेद अख्तर के लिखे बोल, उदित नारायण की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म पापा कहते हैं से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसकी फरमाइश हमें मिली है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले श्रोता हैं अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और ध्वनि गवाड़कर परी। और इन्होंने फरमाइश की है गीत की, जो है यादों की बारात फिल्म से। इनके अलावा एक और पत्र हमें मिला है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तालाब डोमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, छटिया पोखरा डोमराव से सुनील कुमार वर्मा, मुस्तफाबाद दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कि अगला गीत।

आर डी बर्मन का संगीत मजरूह के लिखे बोल, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म यादों की बारात से। कार्यक्रम है आपकी फरमाइश का और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म बैराग से, आवाज़ है लता मंगेशकर की और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है धामड़ी मानोरा जलाबाशिम से। लिखने वाले श्रोता हैं पेंटर तुलसीराम डेरे, माया डेरे, संदेश पेंटर डेरे, प्रज्वल डेरे, अनुजा डेरे, गुलशन और अमोल डेरे। इसके अलावा गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हमें लिखा है हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक ने। आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

कल्याण जी आनंद जी का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म बैराग से। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाएंगे गीत किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म खुशबू से। और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है ग्राम महेशवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े और अजय खिरोडकर की तरफ से। इसके अलावा पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें लिखा है रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया और बेबी आरजू जाजौरिया ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

आरडी बर्मन का संगीत गुलजार के लिखे बोल, किशोर कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म खुशबू से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हमजूली से, जिसकी फरमाइश की है लाबरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और उनके पूरे परिवार ने। इसके अलावा महाराजा रेडियो श्रोता संघ से हमें लिखा है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। इनका पत्र हमें मिला है खंडवा ग्राम लोहारी से। और खुर्दी रोड मानपुर से हमें लिखा है विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद ने। तो आप सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है ये अगला गीत।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म हमजोली से। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अभी यहीं संपन्न होता है। हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप इसी तरह अपने पत्रों को हमें भेज सकें। कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी शामला हिल्स भोपाल, पिन कोड 462002। नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने और सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए शर्मिला को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पदक ने पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक के लिए 2 दशक लंबे इंतजार को समाप्त किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया है कि प्रदेश में कल गुरु पूर्णिमा को महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व के रूप में मनाया जाएगा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों से स्वच्छता अपनाने और शुद्ध पेयजल तथा पानी का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए दूषित भोजन और पानी से बचना तथा समय पर उपचार कराना आवश्यक है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया। और मौसम विभाग ने आज सतना, कटनी, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, सिवनी, रायसेन और बैतूल सहित 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है। शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। रात 7:21 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। संसद समीक्षा प्रसारित होगी रात 8 बजे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में सुन सकेंगे रात 8:15 पर। रात 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम कहकशा। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित की जाएगी रात 10 बजे। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है प्रीति देवले और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रभाती मालवी लोकगीत से।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज के सांध्यकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दे दें। शाम 5:02 पर

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं प्रीति देओले और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है एक विवाह गीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे प्रीति देवले और साथियों द्वारा गाए मालवी लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है उषा टंडन द्वारा गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है। प्रस्तुत है एक भजन उषा टंडन जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाज़ में फिल्म गुरु से।

यार रहमान का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, उदय मजुमदार और श्रेया घोषाल की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म गुरु से। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का और अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है छुप छुप के।

कश्मीर शशमिया का संगीत समीर के लिखे बोल, सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने छुप छुप के फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अलका याग्निक की आवाज़ में, साथ है उदित नारायण, फिल्म का नाम मोहरा।

मीजू शाह का संगीत आनंद बख्शी के लिखे बोल उदित नारायण की आवाज़ में, साथी अलका याग्निक थी। मोहरा फिल्म से आपने ये गीत सुना। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज़ में, साथ है कविता कृष्णमूर्ति। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

आडी बर्मन का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म फना सी आपके रेडियो सेट्स पर सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज़ में।

0: जतिन ललित का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म फना से, और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 साल से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्यवाही को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिन भर के स्थगित कर दी गई। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने वाली सुश्री शर्मिला धनकड़ और सुश्री शिल्पा शायला को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गौरतलब है कि ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के महिलाओं का शॉटपुट F57 इवेंट स्पर्धा में सुश्री धनकड़ ने स्वर्ण और सुश्री शायला ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की मुक्केबाज टीम 5 और पदक हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पांच भारतीय मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम शब्द सागर।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम शब्द सागर में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज एक जगह है जहां पर हमें कर्म ज्ञान और भक्ति का एक अद्भुत समागम देखने को मिलता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व को आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है और संयोग से आपका नाम भी प्रयाग ही है। प्रयाग शुक्ल जी आज अपनी गरिमामय उपस्थिति के साथ हमारे साथ मौजूद हैं और उनके व्यक्तित्व में भी कला का, आलोचना का, अनुवाद का और भी विधाओं का अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इन विधाओं के अंतर्गत जो उनका लेखन कार्य है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, इनके अंतर संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे। शुक्ल जी बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में आपका।
3: धन्यवाद आपका बहुत।

0: सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे कि भोपाल से आपका एक लंबा नाता रहा है, तो आकाशवाणी भोपाल में आप मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो आकाशवाणी को बधाई देना चाहूँगा। देश की एक ऐसी संस्था है जिसके पास इतना बहुमूल्य भंडार है आर्काइवल, और अब से 90 वर्ष पूरे किए हैं, इसकी खुशी तो हम सबको बहुत अधिक है।
0: शुक्ल जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि हम कई रचनाकारों को देखते हैं कि वो एक ही विधा में अपने जीवन काल में लगे रहते हैं, चुक जाते हैं या उसमें कार्य करते करते थक जाते हैं। आपने कई विधाओं की सम्यक साधना की है, तो ये जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए कि ये संभव कैसे हो पाता है?
1: देखिए, ये संभव तो कुछ इच्छा से होता है मेरे ख्याल में, और कुछ परिस्थितियों से भी होता है, कुछ प्रसंगों से भी होता है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के कारण भी होता है
0: जी,
1: कि कोई आपका साथी है उन दिनों का, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इसके लिए प्रेरित करता है कि आप सभी विधाओं में दिलचस्पी लो। तो मेरे साथ तो एक घटना ये घटी थी कि मैं 23 बरस का था जब कल्पना जैसी पत्रिका में पहुंचा था, और कल्पना आप जानते हो हिंदी की ऐसी पत्रिका मानी जाती है कि सरस्वती, कल्पना, ये दो पत्रिकाएँ हैं जिनका स्थान हिंदी के साहित्य में, पत्रकारिता में, साहित्यिक पत्रकारिता में
0: जी,
1: बराबर की याद किया जाएगा। तो संयोगवश मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ 18 बरस का था, तो मेरी दो चीज़ें छप चुकी थी, एक कहानी और एक कविता। तो पहले तो जब मैं पहुँचा कलकत्ता से, कलकत्ता में ही बड़ा हुआ आप जानते हो,
0: जन्म भी आपका वहीं,
1: हाँ जन्म भी वहीं का है, तो वहाँ से पहली बार मैं बाहर निकला था, कुछ परिस्थितियाँ भी ऐसी थी पारिवारिक कि लगा कि नहीं मुझे कुछ कहीं कुछ करना चाहिए, और लिखना पढ़ना तो शुरू हो गया था। तो बद्री विशाल जी, उनको कभी भूलता नहीं, बद्री विशाल पित्ती, मतलब एक धनाढ्य परिवार का एक युवा
0: जी,
1: जिसने कल्पना शुरू की थी, और जो बहुत सारे लोगों को संगीत की दुनिया में, पंडित जसराज, नृत्य की दुनिया में कई लोगों को, और साहित्य की दुनिया में, तो सबके साथ उनका एक संबंध बन गया था युवा दिनों से ही, कल्पना के कारण भी, उनकी अपनी रुचियों के कारण भी। तो कल्पना में पहुंचा तो मैंने पाया कि वहाँ हर अंक में हम देखा भी करते थे कल्पना के अंक
0: जी,
1: बल्कि हम लोग उन दिनों, तो याद है मैं और मेरे मित्र अशोक सिकसरिया, हम लोग कई 1-2 किलोमीटर चल करके नेशनल लाइब्रेरी जाते थे कि शायद कल्पना का अंक आ गया होगा, उसका आकर्षण ऐसा था उन दिनों। तो उसमें प्रतिष्ठित चित्रकारों की पेंटिंग्स छपती थी, रेखांकन आते थे विनोद बिहारी मुखर्जी से लेकर के राम कुमार और भी कई लोग। तो देखा उसको निकट से, कोई फिर उसमें काम करने लगा तो कई चीज़ों से गुजरना ही पड़ता था कि आप सेलेक्ट कर रहे हो कि क्या जाएगा, और ये आप बद्री विशाल जी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके साथ कुछ सलाह कर रहे हैं, या आपके सामने वो खोल कर बैठे हैं, तो एक गहरा आकर्षण पैदा हुआ था
0: जी।
1: और फिर ये था कि कल्पना में, चूँकि उस जमाने में आप सोचिए फिल्म पर भी सामग्री जाती थी, अच्छी सामग्री, और उसके पहले प्रतीक जो हम लोग देख चुके थे अज्ञे का
0: जी,
1: उसमें भी ये था कि नृत्य पर, कला पर, इन सब चीज़ों में पर सामग्री रहती थी। तो ये संयोग बड़े सुंदर मेरे जीवन में बनते चले गए कि हम लोगों ने बिल्कुल युवा दिनों में प्रतीक देखा, कल्पना देखी, दो पत्रिकाएं खास तौर पर, और उनमें चीज़ें पढ़ते थे, संगीत पर भी कुछ आ रहा है, तो बहुत मन में ये धारणा बहुत गहरे बैठ गई थी कि सभी कलाओं में दिलचस्पी होनी चाहिए। और सच पूछिए तो उस दिलचस्पी के कारण ही ये हुआ कि फिर कल्पना जैसी पत्रिका में रहते हुए भी मैंने हैदराबाद छोड़ दिया
0: जी,
1: इसलिए कि मेरे एक मित्र महेंद्र भल्ला, आप जानते हो, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, कवि भी, वो चिट्ठियाँ लिखते थे, हमारी काफ़ी मैत्री थी कि हमने आज इब्राहिम अलकाज़ी का नाटक देखा, हम राम कुमार जी को मिले, हमने यामिनी कृष्णमूर्ति का नृत्य देखा, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ बैठा क्या कर रहा हूँ। तो सचमुच बिना कुछ सोचे समझे
0: जी
1: मैं दिल्ली पर चला गया, तो कहानी फिर यहाँ से दूसरी से और शुरू हो जाती। अब सबसे परिचय था वहाँ, तो श्रीकांत वर्मा, राम कुमार जी, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोपती जी विशेष रूप से, इन लोगों को के साथ पहुँचते एक संबंध बना, और मालूम हुआ कि दिन मान निकलने वाला है।

0: तो मैं सोच कर ही आया था कि फ्रीलांसिंग करूँगा और लिखूँगा पढ़ूँगा इन्हीं सब चीज़ों पर, बस शुरुआत हो गई ये कहानी है।
1: तो क्या ये कुछ इस तरीके से हुआ कि पहले एक विधा में आपने दखल दिया और उसके बाद आपको दूसरी विधा ने आकर्षित किया, तो दूसरी विधा में भी आपने दखल देना शुरू किया और दोनों में काम साथ साथ चलता रहा और इसी तरह आगे बढ़ता गया?
0: नहीं, फिर ये हुआ जब मैंने आपको बताया ना कि दिल्ली, उस समय की दिल्ली,
1: जी जी
0: कि वो फिर खाली लिखने तक सीमित नहीं थी चीज़ें। वैसे से फिल्म पर लिखना तो बाद में शुरू किया, किताब भी एक जीवन को गढ़ती फिल्में, और बहुत गहरा आकर्षण है फिल्मों के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए, विश्व सिनेमा की। तो ये हुआ था कि लिखूँ चाहे ना लिखूँ, पर देखते ही हम सब थे। जैसे मैंने यामिनी जी के उस समय की कोई ऐसा डांस रिसाइटल नहीं होगा शायद जो मैंने ना देखा हो। फिर बाद में एक आध बार कभी लिखने का मौका आया तो वो भी किया। अच्छा हाँ, इसे ये चीज़ भी याद आई देखिए कि खाली देखना या लिखना या दिलचस्पी लेना भी आपके कितने काम आता है। जब मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया छोड़ा 99 के लगभग, तो NSD में पहुँचा, निशुल्क ब्रामा में, राम गोपाल बजाज में ले गए वहाँ। अब ये मैं कैसे कर पाया, क्योंकि रंगमंच पर इतना तो नहीं लिखा था, दो चार चीज़ें ही लिखी थी, पर उनको ही पता था कि इनकी दिलचस्पी कितनी गहरी है, ये इस काम को कर सकेंगे। तो मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की पत्रिका रंग प्रसंग निकाली, 12 साल रहा उनके साथ, पूरा देश देखा, उनकी दुनिया से संबंध बना, कला की दुनिया से मेरा संबंध शुरू से था, क्योंकि कला पर सबसे पहले लिखना शुरू किया था। जब मैं फ्रीलांसर था तब भी सच्चिदानंद हीरानंद वास्यान अग्गे के सब संपादक थे, तो उन्होंने ही मुझे कला का कॉलम सौंपा था। दो ही चीज़ें मेरी उन्होंने लिखवाई थी, फिर उनके आधार पर कि शायद ये काम कर सकेंगे, उसने मेरा जीवन ही बदल दिया। 10 साल मैं निर्माण में रहा, कला का कॉलम लिखा, 2-3 साल फ्रीलांसर के तौर पर, फिर अग्गे जी मुझे ले आए थे निर्माण में। उन्हीं दिनों 1967-66 में फ्रीलांसिंग करता था, 69 में बाकायदे उन्होंने ज्वाइन कराया, फिर वहाँ 10 साल कला का कॉलम लिखता रहा। इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, अनंत यादें हैं
1: जी। जैसा आपने अभी कहा कि मैं लिखूं चाहे ना लिखूं, लेकिन पढ़ता सब कुछ था, देखता सब कुछ था, क्या जो आज के साहित्यकार हैं, नवोदित और युवा साहित्यकार हैं, क्या उनको भी आप ये शिक्षा स्वरूप कहना चाहेंगे कि आप हर विधा पढ़िए, भले ही आपका लिखने का जो मन है वो एक विधा में?
0: ये तो मैं सबसे मिलते ही कहता हूँ, कभी कभी लिखता भी हूँ एक प्रस्ताव की तरह कि करना कितनी सुंदर बात है। अभी तो हाल की घटना देखिए भोपाल की आपको बताऊं, सुदीप सोनी हमारे युवा मित्र, इन्होंने अभी एक सिनेकारी करके ये एक कार्यक्रम करते हैं हर साल, तो उसमें मैं भी था इस बरस, तो वो दृश्य देखकर ही मैं इतना प्रसन्न हो गया। उस दिन बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ा कि उसमें संगीतकार हैं और थिएटर के लोग हैं, फिल्मकार तो थे ही, युवा फिल्मकार भी कई थे, तो काफ़ी प्रसन्न हुआ मैं, क्योंकि वो दृश्य ही प्रसन्न करने वाला था, क्योंकि कलाओं की एक आपसदारी, उनका एक दूसरे से उनका साझा तो बहुत गहरा है, और वहीं से सच पूछिए तो आपको चीज़ें मिलती हैं जो सोचने की, कुछ चीज़ों को नई तरह से देखने की, और वो जीवन के अनुभव को भी बहुत गहरा तभी वही करती हैं
1: जी।
0: उसके बिना मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ कर सकती है, क्योंकि देखिए ये बात तो, ये आकर्षण क्यों हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं से एक तरह की सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा हुई, तुम इसी दुनिया में रहो,
1: बिल्कुल
0: ये बहुत कुछ तुमको देगी, उसे दिया है मुझे, मैं तो अपने को ये भी यही मानता हूँ कि मेरा जीवन जैसा बना वो बिना कलाओं के नहीं हो सकता था, मतलब वो आनंद उठा ही नहीं सकता था मैं किसी और तरह से, ये तो अपने अनुभव से जानता हूँ
1: जी।
0: कि उस प्रसंग से फिर ये धीरे धीरे अपने आप ही शायद होता है कि आप उन बड़े रचनाकारों से मिलते हो या उनके बारे में पढ़ते हो या उनको निकट से देखते हो, तो ये चीज़ें समृद्ध करती हैं।
1: बिल्कुल, आगे जानना चाहेंगे शुक्ल जी आपसे कि आप एक कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो एक कवि होता है वो एक अच्छा आलोचक भी हो, या इसका उल्टा कि एक आलोचक हो वो अच्छा कवि भी हो, लेकिन जहाँ इन दोनों का या दो विधाओं का समन्वय होता है वहाँ फिर किस प्रकार के तत्व

0: तो काम करते हैं
1: वहाँ। एक मेरे ख्याल में सहज एक उत्सुकता भी काम करती है कि आप चीज़ों को एक नई उत्सुक निगाह से देखते हो। जैसे मेरी किताब है कविता की भाषा और भाषा का समाज
0: जी,
1: तो उसमें हमारे कई हमसे अग्रज कवियों के हमसे पहले के संस्मरण भी हैं, लेख भी हैं, तो उसको आलोचना कहिए आप, उसको एक चाहिए कहिए कि एक जानने की इच्छा थी परखने की लिख करके
0: जी,
1: को होती है आपकी इच्छा। जैसे केदारनाथ अग्रवाल जी, अब हम लोग बचपन में, बचपन तो नहीं, किशोरावस्था में, युवावस्था में उनकी एक रचना पर हमको याद भी हो गई थी काफ़ी हद तक। अब कुछ पंक्तियाँ याद हैं, माँ जी ने बजाओ बंसी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता कि मेरा तन डोलता, ऐसे ही है जल जल का जहाज जैसे पल पल डोलता, तो उन पर लिखा एक लेख
0: जी,
1: अब उसमें एक आनंद आने लगता है। जैसे फिर उस किताब में या उस किताब के लेखों में मैंने ये क्यों जांचना चाहा कि ये किस तरह का संबंध कविता का अपने समाज से होता है।
0: आपके अनुवादक पक्ष से अगर हम कुछ सवाल करना चाहें आपसे, क्या अनुवादक होने के लिए पहली शर्त ये होती है कि कई भाषाओं की जानकारी आपको हो?
1: कई भाषाओं की चाहे न भी हो, एक ही भाषा की हो तो भी काफ़ी है
0: जी।
1: अब मुझे तो जिन दो दो भाषाओं से अनुवाद किए हैं, बांग्ला से और अंग्रेजी से,
0: जी,
1: तो बांग्ला का प्रसंग तो ये है कि कलकत्ता में बड़ा हुआ, जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ बांग्ला भाषी छात्र ही अधिक थे, तो एक सहज ही उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा था मुझे
0: जी।
1: पढ़ने के लिए तो करना पड़ा थोड़ा बहुत, उसमें प्रयत्न भी किया कि मैं ठीक से पढ़ सकूँ, संभव हो तो लिख भी सकूँ, बांग्ला लिपि में कुछ लिख सकूँ, लेकिन फिर किताबें पढ़ना, उस भाषा में उतरता चला गया, तो जिसका एक बहुत बड़ा लाभ मुझे हुआ। और बंकिम बाबू के निबंधों का अनुवाद किया, गीतांजलि का अनुवाद किया
0: जी, वो तो बहुत बड़ा काम आपका हुआ।
1: जीवनानंदास की कविताओं का अनुवाद किया, शंकु घोष की कविताओं का अनुवाद किया, और चूंकि भोपाल में बैठा हूँ इसलिए सहज ही देखिए ये बात याद आ रही है कि वो भारत भवन आए थे शंकु घोष जी भारत भवन के निमंत्रण पर, और 15 कविताओं का अनुवाद तो यहीं बैठ कर किया था उनके साथ, और उनके उनसे मिलना है, यहाँ प्रसंग आ गया है उनका, तो कहना चाहता हूँ कि उनसे मिलना मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी प्राप्ति थी, क्योंकि कभी भी ऐसे थे, व्यक्ति भी ऐसे थे, उनका अध्ययन भी ऐसा था, जिसमें होता है ना कि किसी की प्रेजेंस ही आपको बताती है, कभी कभी किसी की उपस्थिति ही इतना कुछ आपको देती है, उसका सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, जीवन जीने का ढंग, कि आप उसी से समृद्ध होते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये बात समझ में आई मेरे कि अगर अनुवाद बहुत किए हैं मैंने, करने में बहुत आनंद भी आया, उसका एक बड़ा कारण समझ में आया कि अनुवाद करके ही आप अपनी भाषा को जान सकते हो
0: जी,
1: क्योंकि जब आप लिखते हो, कोई भी लेखक तुम्हारी एक ड्राफ्ट बनाएगा, दो ड्राफ्ट बनाएगा, तो ये होता है कि पहले ड्राफ्ट में वो ज़्यादा सोचता नहीं, जो शब्द उसके पास सहज ही होते हैं वो उसी के प्रवाह में वो लिखता है, पर अनुवाद में तो फिर आप ये सोचते हो कि इसमें हम क्या करें, कि राम कमरे में आया, कि राम ने कमरे में प्रवेश किया, संदर्भ क्या है
0: जी,
1: और व्यक्ति वो कौन है, ये तो एक ही उदाहरण हुआ, फिर ऐसे बीसियों उदाहरण है जहाँ आप डिक्शनरी भी देखते हो, उस संदर्भ पर कई बार सोचते हो, उस संदर्भ के हिसाब से अपनी भाषा के शब्द, पर्यायवाची शब्द भी आप ढूंढते हो
0: जी,
1: कि मैं इस समय क्या करूँ, लिखूँ तो क्या अच्छा रहेगा,
0: और आप समृद्ध होते जाते हो,
1: उसी से होते हैं, और उसी से बहुत आनंद भी आता है, क्योंकि अपनी भाषा को जानने का आनंद भी एक बड़ा आनंद है ना।
0: आपकी कविता भी है ना नए शब्द कि जैसे जैसे हम शब्द जानने का प्रयास करते हैं जी। प्रयाग जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि अनुवाद को भाषाओं का ही नहीं संस्कृतियों का भी सेतु कहा जाता है, थोड़ा सा इसे हमारे श्रोताओं के लिए व्याख्यायित करें।
1: नहीं, वो तो निश्चय ही है, देखिए हम लोगों ने भी जो जाना अपने जीवन में भारतीय साहित्य के बारे में, विश्व साहित्य के बारे में, वो कैसे जाना, अगर अनुवाद न होते तो हम विभिन्न देशों की संस्कृतियों के बारे में, उनके खान पान के बारे में सही चीज़ हम जान लेते हैं किताब पढ़कर, कोई फिल्म देखकर, उसमें का अनुवाद तो है ही, और अनुवाद में देखिए अनुवाद के साथ ये बात भी याद आई कि खाली किताबों का

0: अनुवाद ही नहीं, मैं कोई फिल्म देखता हूँ तो उसमें सबटाइटल्स रहते हैं
1: जी,
0: तो आप कई तरह से भाषाओं के साथ आपका एक रिश्ता बनता है, है ना?
1: बिल्कुल।
0: और अनुवाद में तो बहुत ज़्यादा बनता है।
1: बिल्कुल,
0: ये तो होता ही है।
1: आगे आपसे जानने का प्रयास करेंगे, थोड़े से सवाल करना चाहेंगे नई पीढ़ी को लेकर। कई बार हमें ये देखने को आ रहा है कि नई पीढ़ी थोड़ा है, उसका एक वर्ग है जो वो पठनीयता से दूर हो रहा है, या जो थोड़ा बहुत वो लिख भी रहे हैं वो उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का होना चाहिए। इस संकट को आप कैसे
0: देखिए, मैं इस पर एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं
1: जी,
0: कि अरे नई पीढ़ी इतना पढ़ नहीं रही, नई पीढ़ी इतनी अवेयर नहीं है। ये नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि मैं इसके सचमुच ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि फिर आपको ऐसे व्यक्तियों से भेंट होती है
1: जी।
0: इसमें मेरा मानना है, अब तो ऐसे हम संबोधित करते हैं, एक से एक लड़के लड़कियाँ मिलते हैं जो पहले इस तरह के नहीं थे, खूब पढ़ने वाले, अच्छा सोचने वाले, अच्छी बातें करने वाले, कलाओं से गहरा संबंध रखने वाले। अब वो भी आपकी रुचियों के कारण होता है कि आप उनसे कैसा संबंध बनाते हो। मैं तो इस समय खाली युवा लोगों से ही अधिक मिलता हूँ
1: जी, बिल्कुल।
0: अब उसको ढूंढ कर मिलता हूँ, खोज कर मिलता हूँ, और पता चलते ही उनका काम देखना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, और मैं समझता हूँ ये मानना बहुत सुंदर बात है, कि मेरा ज़माना था वो तो था, कल्पना का ज़माना था, दिनमान का ज़माना था, 60s का ज़माना था, 70s का, जब पूरे देश में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये भी तो मेरा ज़माना है।
1: बिल्कुल।
0: कि मैं युवा लोगों से मिल रहा हूँ और उन्हीं से आजकल अधिक मिल रहा हूँ, तो मेरा ज़माना तो है। अभी मैंने सुदीप सोनी और उस दिन मिले बहुत सारे युवा लोगों का जिक्र किया, अपने निजी अनुभव से जानता हूँ, इस समय एक से एक ब्राइट ब्राइट ब्राइट लड़के लड़कियाँ हैं
1: जी।
0: अब मुझे बड़ी खुशी होती है उस बात की, और उनको जानता हूँ, पर संबंध है मेरे लगभग हर विधा के लोगों से, युवा पीढ़ी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। और अब वो खाली एक शहर में नहीं है कि भोपाल है, दिल्ली,
1: हर एक शहर में जी,
0: हर शहर में है। और मैंने अभी तो ऐसा मौका नहीं है, मैं नाम गिनाता भी हूँ, ताकि जो लोग नहीं मन के बारे में जानते अगर तो जाने, अपनी बातचीत उनको लाता हूँ।
1: एक समस्या लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलती है कि जो पीढ़ी है नई पीढ़ी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वाद का शिकार हो जाती है, तो इसकी चिंता को आप कैसे देखते हैं और उसका समाधान आप क्या सुझाना चाहेंगे?
0: देखिए, समाधान तो व्यक्ति खुद सुझे उसका करता है
1: जी,
0: आपके कहने से नहीं होता। ऐसे मेरा मानना है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। अब बहुत लोगों को आप पाओगे कि वो इस गहराई से जुड़ते हैं किसी कला माध्यम से, कि पूरी आजीवन नहीं छूटती उनसे। बहुत लोगों का संबंध टूट जाता है या थोड़ा हो जाता है, फिर लोग याद भी करते हैं, अरे हम अपने ज़माने में कॉलेज स्कूल में नाटक खेला करते थे, अब वो दिन नहीं रहे, ये भी होता है। और कुछ लोग हैं सब लंबा उनके साथ का संबंध रहता है। इन चीज़ों को लेकर सच पूछे तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होता, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि समाज में ऐसे लोग मौजूद रहें वही काफ़ी होता है, संख्या से भी नहीं होता। मान लीजिए बहुत सारे लोग, जो लोग गहराई से जुड़ते हैं वो निश्चय ही अपने साथ 10 लोगों को प्रभावित करते हैं
1: जी,
0: संभव ही नहीं कि ना करें।
1: बिल्कुल।
0: अब हम भी लोग जो मिला था अपनी पीढ़ी से, किन लोगों से मिला था, जो भाषा का मान लीजिए कोई अलग व्यवहार जो करते थे, जिनके नाटकों में हमने कुछ नया होते देखा, अब हमारे बाबा कारण जी थे, हमारी पीढ़ी के जो लोग उनकी याद करता हूँ, तो ऐसे कई नाम मैं ले सकता हूँ हर साहित्य की दुनिया की भी, अपनी से पहले भी की पीढ़ी की, और उन्हीं से मिला उसकी बात आज भी करता हूँ। असल उन चीज़ों में जाते ही हम उलझ से जाते हैं एवरेज निकालने में, और मैं मानने लगा वो नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार इससे घटना याद आ गई, सुना देता हूँ, बड़ी सुंदर है वो
1: जी।
0: तो हमारे मित्र देवेंद्रराज अंकुर, जो आप जानते हो कि कहानी का रंगमंच वाले,
1: बिल्कुल,
0: और एक बड़े रंगकर्मी, तो एक दिन किसी पत्रकार ने उनसे कहीं पर पूछा कि आपको नहीं लगता कि नाटक के दर्शक कम हो रहे हैं, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि ये सवाल आप कहाँ के लिए कर रहे हो, मतलब मराठी के लिए कर रहे हो, बम्बई के लिए कर रहे हो, कि कलकत्ता के लिए कर रहे हो, तो कितनी सुंदर बात है उन्होंने कही।
1: बिल्कुल,
0: कि आप एवरेज निकाल कर फिर आप फंस जाते हो, आपको मुझसे लगा अरे आप कहाँ देखने वाले हैं, आपके क्षेत्र में नहीं, इसका मतलब तो नहीं कि नहीं है। तो दुनिया हम लोगों की सचमुच इस कारण ही बड़ी हुई कि हमने उसको माना ही नहीं, चारों तरफ निगाहें रहीं, और फिर मौके भी ऐसे

0: मिले। अब रंग प्रसंग निकाला तो मैंने देश भर की यात्रा की थी, और बजाज भाई से कहा था कि मुझे भेजिए अलग अलग शहरों में, तभी तो मैं जानूंगा तो वहाँ की कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं। अभी तो उनको मैं नाम से जानता हूँ, तभी तो मेरी भेंट हुई, तभी तो मैं गया इम्फाल, गया रतन थियाम जी से, जो अंत में फिर दोस्ती में बदल गई, और हमारे वामन केंद्र जी महाराष्ट्र के, कावलम लालन पढ़कर केरल के, ये कैसे हुआ? ये इसलिए होता है कि आप ये नहीं सब मानते कि अरे लोग कम है, नई पीढ़ी ऐसी है, पुरानी पीढ़ी ऐसी है, आप देखो
1: कुल मिलाकर इसमें ना उलझे।
0: हाँ, मैं इस पर बिल्कुल मत उलझिए, आप देखिए, आप खुद पूछिए। पत्रकार तो आजकल पत्रकारों से खास कर कहता हूँ कि भाई ऐसा क्यों करते रहते हो, और हम लोगों ने हमारे ज़माने में चूंकि हमने ऐसा नहीं किया तो हमको बहुत लाभ मिला। हम सोचते थे, हम जोड़ते थे इससे उससे, अपने आप ही जुड़ते थे लोग। अच्छा अच्छा असम के कवि कौन है? मैं मलिक गुवाहाटी जाता था, 7 बार गया हूँ, तो मैं क्या करता था? अच्छा वहाँ नीलम कुमार है, वहाँ तुलसी है, वहाँ ये है, फिर उनसे मिलता भी था। दुनिया मेरी बड़ी हुई ना, काफ़ी बड़ी हुई। मैं पूरे भारत के अलग अलग प्रदेशों के लेखकों के नाम गिना सकता हूँ, विभिन्न पीढ़ियों के। वो कैसे हुआ? वो फिर आपकी इच्छा से होता है। अब इच्छा ही ना हो, आप मानकर बैठ जाओ कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा।
1: प्रयाग जी, जानना चाहेंगे आपसे, हमने देखा कि आपको जो सानिध्य मिला है, बड़े बड़े शिखर पुरुषों का मिला है, चाहे अज्ञेय जी हों, नागर जी हों, और निराला जी जैसे लोग हों, तो इनके
0: निराला से भी एक बार तो भेंट है।
1: जी जी जी, हाँ। आपने जिक्र किया था एक बार, तो इनके सानिध्य से कोई एक ऐसी अनूठी बात जो आपको जानने को मिली हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें।
0: नहीं, देखिए बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं, और आप जानते हो स्वामीनाथन जी के साथ तो मेरा संबंध कितना गहरा था।
1: बिल्कुल।
0: उनकी जीवनी लिखी है स्वामीनाथन, एक जीवनी, और अभी एक बड़ी किताब बनाई है धूमिल गैलरी के सहयोग से, द एरा ऑफ जगदीश स्वामीनाथन
1: जी,
0: वो अंग्रेजी में है और बड़ी किताब है, मतलब वो तो सचमुच वजन के हिसाब से भी बड़ी है। उस किताब का वजन ही है 3 किलो 900 ग्राम।
1: स्वामी बहुत सामग्री है उसमें,
0: सामग्री तो है ही उसमें। स्वामी के साथ जो मेरा समय बीता, क्या क्या नहीं मिला, अभी एक का साझा कर लेता हूँ
1: जी। बिल्कुल।
0: तो स्वामी से मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था, हम उनको स्वामी कहते थे, तो मैंने उनसे एक सवाल ये किया था कि कला और प्रकृति का संबंध आप क्या मानते हो, बहुत गहरा सवाल है। उसका जो उन्होंने उत्तर दिया, उसने मुझे कला को परखने और उसके महत्व को समझने में बहुत मदद पहुँचाई।
1: अच्छा।
0: उन्होंने कहा कि एक रूपक गढ़ा उन्होंने, कि प्रकृति कला के आईने के सामने वाली ये खड़ी है, मतलब वो स्त्री है और उसमें उसके सामने कौन है, उसके सामने कलाकृतियां हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उसको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा। कितनी गहरी बात उन्होंने कही, कितनी सरल तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बन रहा है चित्र में, मूर्ति शिल्प में, वो प्रकृति से प्रेरित होते हुए भी ठीक वैसा नहीं है।
1: वैसा नहीं है, बिल्कुल।
0: तो उसकी मौलिकता, उसका महत्व, कि अगर ये सृष्टि किसी की रचना है तो फिर जो कलाकार की रचना है उससे भिन्न है।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरा सवाल उनसे किया था इतना ही गहरा कि मनुष्य और कला का संबंध आप क्या मानते हो, उसका भी इतना सुंदर जवाब उन्होंने दिया था। संबोधन शब्द पर जो आप टिका है, उन्होंने कहा मैं पेड़ पहाड़ चिड़िया बनाता हूँ, पर पेड़ पहाड़ चिड़िया मेरा काम देखने नहीं आएंगे, आएगा मनुष्य ही।
1: क्या बात।
0: अब मनुष्य, अब देखिए, फिर उन्होंने ये उसने जोड़ा कि मैं मनुष्य को संबोधित हूँ, वही देखने, ना केवल देखने नहीं आएगा, मैं संबोधित भी उसी को हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि और कौन देखेगा। तो मनुष्य और एक जानी हुई बात को की जो गहराई हो सकती है, उससे उन्होंने मेरा परिचय करा दिया
1: जी कह करके। ये जानना है आपसे कि हमारे युवाओं के लिए, अभी हमने बहुत बातें की अपने युवाओं पे, और कई युवा जो हैं ये जानना चाहते हैं, बहुत बड़ा आपका अनुभव रहा है जीवन का, कला का, संस्कृति का, तो जैसे युवा अपनी भाषा में पूछते हैं कि व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: लाइफ इज विथ ऑल दिस, विथ हार्ट्स, क्योंकि देखिए ये तो जिया भी है, जाना भी है और समझा भी है। दुनिया कितनी, दुनिया का कितना बड़ा हिस्सा, मतलब मनुष्य उसमें रहने वाले,

0: वो क्या करते हैं, जागते हैं सुबह, नाश्ता करते हैं और अपने काम पर जाते हैं, फिर खाते पीते हैं
1: जी,
0: कुछ पहनते हैं अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से। इसके आगे क्या है? अगर इस दुराव से बचना है, और दुराव का तो कोई आनंद होता नहीं है
1: बिल्कुल,
0: तो बहुत सीधी सरल बात है कि फिर वो कहाँ से मिलेगा आपको? वो मिलेगा केवल कलाओं से
1: जी।
0: और इसकी बड़ी अच्छी समझ तो लोक में भी रही है, नहीं तो लोक कलाएं कैसे बनी? एक फिल्म को छोड़कर हर विधा की एक परंपरा है लोक में, और आधुनिक काल में जो बनी वो तो बनी ही, वो तो मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है
1: जी।
0: वो तो भीम बैठका के गुफा चित्रों से शुरू हो जाती है
1: जी।
0: तो ये बहुत आसानी समझ में आने वाली बात है। वो बात समझ में आ गई, गहराई से मन में बैठ गई, वैसा जीवन जिया, वैसा जी रहा हूँ, इससे बड़ा आनंद मेरे लिए क्या हो सकता है।
1: कार्यक्रम के अंत में कोई एक रचना जो आपकी प्रतिनिधि रचना हो, जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें।
0: प्रतिनिधि तो नहीं, पर जो छोटी सी है क्योंकि
1: जी,
0: और जो याद भी रहती है वो आपको सुना देता हूँ
1: जी।
0: तुम घटाना मत अपना प्रेम, तब भी नहीं जब लोग करने लगे उसका हिसाब, ठगे हुए पाओ अपने को अकेला एक दिन, तब भी नहीं मत घटाना अपना प्रेम, नहीं तो बंद कर देगी बोलना तुमसे चिड़िया, या मुंह फेर लेगा आसमान, नहीं तुम घटाना मत अपना प्रेम।
1: क्या बात,
0: धन्यवाद,
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कविता से आपने इस बातचीत का समापन किया, और आज के परिदृश्य में ये कविता बहुत ज़्यादा प्रासंगिक मालूम होती है। प्रयाग शुक्ल जी, आप आकाशवाणी स्टूडियोज़ आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी और इतनी अच्छी बातचीत हमारे श्रोताओं के साथ की, एक तरीके से मार्गदर्शन हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद, क्योंकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जो बातचीत आगे बढ़ाई जा रही है, वो कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है। तो आपका बहुत धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शब्द सागर। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत लीजिए प्रस्तुत है रेडियो धारावाहिक कामनी का एकांतारे की 13वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप।

أذن. आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 13वां भाग। अब तक आपने सुना कि भेषज्ञ त्रिलोचन उज्जैनी जाते हैं और अपने मित्र वैद्यराज मृगांक दत्त से मिलते हैं। त्रिलोचन का उद्देश्य वैसिका से मिलना है और इसी के लिए वे मृगांक दत्त की सहायता लेते हैं, परंतु उनका कार्य सिद्ध नहीं होता क्योंकि रानी पिंगला और वैसिका अज्ञातवास में कठोर तांत्रिक अनुष्ठान कर रही होती हैं।

0: सुझाव चंपा का ही था कि रानी को अनुष्ठान करना चाहिए। चंपा नरेश की उपपत्नी है। दहेज में रानी के साथ मायके से आई हुई दासी। परंपरागत सेवा समर्पण से संपन्न है वो। वो जानती है कि वो ब्याहता नहीं है। चंपा ने कभी रानी होने का सोचा भी नहीं, किंतु वो सदैव राजा को अपना स्वामी ही नहीं मन ही मन अपना पति भी मानती आई है। और अब तो उसके गर्भ में राजा का अंश, राजा का गर्भ भी पल रहा है।
1: राजा के चले जाने पर मेरा मन चिंतित है और उद्विग्न भी। मैं जानती हूं कि संतान की कामना में रानी पिंगला बहुत अशांत और व्यग्र रहती है। इसलिए गत 15 महीनों से प्रति माह पूर्णिमा को गढ़ कालिका की महाअर्चना हेतु जाती रही है। नितांत गोपनीय रूप से, गुप्त द्वार से अकेली, किसी को सूचना नहीं। वो नहीं चाहती कि राजा को अनुष्ठान का ज्ञान हो। वह संतान के रूप में फलवती होकर महाराज को आकस्मिक प्रसन्नता देना चाहती है।
0: महाअर्चना के दुर्ग से बाहर के यात्राओं में सुरक्षा के लिए महारानी के साथ केवल एक अत्यंत विश्वसनीय, बलिष्ठ, सुंदर और युवा सेना नायक उनके साथ होता था, जो महालय के भीतर कभी नहीं आया। कौन था ये भी किसी ने नहीं जाना। महादेवी अंतिम बार होलिका पूर्णिमा को गई थी और तभी से गुमसुम है। चंपा ने अनेक बार उनके उन्मन क्षोभ का कारण जानने का प्रयास किया, किंतु वो तो गहरी सांस भर कर रह जाती या आंसू टपकाने लगती। इसी बीच राजा भर्तृहरि किसी दिन अचानक और अज्ञात रूप से महालय और उज्जैनी छोड़कर चले गए। कहां किसी को ज्ञात नहीं।

40 दिन का अत्यंत कठोर तांत्रिक अनुष्ठान, जिसका सुझाव और परामर्श चंपा ने रानी पिंगला को दिया था। निर्जन बियाबान स्मशान भूमि में इसे साधा जाना था। इस अवधि में कठोर संयम और नियमों का निर्वाह। अनुष्ठान की अवधि में रानी को नंगे पांव रहना होगा, सिर में तेल नहीं लगेगा, केश खुले और सूखे रहेंगे। एक समय स्वपाकी भोजन, निरामिष और शुष्क, सभी कार्य स्वयं और रात में जलती चिताओं के बीच मंत्र पाठ, हवन और साधना। वैसिका सोच रही थी कि ऐसा कठोर अनुष्ठान

0: क्यों स्वीकार कर लिया रानी ने। उसका ये अनुमान दृढ़ होता जा रहा था कि नरेश ने महारानी के कारण ही घर छोड़ा है, किंतु कारण वो नहीं जानती थी। वो जानती थी कि पुत्र कामना के लिए महादेवी प्रति पूर्णिमा की रात गढ़कालिका की ओर जाती थी, किंतु उनके साथ कौन होता था ये उसे ज्ञात नहीं था। वो महामात्य के साथ अपने संशय को साझा करना चाहती थी, पर न उसे इसका अवसर मिला और न उसने इसके लिए अवसर को निकाला ही।
1: अब तू लौट जा चंपा।
2: जी,
1: यहाँ वैसिका रहेगी हमारे साथ। 40 दिन का कठोर जीवन तेरे लिए ठीक नहीं है। तेरी कोख में जो संतान है वो केवल राजा की ही नहीं, हमारी भी है। उसे संभाल कर रखना तुझ पर बहुत बड़ा दायित्व है। यूँ समझ ले कि हमारा ही अंश तेरे गर्भ में पल रहा है। संभव है कि यही हमारे माथे का दुर्भाग्य पहुँचे।
2: किंतु रानी जी, आप कैसे साथ पाएंगी 40 दिनों का ये कठोर अनुष्ठान? कठोर भूमि पर शयन तो दूर, आप कभी नंगी भूमि पर भी नहीं बैठी। अल्पाहार, निराहार, उपवास, नितांत शुष्क एकांत साधन।
1: चंपा मेरी बहन, स्त्री सब साथ लेती है, सह लेती है। सहते जाने का अभिशाप ऐसे कठिन समय में हमारा अभ्यास हो जाता है। चंपा, किसी को पता ना चले कि तुम गर्भवती हो।
2: जी रानी।
1: और हमारे वापस आने तक तुम्हें महालय का गुमान बनाए रखना है।
2: जी बिल्कुल।
1: और महामात्य सब जानते हैं, वो तुम्हारे अभिभावक हैं, रक्षा करेंगे तुम्हारी। महाकाल सब मंगल करेंगे चंपा। अब हम चलते हैं।
2: जी रानी।
3: चंपा बहन, महादेवी की चिंता ना करना, वैसिका उनके लिए अपने प्राण तक समर्पित कर देगी। ये अनुष्ठान उनके अकेले का नहीं है, मैं भी उनके साथ हूँ। वो अपने पति को वापस लाना चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि अवंती नरेश अपनी राजधानी में वापस आ जाएं।
2: जी।
3: महामाती ने इस अत्यंत गोपनीय अभिचर के लिए मुझे सहयोगी के रूप में चुना है। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगी।
1: क्या हुआ वैसिका?
3: कुछ नहीं देवी, देव के विधान पर सोच रही थी। काल की गति और परिणाम जानने के गर्वोक्ति चाहे विज्ञानी करें या कोई देवज्ञ, कोई समझ नहीं सकता। आप किंचित विश्राम करें, मैं इन 40 दिनों वाली पूजा की व्यवस्था लगाती हूँ। और क्षमा करें महादेवी, इन 40 दिनों में अपने उपयोग का जल आपको स्वयं ही नदी से भर कर लाना होगा। आज शनिवार है और आपके अनुष्ठान का प्रारंभ आज ही से हो रहा है।
1: हम तो भूल ही गए थे कि अब 40 दिन तक हम राजमहिषी नहीं हैं।

रानी पिंगला ने तंत्र उपचार प्रारंभ कर दिया। कुटिया से 10 धनुष उत्तर में अधसूखे वृक्ष पीपल के नीचे क्रियाएं होनी है। वैसिका ने अनुष्ठान की सामग्री वहां क्रमानुसार लगा दी। मूंज, कुश, खप्पर, दीपक, जौ, तिल, अक्षत, गंध आदि, कच्चा सूत, इंद्रजौ, गुग्गल, रक्तचंदन, कर्पूर, संपूर्ण सामग्री का संयोजन अत्यंत सावधानी से

तनिक भी त्रुटि अथवा न्यूनता अधिकता अनुष्ठान की असफलता का कारण बन सकती है। अत्यधिक सतर्क थी वैसिका सामग्री सहेजने में।

अर्धरात्रि से दो घड़ी पूर्व रानी पिंगला तांत्रिक क्रिया संपन्न करके कुटिया में लौटी। पहला दिन व्यतीत हुआ, 39 दिन अभी और यही क्रम, यही साधना होनी है।

0: वैसे का दीप जला लेती, भीतर अंधेरा भरा है।
1: मुझे रात्रि में चित लेटकर आकाश की ओर ताकना अच्छा लगता है महादेवी। दीपक की लौ से ये भान होता है कि कोई और भी है, और इससे आकाश के शून्य से मेरे संबंध में बाधा उत्पन्न होती है।
0: ओहो, तो इन दिनों आकाश से

0: सहायता भी कर सके हम तुम्हारी।
1: इस प्रसंग को छोड़िए महारानी, आप अपना भोजन बना लें, मैंने अपना बना लिया है, साथ साथ ही ग्रहण करेगी।
0: ठीक है वैसिका, तुम अपने आकाश से संवाद करो और हम अपना आकाश खोजते हैं।

0: दिन प्रतिदिन यही उपक्रम, रानी पिंगला और वयसिका की ऐसी ही नित्यचर्या, जिसमें 40 दिवस और 40 रात्रियां व्यतीत हो गई। उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए महामात्य ने विशेष व्यवस्था कर रखी थी। धनुषबाण, खड़क से प्रतिपल सन्नद्ध जीवक सदा उनके आसपास रहता, किंतु अदृश्य, उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित, केवल वयसिका ही जानती थी। रानी यही समझती रही कि वो दोनों ही केवल उस निर्जन एकांत में हैं। उनके सामने जीवक कभी प्रकट नहीं हुआ। 40 दिन पूरे होने के बाद जीवक महादेवी के सामने आया।
1: सेवक का प्रणाम स्वीकार करें महादेवी।
2: जीवक नाम है ना तुम्हारा?
1: हाँ महादेवी।
2: किस ग्राम से हो? हम व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी कृतज्ञ हैं। तुम्हें महामाते ने नियुक्त किया है ना?
1: महादेवी का अनुमान सत्य है।
2: कृषक हो?
1: मृत्यु हूँ महादेवी का।
2: अवंती पहुंचकर हम महामात्य से कहेंगी कि तुम्हें 5 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएं।
1: आपका अनुग्रह दास का सौभाग्य है।
3: बंधु जीवक, ये महारानी है अवंती नरेश की अर्धांगिनी, जानते हो?
1: जानता हूँ देवी, क्यों नहीं जानूंगा।
3: तुम कृषक नहीं हो जीवक, यही सच है। तुम महादेवी के सामने असत्य भाषण कर रहे हो, और ये कि तुम महामात्य के परम विश्वस्त हो।
1: मेरा परम सौभाग्य है कि मैं महामात्य का क्रीतदास हूँ।
3: मैं भी क्रीतदासी हूँ, मुझे भी महामात्य ने क्रय किया था। अब अपने अपराध का दंड सुनो। तुम्हें हमारे साथ मेरे और महादेवी के साथ बैठकर भोजन करना पड़ेगा। मैंने कुछ अनुचित तो नहीं कहा महारानी?
2: नहीं वैसे का जीवक, इसे महादेवी की ओर से उनकी सेवा का पुरस्कार मानो।
3: अब स्वपाक

0: स्वावलंब की बाध्यता नहीं रही महादेवी, आप विराजें, मैं भोजन प्रस्तुत करती हूँ।
1: मैं एक सूचना लेकर प्रस्तुत हुआ था स्वामिनी।
0: मुझे स्वामिनी ना कहो जीवा। हाँ तो क्या सूचना है?
1: प्रातः ही यहाँ से प्रस्थान करना है। महामात्य व्यग्रता से आपकी प्रतीक्षा में है।
0: अन्य कोई सूचना?
1: कल सायं तक आप कनक श्रृंगा पहुंच जाएंगी, मुझे बस इतना ही ज्ञात है। प्रातः आप दोनों के लिए सवारी आ जाएगी। 4 कोस तक रथ का मार्ग नहीं है, वहां तक अश्व पर चलना होगा।
0: और कुछ
1: नहीं।
0: अच्छा ये बताओ, मेरे विषय में महामाती ने तुमसे कुछ कहा था?
2: जीवक चुप रहता है।
0: मैंने कुछ पूछा है जीवक?
1: जी यही कहा था कि महादेवी तो हैं ही, आपको भी मैं स्वामिनी समझकर ही व्यवहार करूं।
3: राजवर्ग से श्रेष्ठी वर्ग तक समाचार फैल गया कि रानी पिंगला गर्भवती हैं। महादेवी अपने कोख में भावी नरेश का बीज सहेज कर आ रही हैं। प्रजा की 10 वर्ष की प्रतीक्षा फलवती होगी। महादेवी कल सायंकाल पुत्र श्रेष्ठी अनुष्ठान संपन्न करके महालय लौट आई हैं। नरेश अभी नहीं लौटे हैं, उनके लौटने का मुहूर्त राज ज्योतिषी निश्चित करेंगे। ग्रह दशा पूर्ण अनुकूल होने पर ही राजा भर्तृहरि महादेवी का दर्शन करेंगे।

उत्सव प्रिय उत्सव धर्मी कनक श्रृंगा अवंती में नूतन चेतना का समीकरण बहने लगा। तोरण पताका यत्र तत्र सर्वत्र लहराने लगी। मार्गों वीथियों पर सुगंधित पुष्पों का ढेर जमा होने लगा। क्षिप्रा तट पर मंगल गान हेतु सुंदरियां एकत्रित होने लगी।

महाकाल का अभिषेक करने के पश्चात हरसिद्धि मंदिर पहुंचेंगी, मंगलनाथ की अर्चना करेंगी, काल भैरव का समराधन कर गढ़ कालिका पर कुल सत्र में सम्मिलित होंगी और सायंकाल क्षिप्रा में दीपदान करेंगी।

0: महामात्य पधारे हैं, शीघ्र भेंट के लिए आग्रह किया गया है।
1: उन्हें सादर निवेदन करो कि महादेवी अभी पहुंचती हैं।
0: जी।
1: स्वामिनी, महामात्य पधारे हैं।
2: क्या?
1: महामात्य भेंट चाहते हैं, आ चुके हैं, वासंती कक्ष में प्रतीक्षारत हैं।
2: अच्छा वैसिका, तुम चलो, हम आते हैं।
1: देव दासी प्रणति निवेदन करती है।
3: ओह वैसिका, बैठो बैठो।
1: लोकापवाद होगा महामना, एक दासी महामाति की उपस्थिति में आसन ग्रहण करेगी तो महालय हिल उठेगा। मैं तो अकिंचन हूँ, अस्तित्वहीन, किंतु लोक विश्वस्त अवंती राज्य के देवमान्य महामाति का गौरव। नहीं देव, इस समय आप भी स्वतंत्र नहीं हैं।
3: वैसिका, तुम नहीं जानती कि मैं कितना अकेला हूँ। कुल परिवार के सभी जन अपने अपने आमोद प्रमोद में व्यस्त हैं, लेकिन मैं अपने एकांत

0: में भटकता रहता हूं। तुमने कदाचित ना सोचा हो कि तुम्हारा साथ पाकर मैं अपना दायित्व और सुचारू रूप से निर्वाह कर पाऊंगा। मैं भीतर से थक रहा हूं वैसिका, दृढ़ता का अभिनय अब मुझसे नहीं सर पा रहा।
1: शांत हो देव, आसन ग्रहण करें।
0: महीनों से राजा के दर्शन नहीं हुए, राज्य आरक्षित हो रहा है, बाह्य शत्रु तो घात लगाए ही रहते हैं। कौन जाने राज परिवार के ही किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा कब जाग उठे। राजा की उपस्थिति के अभाव में महामात्य की शक्ति वंध्य हो जाती है। चौमासा चला गया और महाराज के विषय में कोई सूचना नहीं है। प्रजा और राजन्यों को भरमाने के लिए मैंने महादेवी के गर्भवती होने का भ्रम फैलाया है, एक अर्ध सत्य का सहारा लिया है। मुझे तुम्हारे अवलंब की आवश्यकता है वैसिका। क्या मैं केवल महामाते ही बना रहूं? मुझे मनुष्य नहीं रहना चाहिए?
1: अवंती जैसे शक्तिशाली राज्य का महामाते भी आदमी अवलंब के अभाव में कितना शीहीन है। प्रवंचना और असत्य के महाव्यापार में विश्वास की इच्छाओं के बिना क्यों नहीं जी पाता? महाकाल, तेरी रचना विचित्र है।
2: महादेवी पधार रही हैं। आसन ग्रहण करें आर्य।
0: महादेवी स्वस्थ तो है ना?
2: अनुग्रह है महाकाल का, आप पधारने का हेतु कहें।
0: वो क्या गोपनीय चर्चा कर सकता हूं?
2: ओ वैसिका, तुम यहीं ठहरो और सुनो कि आर्य महामात्य क्या क्या कहते हैं। हमारा चित्त अभी उद्विग्न है, द्वंद बना रहता है। ऐसे में महामात्य से मंत्रणा में तुम ही हमारी सहायता कर सकती हो। आर्य, हमने वैसिका को दासता से मुक्त कर दिया है, अब वो हमारी सेविका नहीं सहयोगिनी है। ये चतुर है और धैर्यशील भी, बिना किसी महत्वाकांक्षा के राज परिवार के प्रति समर्पित भी है। हमसे संबंधित किसी भी चर्चा में आप निसंकोच इससे परामर्श कर सकते हैं। दासत्व से इसकी मुक्ति के साक्षी आप बने। वैसिका, तुझे अब अपनी ही नहीं हमारी भी देखभाल करनी है। राज महालय की गरिमा बनाए रखने का भार अब तेरे कंधों पर है। बोल, स्वीकार है?
1: आपके हर आदेश का पालन करूंगी।
2: आर्य
0: जी,
2: हमारी इस इच्छा को आप संबंधितों तक सूचित कर दें। अब से वैसिका की हर इच्छा को महारानी का आदेश माना जाए।
0: क्षमा करें महादेवी, ये उचित नहीं होगा।
2: क्यों, क्या बात है आर्य?
0: इसलिए कि राजन्य वर्ग का अहंकार किसी परिचारिका अथवा दासी को अचानक अपने समकक्ष स्वीकार नहीं करेगा। महाराज यहां होते तो कुछ संभव था। इस समय तो इसे षड्यंत्र ही समझा जाएगा, विरोधियों को अपवाद का अवसर मिलेगा। आपके देवर कुमार विक्रम पहले से ही असंतुष्ट हैं। महाराज की अनुपस्थिति में उनका स्वेच्छाचार सीमाएं लांघ रहा है।
2: फिर
0: हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी, सतर्कता और संतुलन बनाए रखना होगा।
2: आर्य
0: जी,
2: इस उत्सव के दीर्घ आयोजन का प्रयोजन बताएंगे आप?
0: निश्चय ही देवी। प्रथमता तो ये कि इतने दिनों तक प्रजा उत्सुक और व्यस्त रहेगी, उसका ध्यान बटा रहेगा। कुछ दिन उत्सव में बीतेंगे, फिर कुछ दिन उसकी चर्चा, स्मृति और आलोचना में। तब तक संभव है कि महाराज की कोई सूचना हमें मिले अथवा सौभाग्य से वो स्वयं आ जाएं। उसके अतिरिक्त ये समाचार भी फैलेगा कि इस उत्सव का आयोजन राज्य के उत्तराधिकारी के गर्भ में आने के कारण हो रहा है। समाचार महाराज तक भी पहुंचेगा और वो स्वयं को रोक नहीं पाएंगे। मैंने तो यही

0: 27 दिवस व्यतीत हुए हैं। इसलिए ध्यान रखना होगा कि गर्भ 4 माह से अधिक का है। इस उत्सव में महादेवी जहां भी पहुंचें, उनके उठने बैठने वार्ता व्यवहार से ये परिलक्षित होना चाहिए कि वे गर्भवती हैं और उन्हें इन दिनों प्रायः प्रतिदिन किसी न किसी युक्ति से सामान्य प्रजा के बीच जाना होगा, ताकि राजन्य वर्ग में जनसाधारण में नरेश की अनुरक्ति की चर्चा चले। प्रजा की अनुरक्ति नरेश के प्रति षड्यंत्रों को हतोत्साहित करती है।
1: हाँ, ये उचित है।
2: हाँ, ये ठीक है।
3: सभी ने वैसिका के सुझाव पर

आज कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 13वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित।

और महामात्य अरशद इकबाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया, संयोजक राकेश ढौंडियाल और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आपको याद होगा कि राजा भर्तृहरि महल से निकलकर पैठार होते हुए चंद्रपुर जाना चाहते हैं। इधर अवंती में राजा की अनुपस्थिति से महामात्य, रानी पिंगला, चंपा और वैसिका सभी चिंतित हैं। रानी ने कठोर तांत्रिक अनुष्ठान किया। इधर राजा भर्तृहरि चारुमित्रा से मिलना चाहते हैं, जो उनके काव्य की प्रशंसिका है और चंद्रपुर में रहती है। राजा के मार्ग में आए अवरोधों से हम अगले भाग में परिचय प्राप्त करेंगे।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटेस्ट ऑडियो चैनल न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जन कल्याण को गति देने के लिए लगभग 2480 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की। लोकसभा ने लोक अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा जारी की। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल

मुख्य आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद यानी घोष ने पहली बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की बैठक मंगल मिशन में भाग लिया। बैठक के बाद संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में सयानी घोष ने इस बैठक को ज्ञानवर्धक बताया और सरकार ने 10 और 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट लाने के रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दी और सरकार ने 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युवाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

श्रोताओं, घड़ी में बज गए हैं शाम के 5:02 और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त महिमा सक्सेना। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारी सेहत से जुड़ा है और जिसके बारे में जागरूक होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस की, जो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस यानी लीवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी। दोस्तों, हम लोगों में से ज़्यादातर लोग तब तक डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं जब तक कोई परेशानी बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। थोड़ी थकान हो, कमज़ोरी लगे या भूख कम लगे तो हम अक्सर इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार शरीर के ये छोटे छोटे संकेत हमें किसी बड़ी परेशानी के बारे में बता रहे होते हैं। इसीलिए किसी भी बीमारी के बारे में सही जानकारी होना और समय पर जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से हमारे लीवर को प्रभावित करता है। हमारा लीवर शरीर के बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, इसीलिए उसका स्वस्थ रहना भी उतना ही ज़रूरी है। हेपेटाइटिस के कई प्रकार होते हैं और इसके लक्षण हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते। कई बार तो शुरुआत में कोई खास लक्षण दिखाई भी नहीं देता, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखना, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना और किसी भी स्वास्थ्य समस्या को लंबे समय तक नज़रअंदाज ना करना, ये छोटी छोटी सावधानियाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अपनी सेहत के लिए जागरूक होना डरने की बात नहीं बल्कि समझदारी की बात है। इसलिए खुद भी जागरूक रहें और अपने परिवार को भी जागरूक करें, क्योंकि सेहत को लेकर की गई थोड़ी सी सावधानी आने वाली बड़ी परेशानी से बच सकती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों, अब बातों का यह सिलसिला यहीं थामते हैं और अब कुछ पल संगीत के नाम करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का पहला खूबसूरत फिल्मी गीत, फिल्म मौसम से राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।

धरती की गोद में पलते हैं हम, हवा से सांसें लेते हैं हम, प्रकृति ने दिया है जीवन हमें, क्या उसके लिए कुछ कर सकते हैं हम? दोस्तों जरा सोचिए, अगर हमारे आसपास पेड़ ना हो, हवा में ताजगी ना हो, पानी साफ ना हो और गर्मी हर साल पहले से ज्यादा पड़ती जाए तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? शायद इस सवाल का जवाब सोचकर ही हमें समझ आ जाए कि प्रकृति हमारे लिए कितनी जरूरी है। हम रोज प्रकृति से कुछ ना कुछ लेते हैं, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और जीवन के लिए जरूरी संसाधन, लेकिन बदले में हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं? ये सवाल आज हम सभी को खुद से पूछने की जरूरत है। इसी जिम्मेदारी और जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आज पेड़ों की कटाई, प्रदूषण, पानी की बर्बादी और प्लास्टिक का बढ़ता इस्तेमाल प्रकृति के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से कर सकते हैं। पानी को बेवजह बर्बाद ना करें, पेड़ पौधों की देखभाल करें, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। ये काम छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन जब बहुत से लोग मिलकर इन्हें अपनाते हैं तो बड़ा बदलाव आता है। और युवाओं की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि युवा सिर्फ बदलाव की बात नहीं करते बल्कि बदलाव की शुरुआत भी कर सकते हैं। दोस्तों प्रकृति हमें सिर्फ आज के लिए नहीं मिली है, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। श्रोताओं आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला फिल्मी गीत, फिल्म एक था टाइगर से। इस गीत को अपनी आवाज से सजाया है तरन्नुम मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं विरासत का संरक्षण, समृद्धि के सृजन विषय पर। भारत अपनी समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा और कुशल कारीगरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हथकरघा बुनाई और लकड़ी की नक्काशी से लेकर कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, चमड़े का काम, धातु शिल्प और पारंपरिक चित्रकला तक, ये शिल्प मात्र उत्पाद नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। पीढ़ियों से अनगिनत परिवार अपनी आजीविका के लिए इन पारंपरिक व्यवसायों पर निर्भर रहे हैं। हालांकि किफायती ऋण की सीमित उपलब्धता, पुराने उपकरणों और संस्थागत समर्थन के अभाव के कारण कई कारीगरों को आज भी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने कई कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम NMDFC की विरासत योजना है। विरासत योजना अल्पसंख्यक समुदायों के कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है, ताकि वे अपनी पारंपरिक कलाओं को संरक्षित कर सकें और साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। विरासत नाम ही इस योजना के उद्देश्य को दर्शाता है, जो भारत की समृद्ध कलात्मक परंपराओं की रक्षा करने के साथ साथ कारीगरों को बेहतर भविष्य बनाने में मदद करना है। आर्थिक तंगी के कारण इन बहुमूल्य कौशलों को लुप्त होने देने के बजाय ये योजना कारीगरों को अपने काम को आधुनिक बनाने, उत्पादन बढ़ाने और आज के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये योजना मुख्य रूप से भारत के 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यानी मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी कारीगरों को लक्षित करती है। ये उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए है जो पारंपरिक व्यवसायों में लगे हुए हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय NMDFC द्वारा निर्धारित पात्रता सीमा के भीतर आती है। इस पहल के माध्यम से वित्तीय सहायता उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें अपनी आजीविका को बढ़ाने या मजबूत करने के लिए वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। विरासत योजना की

सबसे बड़ी खूबियों में से ये एक है कि ये रियायती ब्याज दरों पर किफायती ऋण प्रदान करती है। पात्र कारीगर अपनी आवश्यकताओं और पात्रता के आधार पर 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस वित्तीय सहायता का उपयोग विभिन्न उत्पादक कार्यों के लिए किया जा सकता है। कारीगर कच्चे माल, आधुनिक औजार, मशीनरी या अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक उपकरण खरीद सकते हैं। वे ऋण का उपयोग अपनी कार्यशालाओं का विस्तार करने, कार्य परिस्थितियों में सुधार करने, दैनिक व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने या बेहतर उत्पादन तकनीकों को अपनाने के लिए भी कर सकते हैं। इस तरह के निवेश कारीगरों को महंगे निजी साहूकारों पर निर्भर हुए बिना उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर आय अर्जित करने में मदद करते हैं। इस योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सरल और उधारकर्ता के अनुकूल पुनर्भुगतान संरचना है। कई छोटे कारीगर ऋण लेने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि वे ऋण तुरंत चुकाने में सक्षम नहीं होंगे। इन चिंताओं को समझते हुए NMDFC ने लचीली पुनर्भुगतान व्यवस्थाओं के साथ विरासत योजना तैयार की है। लाभार्थियों को पुनर्भुगतान शुरू होने से पहले 6 महीने की मोहलत मिलती है, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने और आय अर्जित करना शुरू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस अवधि के बाद ऋण को 5 वर्षों की अवधि में आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है, चूंकि ऋण पर साधारण ब्याज की रियायती दरें लागू होती है। इसीलिए कुल वित्तीय बोझ कई अन्य व्यावसायिक ऋणों की तुलना में काफी कम रहता है। ऋण विकल्प हैं, इससे ये योजना व्यावहारिक और सुलभ बन जाती है। यहाँ तक कि सीमित वित्तीय संसाधनों वाले छोटे कारीगरों के लिए भी विरासत योजना का विशेष ध्यान महिला कारीगरों को सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने पर है। पूरे भारत में हजारों महिलाएं कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, हथकरघा उत्पादन, हस्तशिल्प और खाद प्रसंस्करण जैसे पारंपरिक शिल्पों में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर भी उनमें से कई को अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने के लिए NMDFC महिला लाभार्थियों को 1% की अतिरिक्त ब्याज छूट प्रदान करता है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है, जिससे उनके लिए अपना व्यवसाय स्थापित करना या उसका विस्तार करना आसान हो जाता है। ये विशेष प्रावधान भारत के पारंपरिक शिल्पों को संरक्षित करने और साथ ही उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। विरासत योजना का एक और महत्वपूर्ण योगदान वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। कई कारीगर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं और अक्सर वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं होता या औपचारिक वित्तीय रिकॉर्ड नहीं होते। NMDFC के माध्यम से इन कारीगरों को किफायती दरों पर संस्थागत ऋण प्राप्त होता है। इससे अनौपचारिक साहूकारों पर उनकी निर्भरता कम होती है और परिवार दीर्घकालिक ऋण के जाल में फंसने से बचते हैं। ये योजना भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी योगदान देती है। हर पारंपरिक शिल्प में पीढ़ियों का ज्ञान, रचनात्मकता और सांस्कृतिक पहचान समाहित होती है। जब कारीगरों को वित्तीय सहायता मिलती है तो ये आजीविका के अन्य साधनों की तलाश में इसे छोड़ने के बजाय अपने शिल्प को जारी रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। बेहतर विकल्प, बेहतर उपकरण, बढ़ी हुई कार्यशैली, संस्थागत वित्त तक पहुंच उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है। जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता है, वे अक्सर अपने समुदाय के परिवार के सदस्यों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम होते हैं, जिससे पारंपरिक कौशल पीढ़ियों तक जीवित रहने में मदद मिलती है। ये योजना समावेशी विकास के प्रति भारत सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आर्थिक विकास हाशिए पर पड़े समुदायों तक पहुंचे और उनके पारंपरिक व्यवसायों पर कोई असर ना पड़े। सदियों पुरानी शिल्प कलाओं को आधुनिक उद्योगों से प्रतिस्थापित करने के बजाय विरासत योजना कारीगरों को उनके पारंपरिक कौशल को समकालीन बाजारों के अनुकूल ढालने में सहायता करती है। ये न केवल व्यक्तिगत आजीविका को मजबूत करती है, बल्कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा भी करती है। विरासत योजना महज वित्त सहायता कार्यक्रम से कहीं अधिक है। ये एक ऐसा पहल है जो आर्थिक सशक्तिकरण को सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जोड़ती है। किफायती ऋण, लचीले पुनर्भुगतान विकल्प और महिला कारीगरों के लिए विशेष रियायतें प्रदान करके ये योजना हजारों अल्पसंख्यक शिल्पकारों को अपनी आय बढ़ाने और साथ ही सम्मानपूर्वक अपने पारंपरिक कौशल का अभ्यास जारी रखने में सक्षम बनाती है। भारत जैसे जैसे समावेशी और सतत विकास की ओर बढ़ रहा है, विरासत योजना जैसे पहले यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश की समृद्ध कलात्मक विरासत फलती फूलती रहे और इन परंपराओं को जीवित रखने वाले कारीगरों का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध हो। श्रोताओं, सुनते हैं अगला फिल्मी गीत फिल्म टशन से उदित नारायण की आवाज़ में।

उंगलियों पर सिमट गई है आज दुनिया सारी, स्क्रीन की रोशनी में खो गई है शाम हमारी। तकनीक ने जिंदगी को आसान तो बना दिया, बस खुद के लिए वक्त निकालना है अभी बाकी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम मोबाइल को सिर्फ कुछ मिनट देखने के लिए उठाते हैं, लेकिन जब उसे नीचे रखते हैं तो एक घंटा बीत चुका होता है। कभी किसी नोटिफिकेशन के लिए, कभी किसी वीडियो के लिए, और कभी बिना किसी खास वजह के हमारा काफ़ी समय स्क्रीन पर बीत जाता है। तकनीक हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि सुविधा धीरे धीरे हमारी आदत बनती जा रही है? जब ज़रूरत से ज़्यादा समय डिजिटल दुनिया में बीतने लगे तो थोड़ा रुक कर सोचना ज़रूरी है।

कि तकनीक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या तकनीक हमारे समय का इस्तेमाल कर रही है। इसी सोच के साथ डिजिटल मिनिमलिज्म हमें तकनीक का इस्तेमाल समझदारी से करने की बात करता है। इसका मतलब मोबाइल और इंटरनेट को छोड़ देना नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल उतना ही करना है जितना हमारे लिए ज़रूरी हो। अगर हम गैर ज़रूरी नोटिफिकेशन बंद करें, मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरत के समय करें और कुछ समय स्क्रीन से दूर रहें, तो वही समय परिवार, दोस्तों, अपने शौक और खुद के लिए दिया जा सकता है। खासकर युवाओं के लिए ये संतुलन बहुत ज़रूरी है। डिजिटल दुनिया सीखने और आगे बढ़ने का शानदार माध्यम है, लेकिन हमारी असली ज़िंदगी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों, याद रखिए, तकनीक से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ज़रूरी है कि तकनीक हमारी ज़िंदगी को आसान बनाए, हमारी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ना चलाए, मोबाइल हमारे हाथ में रहे, हमारी ज़िंदगी मोबाइल के हाथ में ना रहे। तो चलिए फिर डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा ब्रेक लेकर चलते हैं संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा फिल्म 30 मार खां से अभिजीत सावंत और प्रजक्ता शुक्रे की आवाज़ में।

श्रोताओं, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बातों का सिलसिला अब यहीं थामते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नई बातें और नए विचार लेकर। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त यानी मुझे महिमा सक्सेना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आकाश अभी किया।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी

0: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
1: तैतीस मिनट हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान की आवाज में कौसार मुनीर का लिखा यह गीत फिल्म धूम 3 से। इसे संगीत दिया है जूलियस पैगजैम जोशीले ने।

शिराज उपल और जसविंदर सिंह की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म रांझणा का गीत। इरशाद कामिल के लिखे बोलों को संगीत दिया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। अभी आप सुन रहे थे फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो का गीत। आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ों में इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया था प्रीतम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म लुटेरा से। मोनाली ठाकुर की आवाज़, अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से। जावेद बशीर के गाए इस गीत को लिखा है रजत अरोरा ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के इस गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण अब आप मीडियम वेव के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से ऐप न्यूज ऑन AIR और फिर लाइव रेडियो के ऑप्शन में जाकर क्लिक कीजिए AIR ग्वालियर पर और जुड़ जाइए हमसे। तो सुनते रहिए कभी भी कहीं भी आकाशवाणी ग्वालियर के कार्यक्रम।
1: धरती माँ की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार, मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ, धरती पर हरियाली लाओ, जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।

लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा जारी। राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आज मंत्रालय में संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जन कल्याण को गति देने के लिए लगभग 2480 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई। इस साल गुरु पूर्णिमा पर 29 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों में गुरु पूजन, सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम, छात्र शिक्षक संवाद और भारतीय गुरु शिष्य परम्परा पर आधारित विविध गतिविधियां आयोजित होंगी। और घरेलू शेयर बाजार के सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 70 अंक नीचे आकर 76,766 पर पहुंच गया है, जबकि निफ्टी 11 अंक फिसलकर 23,985 पर आ गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से

0: रेशम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है। आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी, सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में अपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
0: सुंदर प्यारा गीत, टिम टिम तारा जादुई पिटारा, हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
1: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
0: जी।
1: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
0: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
1: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
0: बिल्कुल।
1: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
0: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके, और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
1: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
0: जी।
1: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
0: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
1: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
0: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
1: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
0: जी।
1: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
0: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
1: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
0: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
1: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
1: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
1: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
0: NCERT की 6ठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
4: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
2: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ समझ में नहीं आता क्या?
3: दीदी वो।
0: हाँ बोलो।
3: दीदी।
0: बोलो लता, क्या बात है?
5: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का

0: कार बन जाएगी। उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते
1: नमस्ते बहन जी।
3: नमस्ते शिखा।
4: अरे दीदी जी आप आइए आइए।
3: नमस्ते बहन जी।
4: नमस्ते, यहाँ बैठिए
3: जी,
4: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
3: अरे बहन जी कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
4: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
3: हाँ ये तो है।
4: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
3: राम राम दादा।
5: हाँ,
3: कैसे हैं आप।
5: राम राम। अरे आप यहाँ। लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
3: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
5: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
3: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
5: अच्छी, और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
3: अरे लता आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
1: जी, जी, जी।
5: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
3: जी।
0: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
3: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है।
2: दीदी लता। दीदी लता।
3: लता
6: जी। दीदी।
3: क्या ये लता।
6: जी दीदी।
3: अरे नहीं।
6: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
3: अच्छा,
6: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया। सारे थक गए पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
3: अच्छा
6: जी दीदी।
3: लता ये सच है क्या। अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता-पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह रे पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने। हां
2: बापू, मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो? मैं पगली नहीं हूं।
1: देखा, इनाम पाकर कैसी जुबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक?
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही हैं बेटी से?
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खासकर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा, आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है? आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं?
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कर सकता है भला?
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा, अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं? देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा?
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है?
3: दादा, कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।

उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी ना रखें।

0: ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
1: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
2: हाँ हाँ,
1: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
2: अच्छा,
1: उसके सचमुच के बाल है।
2: ओहो,
1: और एक कंघी भी है।
2: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
3: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
2: ठीक है आ जाना।
3: अच्छा
1: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
4: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। श्रोताओं, चित्रपट संगीत में सबसे पहले आइए सुनते हैं जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाज़ में यह गीत फिल्म सोल्जर से। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है अन्नू मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है दुल्हन हम ले जाएंगे। इस गीत को लिखा है सुधाकर शर्मा ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म कुली नंबर वन से। चंदना दीक्षित और अभिजीत की आवाज़ें हैं और समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, फिल्म हीरो नंबर वन का गीत अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू की आवाज़ में। इस गीत को शब्द दिए थे समीर ने और संगीत था आनंद मिलिंद का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल तो पागल है से। आशा भोसले की आवाज़, आनंद बख्शी के लिखे बोल और संगीत दिया है उत्तम सिंह ने।

0: श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है के इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: पॉलिथीन बैग्स का इस्तेमाल ना करें।

क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं, और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला

0: यहाँ पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में न उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी रहे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: प्लास्टिक पॉलीथीन का छोड़ो साथ, प्रकृति से मिलाओ हाथ। प्लास्टिक पॉलीथीन थैलों का उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति के लिए है रोग। खरीदारी करते समय कपड़े से बना थैला हमेशा साथ रखें। यदि पर्यावरण बचाना है, पॉलीथीन दूर हटाना है। धरती बाकी यही पुकार, वृक्ष लगाओ बारंबार। मिलजुल कर पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ। धरती पर हरियाली लाओ। जल थल वायु अग्नि और आकाश, इन पांच तत्वों से ही बनता है हमारा पर्यावरण। आइए इस पर्यावरण को हरा भरा बनाएं, वृक्ष लगाएं।
4: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने। आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हम सफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं। आप
5: मुनीश शर्मा, लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक

0: विपणन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की वृद्धि हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। चीन में ISF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और यह समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर योगेंद्र सिंह की भेंटवार्ता, विषय होगा नींबू वर्गीय पौधों का प्रबंधन। रात्रि 8:00 आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए संसद समीक्षा। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:30 और रात्रि 10:00। उर्दू कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण 9:30 पर होगा और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज सुनिए पंडित आस्करण शर्मा का यमन राग पर ख्याल गायन। श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी बुधवार 29 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। सुबह की खूबसूरत शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमय सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे दीपाली चैटर्जी का भजन गायन। 9:30 पर सुनिए प्रदेश की सुर्खियों में। सुबह 10:05 का समय होगा कार्यक्रम महिला संसार का और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में आप सुनेंगे समरजीत सिंह का सितार वादन, राग होगा विलास खानी तोड़ी। इसका प्रसारण सुबह 10:30 पर किया जाएगा। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रम

0: कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत होगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनिए फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 11 बजे। कार्यक्रम आपकी फरमाइश का प्रसारण दोपहर 12 बजे और दोपहर 2:30 पर होगा। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक कामिनी काय कांतारे का 14वां भाग आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर के योगदान से प्रसारित होंगे। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 बजे, शाम 5:33, 6:30 और रात्रि 8:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। इसके अंतर्गत कल आप सुनेंगे जैव उर्वरक से उन्नत कृषि उत्पादन विषय पर डॉक्टर गोविंद गुप्ता की भेंट वार्ता। रात्रि 8 बजे सुनिए संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। कार्यक्रम चर्चा का विषय है का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। और संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, जिसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। श्रोताओं, ये थे कल यानी 29 जुलाई 2025 बुधवार को प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने आज लगभग 2,480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शन से जुड़े गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले नाबालिग छात्रों की रिहाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के नवनिर्मित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। नियमित रेल सेवाएं शुरू। और प्रदेश भर में कल गुरु पूर्णिमा पर महर्षि सांदीपनि गुरु पर्व मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों के लिए लगभग 2,480 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2026 में भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन के लिए 18,74,00,000 रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
1: महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 का आयोजन भी भोपाल में अक्टूबर नवंबर में होने जा रहा है। इसमें एशिया की 6 प्रमुख महिला टीमें जिनमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड, इनके 200 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और ये नाथू बरखेड़ा में जो नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसमें ये होने जा रहा है। इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास की राशि खर्च होगी। वित्त विभाग के द्वारा इसके लिए सहमति भी दे दी गई है।
0: श्री सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने आईटी पार्क स्थापना योजना के लिए 595 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, जिससे 8,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही कैबिनेट ने रिहंद और मलारगढ़ सिंचाई परियोजनाओं, आईटी पार्कों की निरंतरता, महिला सशक्तिकरण, ड्रोन टेक्नोलॉजी आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा समर्थन मूल्य पर किसानों को बोनस भुगतान योजना सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 साल से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान, 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें यह भी प्रावधान है कि अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में 9 विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही स्टेशन से नियमित यात्री रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया।
2: 12 साल में जो हुआ वो भूतों न भविष्यति। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसको इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस,
0: मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस का ठहराव अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। इससे भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का दबाव कम होगा और करोन, निषादपुरा, छोला, भानपुर, अयोध्या, बाईपास और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को आधुनिक और अधिक सुविधा मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अपने 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष पुस्तक विमोचन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रपति भवन में उनका आगमन उनके व्यक्तिगत सपनों से भी कहीं अधिक था। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में उन्होंने युवाओं को नैतिक मूल्यों में दृढ़ रखने और राष्ट्र और तथा समाज की प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक थी एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में राज्य पर्यटन विकास निगम की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में होमस्टे को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन, वन और संस्कृति विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने भगोरिया उत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर मार्ग सुविधा केन्द्रों के साथ अस्पताल, पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन विकसित करने तथा कांवड़ यात्रा मार्ग पर प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन, प्रसादी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कल पूरे प्रदेश में महर्षि सांदीपनी गुरु पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना

0: की भी शुरूआत होगी, जिसके तहत 102 मेधावी छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। खंडवा में श्री धूनी वाले दादाजी दरबार में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। पहले दिन से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं के खंडवा पहुंचने का अनुमान है। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया,
1: इस वर्ष हमारे गुरु पूर्णिमा का अवसर और विशेष है, क्योंकि इस बार दादाजी के मार्बल के मंदिर का नव निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। वही व्यवस्था जो हर साल होती है, इस साल भी रखी गई है। साथ में पुलिस प्रशासन मजिस्ट्रेट्स सबके सहयोग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की ट्रैफिक की अव्यवस्था ना हो, क्राउड का कोई इश्यू ना आए और जो भी हमारे भंडारे हैं वो स्मूथली पूरे शहर भर में चलते रहें।
0: और अब बात मौसम की। प्रदेश में कल भी मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर और सागर संभाग सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शहीद परिवार सम्मान समारोह का गरिमामय आयोजन संपन्न हुआ। नीमच में संचालित दस्तक अभियान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की समीक्षा की गई। देवास जिले के सोनकच्छ में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कटनी में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार 31 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और शिवपुरी जिले के शासकीय अनुदान प्राप्त तथा अशासकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया हम तो जो ही चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपन को अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। और इस समय भैया मौसम तो आप देख रहे हो, दिन के समय गर्मी और उमस तो भैया इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगर कौन ठंडी जगह पर अगर अपन बैठे हैं तो मन नहीं कर रहा था कि घर से बाहर या कहीं से निकलें। लेकिन क्या करें भैया, कहा था ना कि किसान के लाने तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बसकाय हो या कौन हो भी मौसम काय ना हो, वो तो भैया खेती किसानी के काम के लाने घर से बाहर निकलने पड़ते हैं। लेकिन हम फिर भी आपसे कहें कि मौसम को देखत भाई थोड़े अपने खान पान को और पीवे के पानी को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस समय भैया जो उमस के समय अपन को सबसे ज़्यादा पसीना आते हैं और अपने शरीर में पानी की कमी ना हो जाए, इस कारण नियमित अंतराल पर अपन को पानी पियत रहने हैं। और संगे संगे भैया पहने भी ओढ़े के जो कपड़ा है उनको भी ध्यान रखें। संजय भरिया भैया अपन को मच्छर से बचाव के भी प्रयास रखने हैं, क्योंकि भैया मच्छर भी अपन देख रहे हैं कि अपने आसपास हैं, तो इनको इनसे भी अपना खुद को बचाव रखें और अपने जो छोटे लड़का बेटियां हैं उनको भी ध्यान रखें। भैया देखो, मौसम को अगर अपन को आनंद लेने हैं तो थोड़ा सतर्क

को सावधान जरूर रहने हैं। जरा सी भी लापरवाही अपन ने करी तो जब मान लो कि अपन को बीमार होने होने हैं, और एक बार बीमार हुए तो भैया ना तो अपने खेती किसानी के कामकाज और ना ही अपनी घर गृहस्थी के कामकाज भी समय पर पूरे हो पाए, और इनको अगर को समय पर पूरा करने हैं तो सतर्क रहने हैं। लेकिन भैया ये मौसम में अपने स्वास्थ्य के संगे संगे जो अपन को अपना पशुधन है उसको भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि मौसम को जैसा असर अपने शरीर पर होते हैं वैसे अपने पशुधन पर भी होते हैं, और अपनी आय को अतिरिक्त साधन भी अपना पशुधन है, क्योंकि जो दुधारू पशु हैं उनसे अपन को दूध बेच के भैया अपन को आय भी होते हैं। खेती किसानी तो भैया अपन को एक निश्चित समय के बाद आमदनी होते हैं, लेकिन चौपियन से भैया अपन को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाते हैं। तो अपने पशुधन को भी ध्यान रखें, मौसम के अनुसार उनको खान पान, उनके उनके बांधवी की जगह को भी ध्यान रखें सूखी और हो। तो भैया देखो जो छोटी छोटी बातें अगर अपन को ध्यान रखें तो जो मान लो कि अपन सभी काम आसानी से कर सकते हैं। भैया देखो बतकाओ तो और भी करें, लेकिन अब हम आपको सुनवा देते हैं कृष्ण गोपाल दुबे के सुर में जो नौ नौ तो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भैया देखो, हम आपको समय समय पर वार्ता और भेंट वार्ता के माध्यम से जो आवश्यक जानकारी होता है, चाहे भैया अपने खेती किसानी से हो या अपने पशुधन से संबंधित हो या अपने स्वास्थ्य से संबंधित हो, वो हम आपको सुनवाते ही रहते हैं। लेकिन मंगलवार को भैया हम कुछ विशेष भी सुनवाते हैं आपको, क्योंकि ई दिन हम आपको सुनवाते हैं आंचलिक अनुसंधान केंद्र मुरैना से फ़ोन पर ली गई मौसम की और कृषि सामयिक सलाह की जानकारी। तो सुन लेते भैया जो जानकारी और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरविंद सिंह।
3: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर अरविंद सिंह का सभी किसान भाई नमस्कार। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, संभावित मौसम में कौन सी कार्य करनी चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाई, सबसे पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम विद्यालय की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः मध्यम से घने बादल रहे तथा हवा लगभग 4.9 से 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तथा अधिकतम तापमान 34 से 35 और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया एवं अपेक्षित आर्द्रता सुबह 72 से 78 और शाम को 52 से 62 के बीच दर्ज की गई। किसान भाई, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5

दिनों में घने बादल रहने तथा हल्की वर्षा होने का अनुमान है। ये हवा लगभग 9 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर व पश्चिम दक्षिण दिशा की बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 34.2 से 35.4 और न्यूनतम तापमान 27.5 से 28.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आप इसके कारण 81 और 67 का अनुमान है। मौसम में हल्की वर्षा की संभावना 5 दिन बनी हुई है और जिस प्रकार से इस सप्ताह की संभावना आपकी वर्षा की वैसी ही बनी हुई है तो इसको देखते हुए अधिकार करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार से किसान भाइयों आगामी सप्ताह में वर्षा हल्की वर्षा होने के अनुमान को देखते हुए इस समय खरपतवार नाशी एवं नत्यन की मात्रा जो आपको गिनी है उसको इस समय मिलकर दे सकते हैं। साथ ही किसान भाई जो आपकी तिलहनी दलहनी और सब्जियों की फसलें हैं तो इसमें आप जो है जल्द की व्यवस्था भी करके रखें और साथ ही मौका मिलने पर इसके खरपतवार निष्क्रिय और नत्रजन की शेष मात्रा को दें। साथ ही किसान भाई फसलों की बात करें तो इस समय अरहर की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी एमिलिया काइबर प्लस एमिलिया मार्च 70 ग्राम दवा 500 से 600 रुपए पानी में घोल बनाकर 20 से 25 दिन की अवस्था पर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई तिल की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए तिल की फसल की इस समय खरपतवार नियंत्रण की व्यवस्था करें। साथ ही वर्षा जल निकालने हेतु जल निकास की उचित व्यवस्था करें। साथ ही संभावित मौसम में हल्की वर्षा की संभावना किसान भाई अधिकतर जो है किसान भाई बाजरा की बुवाई कर चुके हैं और बाजरा की बुवाई के बाद में जो वर्षा पूर्व भी कर चुके हैं तो पूर्व के बाद में जो कल की बारिश है मुरैना में आज रात को अच्छी बारिश हुई थी सुबह के टाइम तो अच्छी बारिश हो चुकी है। तो यह कि आपकी जो है पत्र नतीजन की शेष मात्रा को दें। साथ ही किसान भाई धान की बात करें तो धान की फसल में जिस तरह का मौसम बना हुआ है इसमें खरपतवारों की संभावना अधिक रहेगी तो सतत निगरानी रखें और खरपतवार होने पर समय समय पर इनका नियंत्रण करते रहें और साथ में अगर वर्षा कम होती है तो ऐसी स्थिति में पानी की कमी दिखने पर उसमें पानी की व्यवस्था भी करें जिससे आपके खरपतवार नियंत्रित रहेंगे और एक बार खरपतवार नियंत्रण अवश्य करें। साथ ही किसान भाई और मूंग और सोयाबीन की बात करें तो इसमें पीला मोजेक रोग की संभावना बनी रहती है तो अगर पीला मोजेक रोग आपको दिखाई दे तो प्रभावित पौधों को उखाड़ कर जमीन में दबाकर नष्ट करें तथा सफेद मक्खी कीट की रोकथाम हेतु 25 WG/100 ग्राम दवा प्रति 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम जब साफ दिखे तब उसका छिड़काव करें। साथ ही किसानों ने संभावित मौसम को देखते हुए जिस पर आपकी हमारी सब्जियां लगी हुई है रबी तोरी कद्दू जो भी आपका लगा हुआ है इतना तरल अवस्था में है खराब होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही भिंडी की बात करें किसान भाई तो किसान भाई इस समय भिंडी की बात करें तो इस समय तरल अवस्था में है और इसमें फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है अगर दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 750 ml दवा प्रति 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 या 3 छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई जो इस समय आपने बैंगन टमाटर मिर्च हरी प्याज और अन्य की फूल गोभी की तैयार पौध की उसकी रोपाई कर चुके हैं तो उसमें खरपतवार नियंत्रण एवं जल निकास की व्यवस्था रखें और साथ ही अगर जो किसान भाइयों की रोपाई नहीं कर पाए जिनकी पौध तैयार नहीं थी वो इस समय रोपाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई मिर्च की बात करें तो जो आप इस समय मिर्च फलन अवस्था में है या नहीं लगाइए तो दोनों में ही चुटा मुरा रोग की संभावना हो सकती है अगर दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु 25 WG/100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी घोल बनाकर मौसम साफ होने पर इसका छिड़काव करें। पशुपालन की बात करें तो संभावित मौसम में ग्रामीण भैंसों गायों को परजीवी से बचाव हेतु यानी पेट के कीड़े मारने की दवा फैन घंटा जोर 1 ग्राम दवा 100 किलोग्राम शरीर भार की दर से हमारे साथी किसान भाई संभावित मौसम में लगातार हल्की फुल्की बरसात चल रही है तो इस समय पशुओं में संक्रामक रोगों की संभावना हो जाती है तो संक्रामक रोगों से पशुओं को पहले से ही बचाव की थोड़ा सावधानी बरते हैं उनको शुद्ध दूषित दाना चारा न दें शुद्ध दाना दें और साथ ही शुद्ध उनका जल जो है तालाबाद का न पिलाएं और शुद्ध पानी नल का पिलाएं। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से मैं डॉक्टर अरविंद की

भैया देखो, अभी आपने सुनी आंचलिक अनुसंधान केंद्र से मौसम की जानकारी और कृषि समय की सलाह। अब भैया देखो, डॉक्टर साहब ने बता भी है कि आगे 3-4 दिन में भैया बारिश की संभावना भी है, बारिश होने हैं। तो भैया बारिश को देखा तो भाई अपन को थोड़ा सा एक और प्रयास करने हैं कि बारिश के जो पानी है उनको अपन को रोकने का प्रयास करने हैं। देखो भैया, पानी के बिना ना तो अपने खेती किसानी के काम काज हो सकते हैं और ना ही अपने घर गृहस्थी के काम काज। सब में भैया पानी की अपन को ज़रूरत पड़ती ही है, और बारिश के मौसम में अगर अपन पीवे के पानी के लाने को रोकने को प्रयास कर लें तो भैया जब मान लो कि अपन को वर्षा परेशानी होने पड़े। अपन देखा था कि चैत वैसाख की गर्मी में भैया एक एक बाल्टी एक एक घड़ा पानी के लाने अपन को कितनी दूर तक पैदल जाना पड़ता है। हम तो आपसे यही कहें कि अब अभी थोड़े अपन जागरूक हो जाएं तो बारिश के मौसम में अपन अच्छी तरह से भैया अगर कोशिश करें तो बारिश के पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपन रोकने को प्रयास कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। एक लाने भैया अपने गांव में ईद कौन ऐसी जगह है जो खाली है और उतने भैया ढलान वाली भी है, तो अपन तो छोटा सा चेक डैम भी बना दें, इससे भी भैया अपन बारिश को पानी रुक जाए। छतन से निकलने वाले पानी को भैया रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो आधुनिक तकनीक है भैया अपनी, वो अगर उखो भी उपयोग कर लें तो अपन ज़मीन में पानी उतारने को प्रयास कर सकते हैं गड्ढा के माध्यम से। इसे भैया फ़ायदा जा हुई है कि अपने जो नलकूप हैं जो अपने हैंडपम्प हैं इनमें भैया अपन को वर्ष भर पानी पीवी को आसानी से मिल सकता है। और संगे संगे भैया अगर अपन अपने जो तालाब कुआ पोखर और बावड़ी हैं अगर उनमें मिट्टी जम गई है, उनमें गाद जमा हो गई है, तो थोड़ा सा श्रमदान करके अगर अपन भैया वो गाद हटा दें, सफाई कर लें और गहरीकरण कर लें तो बारिश के पानी को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अपन उनमें सहेज सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो भैया देखो, इके लाने प्रयास तो अपन को स्वयं ही करने पड़े, बिना प्रयास के तो भैया कोनो काम हो नहीं सकते हैं। और अपनी पंचायत में अपन को सबको जागरूक करने हैं कि बारिश की एक एक बूंद को अपन को बचाने हैं। देखो भैया, पीवे को पानी तो अपन कहते हैं ना कि सीमित मात्रा में, वैसे तो पानी बहुत है लेकिन जो पीवे को पानी है वो सीमित मात्रा में है, और बारिश को जल पीवे के पानी को स्रोत भी है। तो हमको बारिश की एक एक बूंद को व्यर्थ बहके नहीं जान देने हैं, उनको जितना ज़्यादा हो सके अपन को सहेजने हैं, रोकने हैं और इकट्ठे करने को प्रयास करने हैं। तो भैया बतकाओ तो और भी करें, लेकिन अब हम आपको सुनवा देते हैं तेज सिंह कुशवाहा के स्वर में जो उन्होंने लोकगीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल

0: प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भैया देखो आज कछु विशेष भी है, काहे कि भैया आज है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। भैया देखो हर अपन अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हैं, ये बात की अपन को अच्छे से जानकारी भी होनी चाहिए और अपन को अपने शरीर में कोनो परेशानी है तो ये बात के लाने अपन को अपने नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है उतर जाकर संपर्क भी जरूर करने। विश्व हेपेटाइटिस जो दिवस है भैया, इसमें मतलब है जो अपनों जिगर है, जो अपनों यकृत है, इसमें भैया सूजन हो जाते हैं और जो हो जाते भैया अपन को दूषित पानी पीवे से और दूषित खाना खावे से और तेल पदार्थ खावे से। तो अपन को अपने शरीर को ध्यान रखने हैं और अच्छी चीज़ें अपन को खाने हैं, बाहर की जो तली हुई चीज़ें हैं उनको अपन को खावे से परहेज रखने हैं। देखो भैया बीमारी कोनो भी हो, अगर अपन समय पर उसकी अपन को जानकारी मिल जाए, अगर अपन ध्यान दे दें तो जब मान लो कि उसकी अपन रोकथाम भी कर सकते हैं। लेकिन भैया देखो जानकारी अपन को रखने हैं और अपन को जागरूक भी देने हैं। अगर लापरवाही करी तो जब मान लो कि बीमारी बढ़ भी सकते हैं और अपन को परेशानी भी हो सकते हैं। तो हम तो आपसे यही कहें कि जो हेपेटाइटिस है, जो जिगर की बीमारी है, जो अपन को दूषित पानी पीवे से हो जाते हैं और ज़्यादा दवाई खावे से भी हो जाते हैं, तो अपन को ई के लाने सतर्क रहने हैं। और अगर अपन को कभी लक्षण वक्षण दिखें तो भैया अपन को नज़दीकी स्वास्थ्य विभाग जाने हैं स्वास्थ्य केंद्र पे और अपने डॉक्टर से संपर्क भी करने हैं। तो भैया देखो बतकाओ तो और भी करें, लेकिन अब हम आपको सुनवा देते हैं अंत में सक्सेना के स्वर में जो उन्होंने सो लोकगीत।

प्रयास कर लें। अगर अपन को अपनी पंचायत के आसपास या अपनी मिलन के आसपास खाली जगह है, अगर अपन भैया जो छोटे छोटे पौधा रोप दें, तो जब मान लो कि वो आज के पौधा अपन को कल पेड़ भी बन सकत है, लेकिन अपन को उनकी थोड़ी देखभाल भी करने हैं। और हरियाली से जब मान लो कि जो अपनी प्राणवायु ऑक्सीजन है वो अपन को बहुत अच्छी मिल सकत है। और आजकल तो कहा भी जाता है ना कि भैया हरियाली जहाँ है वहाँ खुशहाली भी है, तो अपन को कोशिश यह करनी है कि अपनी जो प्रकृति है उसको अपन को जो सुंदरता है उसको अपन को कम नहीं करने हैं, बढ़ावे को प्रयास करने हैं। और जो बढ़ सकते हैं भैया पेड़ पौधा लगा भी से, और पेड़ पौधा के लाने भैया अपन को जागरूक होने पड़े। खाली जगह है उतने अपन छोटे छोटे बीज भी अगर हैं अपने पास हैं तो अगर वो रोप दें तो बरसात के मौसम में भैया वे स्वतः ही अपने आप ही भैया पौधा भी बन सकते हैं। उन पौधन के अगर अपन थोड़ी देखभाल कर लें, उनको पानी दे दें, थोड़ा सा अगर अपन सहारा दे दें, तो जो मान लो कि कल के वो वृक्ष बन के अपन को प्राणवायु ऑक्सीजन है वो में अपन को वृद्धि कर सकते हैं। तो भैया प्रकृति को श्रृंगार है उसको अपन की जिम्मेदारी अपन को उठाने हैं, और अपन को जितना ज़्यादा हो सके हरियाली बढ़ावे को प्रयास करने हैं। अब भैया देखो स्टूडियो की घड़ी भी हमको इशारा कर रही है कि हम अपने सभी श्रोता भैयन से लेने आए विदा। तो चलते हैं, सभी श्रोता भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट

दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इनकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसा स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि
डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाएं। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि ये देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है। मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है, जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोपकर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गईं। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों, खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रेया पाठक और आज हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। हेपेटाइटिस, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके लक्षण तब सामने आते हैं जब लीवर को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टीकाकरण, डिजिटल निगरानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर, हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद श्रेया।
2: डॉक्टर एन के अरोड़ा, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये होगा कि आप हमारे श्रोताओं को सरल भाषा में समझाइए कि हेपेटाइटिस आखिर है क्या और इसे साइलेंट किलर या साइलेंट डिजीज क्यों कहा जाता है।
3: हेपेटाइटिस का एक प्रकार है विषाणु का जो साइलेंट किलर होता है, और एक दूसरा प्रकार है जिसमें हमें स्पष्ट रूप से लक्षण दिखाई देते हैं। तो हेपेटाइटिस को याद रखना, ये वायरस डिजीज है या विषाणु की वजह से होती है, और मुख्यतः चार विषाणु है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। डी इतना नहीं है महत्वपूर्ण, ई होता है। ए, बी, सी और फिर ई, ये चार किस्म के वायरस हैं जो हमारे जिगर को, यकृत को प्रभावित करते हैं, लिवर को, और उसमें इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है, वो एक बार हमारे शरीर में, खास तौर पे जब उम्र छोटी होती है, 5 साल से कम उम्र में अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाए तो वो फिर निकलता नहीं है और वहीं पे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी, हम आगे बात करेंगे, एक बार शरीर में घुसता है तो बाहर

0: आता नहीं है, और वो हमारे लिवर के जो सेल हैं, कोशिकाएं हैं, उनको लगातार नुकसान पहुंचाता रहता है, डैमेज करते रहते हैं। और ऐसी स्थिति में धीरे धीरे हमारा जो यकृत है, लिवर है, उसमें खराबी होती है। पहले तो हमें, अगर बहुत देर तक चलता रहे तो पीलिया हो सकता है, लेकिन कई बार पीलिया भी नहीं होता, सीधे सिरोसिस हो जाता है, यानी कि लिवर के अंदर गांठे पड़ जाती हैं, और फिर बाद में कैंसर भी हो सकता है। तो इन दो वायरसेस की वजह से जो लिवर की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस होती है या सूजन आ जाती है, वो एक साइलेंट किलर का काम करती है, क्योंकि 10 से 20 साल 30 साल बाद आपको पता भी नहीं चलता है, और पता सडनली पता चलता है कि हमारा लिवर इतना खराब हो गया है कि खून की उल्टी आ रही है, और उसके अंदर शरीर लिवर के अंदर गांठें हो जाती हैं और परेशानी होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इन्हीं कुछ लोगों में से कैंसर भी हो जाता है, जिसको हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कहते हैं। तो ये दो वायरस जो है एक तरह से हमारे लिए साइलेंट किलर है, और ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है, क्योंकि एशिया में और खास तौर पे भारत में शुरू में हमने, जब ये कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ था, तो एक बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या थी जिसमें हेपेटाइटिस बी सर्कुलेट करता रहता था, और
1: जी
0: ये जो हमारे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा और सिरोसिस है, उसका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होता था। समय के साथ ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो अब इसमें कमी आ गई है। दूसरा, हेपेटाइटिस ए और ई स्वच्छता की कमी की वजह से होता है, चाहे वो स्वच्छता पानी की हो या स्वच्छता भोजन की हो, इन दोनों की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। और ये आपको जानकर एक सुखद अनुभव होगा कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम के शुरू करने से, जब घर घर में जो पानी पहुंचा है, स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया, उसके बाद हेपेटाइटिस ए और ई बहुत कम हो गए, क्योंकि हमें साफ पानी मिलने लगा, भोजन में भी सफाई हो गई स्वच्छता की वजह से। वो जो हेपेटाइटिस ए और ई की वजह से होता है, उसमें पीलिया हो जाता है, किसी भी उम्र में हो पीलिया होता है,
1: जी
0: और आमतौर पे दवाई किसी की जरूरत नहीं होती, खाली देखभाल करनी होती है और वो ठीक हो जाते हैं। किसी किसी केस में, यानी कि 200 केसेस में एक केस ऐसा होता है जिसमें लिवर फेलियर हो सकता है और मृत्यु की संभावना बनती है,
1: जी
0: तो वो एक अलग तरीके से फैलता है, और हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो एक अलग तरीके से फैलता है, और साइलेंट किलर हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से होते हैं।
1: जी मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि आज सरकार ने नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत नई ऑपरेशनल गाइडलाइंस और स्क्रीनिंग गाइडलाइंस जारी की हैं। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि इन नए दिशा निर्देशों में क्या बदलाव किए गए हैं और इनसे आम लोगों को क्या फायदा पहुंच सकता है।
0: इन गाइडलाइन में जो मुख्य इनका बिंदु है, जिन पे हमें समझने की जरूरत है, और वो ये है कि 2030 तक हमें जो हेपेटाइटिस है, जो लिवर की बीमारी है, उसको बहुत हद तक खत्म करना है और कम करना है, और इसमें हेपेटाइटिस बी और सी जो एक बार शरीर में घुस जाते हैं, जैसे हमने बताया, और लगातार रहते हैं, तो उनकी जांच का, उनके इलाज का, और साथ ही साथ उनको फॉलो करने का, ये सारे का सारा जो इस नई गाइडलाइन के अंदर है और स्पष्टता से बताया गया है, और अब हर एक सरकारी स्थान पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। खास तौर पे इस समय तक जो गर्भवती महिलाएं थी उनकी जांच हो रही थी, लेकिन अब लगातार, जैसे कि पहले करीब 21 करोड़ लोगों की अभी तक जांच हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जांच पूरी करनी है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो हेपेटाइटिस बी या सी से प्रभावित है, जल्दी बीमारी अधिक बढ़ने से पहले पकड़ा जा सके, क्योंकि आज इनका इलाज उपलब्ध है, एंटीवायरल ड्रग्स हमारे देश में उपलब्ध हैं, यहीं पे उनका निर्माण होता है, हमें बाहर से नहीं मंगवाना पड़ता, और वो बहुत ही प्रभावी दवाई है, तो इलाज किया जा सकता है, और जिससे कि सिरोसिस से बचा जा सके, और जिससे जो
1: जी
0: कार्सिनोमा कैंसर है लिवर
1: जी
0: का, वो उससे बचा जा सके।
1: तो जैसा कि पहले उत्तर में आपने बताया कि किस प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं और किस प्रकार की चुनौतियां लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, तो उसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस के, जैसे हमें पता है कि 5 प्रकार बताए जाते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, इनमें से भारत के लिए सबसे बड़ी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है वो कौन से प्रकार के हेपेटाइटिस से होती है और क्यों?
0: हमारी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के हिसाब से इसमें से चार, हेपेटाइटिस डी इतना कॉमन नहीं है। मैंने आपको बताया कि ए और ई पानी के दूषित होने से या भोजन के दूषित होने से होता है। जिस तरीके से डायरिया या दस्त की बीमारी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हेपेटाइटिस ए और ई भी हो सकता है। और जैसे ही हमारा वातावरण में स्वच्छता आती है, चाहे वो पानी की है, भोजन की है, और जैसे कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हुआ, हर घर जल वाला कार्यक्रम आ रहा है, उसकी वजह से सचमुच इन चीजों में बहुत कमी आई है। कुछ साल पहले तक, यानी मैं कहूंगा 10-15 साल पहले तक, हर थोड़े दिन में पता चलता है देश के किसी हिस्से में हेपेटाइटिस ई का खास तौर पे आउटब्रेक्स या एपिडेमिक होता था। और ये जो है, इसकी वजह से बहुत सीवियर बीमारी होती है, और खास तौर पे अगर गर्भवती महिलाओं में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो मृत्यु की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये इन दोनों के लिए तो सफाई का है। हेपेटाइटिस बी और सी का होने का जो तरीका वो है, बी जो है मां से बच्चे, अगर गर्भवती महिला में हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसी तरीके से जीवन के पहले 5 सालों में अगर एक दूषित सिरिंज के द्वारा इंजेक्शन दिया जाता है या कोई ब्लड ब्लड दिया जाता है और उसके अंदर हेपेटाइटिस बी है, तो उसमें से 70 से 95% संभावना होती है कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी उस बच्चे में हो जाएगी और वो फिर वायरस बाहर निकलता नहीं। हेपेटाइटिस सी जो है, दूषित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल से होता है खासतौर पर, ज्यादातर एक आम समझ के लिए ये जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ध्यान करना है, एक तरफ तो हमें खाने की और पीने की सफाई रखनी है और उसमें खास ध्यान रखना है, दूसरी तरफ जब भी इंजेक्शन लग रहा हो तो हमें देखना है कि नई इंजेक्शन और नई नीडल का इस्तेमाल होना चाहिए हमारे लिए। दूसरी उतनी महत्वपूर्ण बात है कि इंजेक्शन तभी लगाया जाए जब अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ये देखा गया है विभिन्न अनुसंधानों के द्वारा, हमारे द्वारा किया गया, कि लगभग 60 से 75% समय हम जब प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं तो इंजेक्शन लगाया जाता है जिसकी जरूरत नहीं हो, बिना, क्योंकि आजकल ओरल दवाइयों से पूरा लाभ वैसे ही मिल जाता है। तो इंजेक्शन की कमी होनी चाहिए, इंजेक्शन कम से कम हो लगने चाहिए, और जब इंजेक्शन लगाना पड़े तो नए इंजेक्शन और सिरिंज होने चाहिए। और ब्लड सैंपल जब भी चढ़ाया जाए, जब ब्लड किसी को चढ़ाने की जरूरत है, तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करी होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरे श्रोता इस बात को अपने डॉक्टर से या अपने चिकित्सा कर्मी से पूछे कि भैया इसमें हेपेटाइटिस बी सी और एचआईवी की जांच हो गई है कि नहीं हो गई। अब गर्भवती महिलाओं में आजकल जो है प्रसव से पूर्व जो जांच होती है उसमें हेपेटाइटिस बी की पूरी जांच की जाती है, और अगर हेपेटाइटिस बी माँ को है तो उसका इलाज तो अलग से करना होता है जब प्रसव हो जाता है, लेकिन प्रसव के 24 घंटे के अंदर ही अगर बच्चे को, जो नवजात शिशु है, उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाए तो बच्चे में हेपेटाइटिस बी का संक्रमण बच जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 5 साल से कम अगर हेपेटाइटिस बी का संक्रमण किसी बच्चे में हो, खास तौर पे नवजात शिशु में और पहले साल में, तो लगभग 95% संभावना है कि वो हेपेटाइटिस बी से संक्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि माँ को हेपेटाइटिस बी है तो वो उसको मैं टीका लगा दूं तो फिर टीके से बचाव हो जाए।
1: जी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो सरकार ने शुरू किया था, इससे आम लोगों को कितना फायदा मिला है और कैसे उनके लिए एक सुविधाजनक इलाज सरकार ने दिलवाया है?
0: स्वच्छ भारत की वजह से हेपेटाइटिस ए और ई में एक बहुत शार्प गिरावट आई है। अब हमें हेपेटाइटिस ए और ई के केसेस या आउटब्रेक्स या एपिडेमिक महामारी के तौर पे बहुत ही कम दिखाई देते हैं, और पिछले कई सालों में हमने नहीं सुना है कि बहुत बड़ा कोई आउटब्रेक हुआ। हेपेटाइटिस बी और सी के लिए, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में जांच हो रही है, और इसके अलावा जब नवजात शिशु है, आज की डेट में लगभग 90% से ऊपर प्रसव जो है स्वास्थ्य केंद्रों पे होते हैं, तो उसी समय नवजात शिशु को हेपेटाइटिस बी का टीका लगा दिया जाता है। तो इस टीका लगाने से अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है भी तो हमारे बच्चे को उससे बचाया जा सकता है और बच जाता है। और इसका फायदा ये हुआ है कि हेपेटाइटिस बी का टीका लग जाने से समय के साथ जहां हमारे हेपेटाइटिस बी और सी के

0: 2 से 3% लोग संक्रमित थे वो अब 1% से कम, लगभग 0.85 और 0.9% जो है वो प्रभावित होते हैं। हेपेटाइटिस सी जो है वो लगभग 0.3%, यानी कि अगर मैं कहूं कि 1,000 में 3 बच्चे जो है, 3 व्यक्ति जो है हेपेटाइटिस सी, और ये खास तौर पे संक्रमित इंजेक्शन या ब्लड सैंपल और खास तौर पे इंजेक्शन की वजह से होता है, तभी मैंने कहा कि इंजेक्शन। तो अब ये जो कार्यक्रम हुआ है, और ये कार्यक्रम हर एक सरकारी चिकित्सा संस्था है, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, PHC है, CHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, इन सभी में हेपेटाइटिस बी और सी की जांच उपलब्ध है आज की डेट में। वहीं हाथ के हाथ आपकी जांच हो जाती है, और उससे एक बार जांच हो जाए तो उसके हिसाब से फिर ध्यान किया जाता है, और साथ में इंजेक्शन के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है।
1: हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसका समय पर पहचान और इलाज संभव है। सरकार मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के माध्यम से 2030 तक हेपेटाइटिस उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन जागरूकता, समय पर जांच और लोगों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। डॉक्टर एनके अरोड़ा, आपका हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस की रोकथाम के लिए भारत के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले हम सुनते हैं ये गीत फिल्म जोधा अकबर से। जावेद अली की आवाज, जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत है AR रहमान का।

श्रोताओं, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और साधना सरगम, साथ ही शंकर महादेवन की आवाज़ों में सुनिए समीर का लिखा गीत। फिल्म है सलाम इश्क। इस गीत को संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

श्रोताओं, फिल्म सलाम इश्क के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से

0: कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है, ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 26 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
6: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा

0: और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
0: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उसपे सवार थे, 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
1: भुवनेश्वर। केरल के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्र

मंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाए।

लोकसभा में उस बिल पर बहस जारी है जिसमें

स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत के श्री हरि नटराज ने आज 100 मीटर

गया है। आईएसएसएफ निशानेबाजी वर्ल्ड कप में सोनम उत्तमस्कर और हिमांशु ढिल्लों की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम मुकाबले में कांस्य का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम कहकशां।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार सुशील कुमार की जादुई आवाज़ में गज़ल समात फरमा रहे थे। सामईन, हमारी बातचीत का मौजू था जहनी सेहत की अहमियत के बारे में। जहनी सेहत के मसाइल के कामयाब इलाज के लिए इब्तदाई मदाखलत बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को दिमागी बीमारी की अलामात का इल्म हो तो वो जल्द मदद ले सकते हैं, जिससे उनकी सेहतयाब होने के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, दिमागी सेहत मजमूई सेहत का एक अहम पहलू है और जहनी बीमारी किसी शख्स की ज़िंदगी पर नुमाया असर डाल सकती है। दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने से लोग अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने की अहमियत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और अपनी सेहत के बारे में बाखबर फैसले कर सकते हैं। दिमागी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने से दिमागी सेहत के मसाइल को हल किया जा सकता है और इससे लोगों को मदद और तफहीम फराहम करने का इम्कान ज़्यादा होता है। जो जहनी बीमारी के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, मजमूई तौर पर जहनी सेहत के बारे में बेदारी में इजाफा अफराद और कम्युनिटीज़ की जहनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, अब वक्त है हमारे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश का, जिसमें हम सुनेंगे गुलूकार सुशील कुमार की आवाज़ में एक और खूबसूरत गज़ल। समात फरमाइए।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम कहकशा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म पारस मणि का ये गीत। लता मंगेशकर और कमल बरोट की आवाजें हैं। गीत के बोल लिखे हैं असद भोपाली ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, फिल्म असली नकली से सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

हरे रामा हरे कृष्णा, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी आरडी बर्मन ने और आवाज़ें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म शक्ति से। आनंद बख्शी के बोल, आरडी बर्मन का संगीत और आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म लोफर से। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने। श्रोताओं आइए अब कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाते हैं। ये गीत हमने लिया है फिल्म जीने की राह से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, आनंद बख्शी की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, फिल्म अनाड़ी का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के लिखे बोल और धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। श्रोताओं, इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं पंडित आसकरण शर्मा का ख्याल गायन। राग है यमन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित आस्करण शर्मा का ख्याल गायन, राग था यमन।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
2: स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने की विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:51 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।